100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि और विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ अधिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, तदनुसार 12 जून 2026 सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की यह सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

भोर की उजली किरणों के साथ ही लगता है जैसे मन पर छाया अंधकार मिट गया और इसके साथ ही मन जुड़ने लगा

ईश्वर आराधना से। तो ऐसे पल में आइए हम भी जुड़ जाएं प्रभु आराधना से, कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से। और आज इस आराधन में मैं सुस्मित हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की वंदना के

मन ही है जो हमें इस दुनिया में भरमाता भी है और मन ही हमें ईश्वर से भी मिलाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाएं।

भक्ति का भाव जिस मन में हो वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है, क्योंकि ईश्वर वहीं रहते हैं जहां प्रेम हो, दया हो, करुणा हो और किसी भी विषय के प्रति आसक्ति न हो। तो ईश्वर प्राप्ति की कामना के साथ प्रेम भाव से जुड़ें ईश्वर की भक्ति से।

ईश्वर के विशेष कृपा से हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। ऐसे में हम यदि ईश्वर को ही भूल जाएं, तो ये सर्वथा अनुचित होगा। इसलिए इस जीवन में अन्य बातों के साथ ही साथ ईश्वर के प्रति भक्तिभाव भी अपने हृदय में बनाए रखना चाहिए।

इस संसार में हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हम अकेले ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है।

ईश्वर की भक्ति का आनंद ले रहे हैं। आप 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से और इस कार्यक्रम में मैं सुस्मित हूं आज आपके साथ। आइए जुड़ते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति।

अध्यात्म जगत में प्रभु मिलन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग समर्पित भक्तिभाव कहा गया है। इसके अलावा ईश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहता, तो क्यों ना हम बढ़ चलें मिलन के इस पथ पर अपनी आराधना के साथ।

प्रभु के नाम का उच्चारण करने में जब मधुर स्वरों की मिठास घुल जाती है तो तन्मयता, आनंद और प्रेम भाव अनुभूति के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जिस पर प्रभु को भी रीझना पड़ता है। तो वातावरण में घुलने दे इस मिठास को और ध्यान करें ईश्वर का।

भगवान की भक्ति वो अनमोल रत्न है जो हमें जीवन में हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। निरंतर प्रेम, विश्वास और समर्पण के मार्ग पर चलते हुए ही हम सच्ची भक्ति को पा सकते हैं। तो प्रभु की छाया सदैव हमारे सर पर बनी रहे, इसी कामना के साथ अब अपने दोस्त सुस्मित को अनुमति दीजिए कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं और सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी कल नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विगत 12 वर्षों में अपने यशस्वी नेतृत्व, दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं अथक परिश्रम से भारत को वैश्विक मंच पर एक नई वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व में भारत वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित है। 7 विशेष वचनों का पालन करने का प्रधानमंत्री जी का देशवासियों से आह्वान। राष्ट्र प्रथम और आत्मनिर्भरता के संकल्पों से जुड़ने की नई राह दिखाता है। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेनो वेस्ट, गाजियाबाद, दिल्ली तक में ई सिटी बसों का संचालन 15 जून से होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 40 ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। परियोजना के तहत 510 ई सिटी बसों का संचालन होना है, लेकिन प्रथम चरण में सिर्फ 110 सिटी बस संचालित होंगी, जिसे तीनों प्राधिकरण मिलकर संचालित कराएंगे। इसके बाद 100 ई सिटी बस मुख्यमंत्री ई सिटी बस परियोजना के तहत 4 से 5 माह में उपलब्ध कराई जाएंगी। जिले के तीनों प्राधिकरणों ने बसों को चलाने के लिए अपने अपने रूट तय कर लिए हैं। बसों का न्यूनतम किराया 20 और अधिकतम 50 रुपए होगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के माध्यम से प्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को

उत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा को 3,99,36,22,551 रुपए की फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये स्वीकृति दो प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूमि पर दी गई 75% छूट की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा बच्चों के शिक्षा, सुरक्षा एवं समग्र विकास के अधिकारों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना है। कार्यक्रम में लगभग 800 प्रतिभागियों के सम्मिलित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। आज भी विक्षोभ के असर से यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश के हालात हैं। बृहस्पतिवार को जिलों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश देखने को मिली, इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अमरोहा में बीती रात झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। उधर झमाझम बारिश से फसलों को लाभ मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। पीलीभीत जिले में भी रात से तड़के तक बरसात का क्रम जारी रहा। इसी के साथ ही समाचारों का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला बुलेटिन अखबारों के सुर्खियों के साथ 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कभी ये हमें किसी अपने की याद दिलाते हैं, कभी किसी मीठी मुस्कान की, कभी किसी मुलाकात की, तो कभी दिल के उन जज्बातों की जिन्हें हम चाह कर भी शब्दों में बयां नहीं कर पाते। तो सुर में ढले कुछ ऐसे ही गीतों के साथ मैं सुस्मिता चुका हूं प्रोग्राम सदाबहार गीत लेकर। और आइए 100.7 FM रेनबो पर इन खूबसूरत एहसासों के सफर की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

न जाने ऐसा क्या जादू था उस पहली नजर में, जब से उन्हें देखा कुछ अजीब सा होने लगा। पहले जो दिल हर बात मान लिया करता था, अब वो भी उनकी तरफदारी करने लगा। उनकी एक मुस्कान दिन भर का सुकून बन जाती और उनकी एक झलक जाने कितनी देर तक ख्यालों में साथ चलती रहती।

कभी-कभी किसी की तारीफ करने का मन तो बहुत करता है लेकिन शब्द साथ नहीं देते डर लगता है कि कहीं दिल की बात ज़बां पर आ गई तो राज ही ना खुल जाए लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी तारीफ किए बिना रहा भी नहीं जाता

0: कुछ यादें बड़ी अजीब होती हैं, बिना बुलाए चली आती हैं। दिन की व्यस्तताओं में तो समय निकल जाता है, लेकिन रात की खामोशी में वही यादें दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। और तब तब मन एक ही सवाल करता है कि क्या उनको भी कभी मेरी याद आती होगी।
1: कैसा कैसा

0: दिल की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बरसों तक दिल में ही रहती हैं। कई बार लगता है कह दूं, फिर लगता है रहने दूं, लेकिन खामोशियां भी कब तक साथ निभाती हैं। एक दिन तो दिल को अपनी बात कहनी ही पड़ती है।
1: सब्सक्राइब कीजिए, वो दबाना नहीं।

जब किसी का साथ अच्छा लगने लगे तो फिर छोटी छोटी बातें भी बड़ी खूबसूरत लगने लगती हैं। भविष्य के सपनों में भी वही चेहरा नजर आने लगता है और हर खुशी अधूरी लगती है जब तक उसमें उनका साथ ना हो।

प्रेम का एहसास शायद यही होता है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलने लगती है। वही रास्ते, वही मौसम, वही दिन, लेकिन सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है।

कई बार बातें शब्दों से नहीं होती, दो नजरें मिलती हैं और दिल अपना हाल बयां कर देता है। जो बात जुबान नहीं कह पाती वो आंखें कह जाती हैं।

जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके आने के बाद खुशियों के मायने ही बदल जाते हैं। हर मुस्कान, हर खुशी और हर दुआ में उनका नाम शामिल हो जाता है।

हर सच्चा रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन साथ निभाने का वादा ही रिश्तों को खूबसूरत बनाता है। तो आपके साथ बना ये खूबसूरत रिश्ता यूं ही जुड़ा रहे, इसी बात के साथ अब मेरे चलने का समय आ गया है प्रोग्राम सदाबहार गीत से। लेकिन समाचारों के बाद आपसे फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग लखनऊ में। तो आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम

0: पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
2: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
4: We signed this year a free trade agreement with Europe.
5: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
6: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264

0: की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की

0: चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं। उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: यहाँ से शुरू होता है सफर हमारा आपके साथ और इस सफर पर आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग सुप्रभात और आपको भी गुड मॉर्निंग रोली
1: गुड मॉर्निंग सुस्मित आप सभी को जो भी हमें सुन रहे हैं इस समय जो प्यारे प्यारे चेहरे मुस्कुराकर इस प्यारी सी सुबह का आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ अपने रेडियो सेट्स को पूरे फुल वॉल्यूम पर सुन रहे हैं हमारे साथ यानी गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर आ चुके हैं आपके दो दोस्त मैं रोली और मेरे साथ सुस्मित हम दोनों ही आपके साथ रहने वाले हैं इस गुड मॉर्निंग लखनऊ में और रोज की तरह ढेर सारी बातें और बातों के साथ कुछ लोगों से मुलाकातें और साथ ही साथ अच्छे अच्छे नगमे क्यों सुस्मित
0: बिल्कुल सही कहा रोली और ये प्यारी सी चहकती सी आवाज रोली की जुड़ चुकी है इस प्रोग्राम में हम दो लोग आपके साथ रहने वाले हैं पूरे 10 बजे तक तो और ये देखिए
1: आपका कहीं ये मतलब तो नहीं है कि चहकती हुई आवाज ऐसी होनी चाहिए कैसी
0: बिल्कुल सही कहा आपने ऐसी आवाज होनी चाहिए जो हमारे साथियों को कनेक्ट कर सके बड़े प्यार से
1: कनेक्ट कर सके

0: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
1: आठ बजकर 23 मिनट और इशारा मॉर्निंग मंत्रा का एक बड़ी प्यारी सी बात आप सब तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो जुड़ते हैं उस बात से, क्यों रोली?
2: बिल्कुल। और आज का जो मॉर्निंग मंत्रा है वो ये कहता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी पहचान उसकी इमारतें नहीं, उसके बच्चों की मुस्कान होती है।
1: क्या बात है। और ये मुस्कान हमेशा सजती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस प्यारी सी मुस्कान के साथ आप भी इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर एक और ट्रैक आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है।

0: मुद्दा आज का।
1: और अब मुद्दा यानी वो बात जिससे आप जुड़ते हैं और अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, हम पहुंचा रहे हैं आज की बात जो आप तक पहुंचने वाली है। और आज की बात क्या है ये बता देते हैं
2: भाई। आज एक विशेष दिन है, जैसे कि हर दिन अपने आप में विशेष होता है सुस्मित, और आज भी विशेष है। आज है 12 जून और आज है बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथों में किताबें, खिलौने, पेंसिल, ये सब कुछ जचता है ना,
1: बिल्कुल,
2: और उसके हाथ में औजार, चाय की केतली, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल जचती नहीं है। उसकी आंखों में ढेर सारे अच्छे सच्चे सपने होते हैं और हाथों में हुनर होता है।
1: बिल्कुल, तो ऐसे ही नन्हे बचपन की बात करना चाहते हैं हम आज आप सभी से, और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार ये जो बाल श्रम है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और इसे रोकने में समाज की क्या भूमिका हो सकती है।
2: और इसके बारे में आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप अपने विचार, अपनी बातें लिखकर भेज दीजिए। और अगर इससे जुड़ा आपके जहन में कोई याद बसी है कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी छोटे से नन्हे से बच्चे को उसके इस तरीके की ज़िंदगी से निकाल कर उसे अपने किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया हो और उसे पढ़ाई के जीवन में ले गए हो, है ना,
1: बिल्कुल,
2: विद्यालय पहुंचाया हो, तो वे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ।
1: बिल्कुल, कोई अच्छी बात जो आपको याद आ रही हो जरूर बताइए हमें। और इसके लिए करना होगा आपको हमें मेल, नोट कर लीजिए हमारी ईमेल आईडी एक बार फिर से fmakashwanilakhnow@gmail.com। तो आपकी बातों का हमें इंतजार है और हम इन बातों के साथ ही साथ बढ़ रहे हैं आगे एक ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए।

0: वाह क्या बात है. और ऐसे ही अच्छे से गाने सुन के ना एकदम डांस करने का मन होता है. और वैसे सुष्मित कितने अच्छे होते हैं वो लोग जो सुबह में अच्छे अच्छे ट्रैक सुनकर अपने सीधे डांस करना शुरू कर देते हैं. डांस करने से वैसे हेल्थ भी तो अच्छी रहती है. और वो लोग भी कितने अच्छे होते हैं जो दूसरों को मोटिवेट कर देते हैं कि भाई हम कर रहे हैं और तुम भी करो.
1: क्या बात है, क्या बात है
0: ना. तो ये जो मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग

0: मैं आपको इसलिए हम लोग अच्छे अच्छे ट्रैक्स प्ले करते हैं आपके लिए, ताकि आपको अगर वर्कआउट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं,
1: और साथ ही साथ आपका मन भी खुश होता है.
0: मन भी खुश होता है, और कुछ अच्छे अच्छे ताता थैया वाले वो जो अच्छे अच्छे स्टेप्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने उस दौर में जा सकते हैं कि हम भाई कभी जब स्कूल में थे ये वाले ट्रैक सुनते थे और उसमें बड़ा डांस करते थे.
1: बिल्कुल सही बात है, ये वो दौर था जहाँ पर बहुत बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें मिलती थी जो हमारे मन को बड़ा सुकून देती थी. खैर,
0: तो ये मन का सुकून आपको ढूंढने नहीं जाना है, हम वो मौका क्रिएट कर देते हैं कि आपको वो मन का सुकून मिल जाए.
1: क्या बात है, तो चलिए ये सुकून भी अपने साथ लेते रहिए, और साथ ही साथ कुछ लेने की बात चलिए तो यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं.
0: बिल्कुल, कुछ जरूरी जानकारी है जो हमें लेनी है, और जरूरी जानकारियों के तहत आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को 30 जून तक विद्यार्थियों के शैक्षिक रिकॉर्ड को UGC के पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और UGC की ओर से इस संबंध में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
1: और बात विश्वविद्यालय की चलिए तो आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय ने केंद्रीय प्रवेश प्रणाली के अंतर्गत सहभागिता शुल्क जमा करने की जो डेट थी वो 20 जून तक बढ़ा दी है, और संयुक्त महाविद्यालय में संचालित सेल्फ फाइनेंस कोर्स केंद्रीय प्रवेश प्रणाली के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं वे कॉलेज पाठ्यक्रम विवरण सहभागिता शुल्क जमा कर सकते हैं.
0: और इसके अलावा अगर बात करें तो नगर निगम की ओर चलते हैं, नगर निगम का जो संपूर्ण समाधान दिवस जून में शेड्यूल था वो अब जून के बजाय 3 जुलाई 2026 को आयोजित होगा. नगर निगम के अनुसार शहर में जो चल रहे हैं जनगणना के कार्य हैं उसके तहत इसको शिफ्ट किया गया है.
1: और इसके साथ ही साथ अलर्ट हो जाइए सरोजनी नगर एरिया में रहने वाले लोग, क्योंकि यहाँ पर आज सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली गुल रहने वाली है, तो अलर्ट हो जाइए और अपने सारे काम पहले से डिसाइड कर लीजिए कैसे मैनेज करेंगे.
0: और उस समय जब बिजली नहीं आएगी तो उस समय हमें किस तरह से अपना वो कूल रखना है ये भी मैनेज कर लीजिए.
1: बिल्कुल सही बात है.
0: और चलते हैं अपनी अगली बात की ओर. आपको बता दें कि लखनऊ जंक्शन से 16 को चलने वाली लखनऊ जंक्शन आनंद विहार टर्मिनस लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
1: बात ट्रेन की चली है तो कुछ और ट्रेन्स भी हैं जिनके बारे में ज़रूर आपको बता दूं. दरअसल चारबाग स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण काम के चलते बदले रूट से चल रही 6 ट्रेन फिर से पुराने रूट से चलेंगी, और इनमें बात करें तो आपको बताएं ये ट्रेन हैं, सबसे पहली ट्रेन इसमें है सूरत मुजफ्फरपुर जंक्शन, दूसरी है LTT गोरखपुर जंक्शन, और तीसरी गोरखपुर जंक्शन LTT, पनवेल गोरखपुर जंक्शन, भावनगर अयोध्या कैंट और पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस इन ट्रेनों में शामिल हैं. अब ये अपने पुराने रूट से ही चलेंगी, यानी पहले जो रूट था इनका जो बीच में बदला गया था उसको वापस कर दिया गया है, तो आपके लिए ये अब सुविधा हो जाएगी. बस ये कि थोड़ा सा ध्यान रख के निकलिए, ये मत सोचिएगा कि जो रूट चेंज किया गया था उसी रूट के हिसाब से हमें इसको देखना है, तो ये एक परिवर्तन आ चुका है.
0: और आगे चलते हैं, शकुंतला विश्वविद्यालय में अगर CUET UP पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जून है, और PG के CUET और गैर CUET दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 20 जून तक आवेदन कर सकेंगे.
1: तो ये थी कुछ बातें आपके लिए सिटी अपडेट्स की, जिनमें कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत काम की होती हैं, और अगर हमें पता चल जाता है समय से तो निश्चित रूप से बड़ा फायदा हो जाता है. तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक जो भी काम की बातें वो पहुंच जाएं, और अगर उनमें से कुछ भी आपका फायदा हो सके तो ये बहुत बढ़िया है. तो चलिए ये बातें भी चलती रहेंगी, फिलहाल तो कुछ म्यूजिक भी होना चाहिए. क्यों
0: बिल्कुल, म्यूजिक बिल्कुल तैयार है और म्यूजिक बिल्कुल ऑन एयर जा चुका है, तो बस यू ही सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, रोली शुक्ला और
1: सुस्मित के साथ.

0: उन सभी लोगों को आज का दिन जिनके नाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जब बात इनकी चली है तो उन लोगों का भी जिक्र कर लेते हैं जिनके साथ आप अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं। और इसमें कुछ नाम हैं, इसमें सबसे पहला नाम अगर लें तो एक ऐसी बीते दौर की मशहूर अभिनेत्री श्यामा, जिनकी आज जयंती है। और कुछ मूवीज़ के नाम जब हम लेंगे तो निश्चित रूप से आपको उनका चेहरा याद आ जाएगा। आर पार, दिल दिया दर्द लिया और मिलन, ये कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। 50s के दौर की ये एक बहुत ही चर्चित अभिनेत्री रहीं।
1: और इसके साथ ही आज बर्थडे है मेट्रोमैन के नाम से मशहूर भारत के दिग्गज सिविल इंजीनियर ई श्रीधरन जी का। देश के सार्वजनिक परिवहन विशेषकर कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
0: इसके अलावा आज बर्थडे है हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का। वो हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टोम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया। तो ये थे वो नाम जिनके साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत, अगर आपका बर्थडे आज, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपका ये दिन ढेरों खुशियों से भरा हो।
1: बिल्कुल, और आज का ये खास दिन आप अच्छे से मौसम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि बड़ी प्यारी प्यारी सी हवाएं चल रही हैं और बड़ा ही सुहाना मौसम है ना।
0: बिल्कुल, और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं, बहुत से मेल्स हम तक पहुँचने लग गए हैं और उनमें यही बातें आ रही है, मौसम बहुत खुशनुमा है।
1: तो बस इस खुशनुमा मौसम को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: birthday to you. Happy happy birthday. आज का जिनका जिन लोगों का भी आज होता है happy happy birthday, उनको हमारे पूरे FM Rainbow टीम की ओर से ढेर सारी बधाइयां.
1: क्या बात है, और उनको भी बधाइयां जिनकी एनिवर्सरी है आज. और एनिवर्सरी के नाम से याद आया, हमारे पास एक मेल आया है नीलू शर्मा जी का रूपपुर चंदेला से, और इन्होंने बताया है कि आज मेरी दीदी की एनिवर्सरी है.
0: क्या बात है, तो भाई आपकी दीदी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन की. और आज भी यूं ही मीठे मीठे रसगुल्ले खाते रहें और सारी जिंदगी मिठास यूं ही रिश्तों में बनाते रहें.
1: बिल्कुल सही बात है. तो बात चली है बर्थडे की, एनिवर्सरी की, यानी

0: क्या खूब क्या खूब क्या बात है, क्या जबरदस्त ट्रैक अभी हम सुन रहे थे, मजा आ गया।
1: एक प्लेट भर के आलू और प्याज के पकोड़े एंजॉय करने वालों सुनो, एक प्लेट भर के आलू और प्याज के पकोड़े एंजॉय करने वालों सुनो, ऑफिस जाने वाले कपड़ों को इस्त्री करने वालों सुनो, चाय की चुस्कियों में खोए प्यारे बाबू सुनो। आप इस समय एंजॉय कर रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो। गुड मॉर्निंग लखनऊ।
0: क्या बात है, क्या बात है रूली, आपका अंदाज बहुत जबरदस्त है।
1: तो इस प्यारे से मौसम में जो इस समय आलू और प्याज के पकौड़े खाने में लगे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा मजे से खाने में लगे हुए हैं, उनकी तरफ हमारा इशारा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रूली आपने। तो उनको भी हम अपनी तरफ मुखातिब करवाते हैं और उनसे भी कहते हैं भाई जुड़े रहिए हमारे साथ, और कुछ लोग भी हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी बातें भी हम चाहते हैं पहुंचे। फिलहाल 8:55 हो चुके हैं, यहाँ पर क्यों ना हम एक बार अपना जो मुद्दा है वो एक बार फिर से बता दें। तो हम आज किस बारे में बात कर रहे हैं ये अपने साथियों को बता दें, ताकि वो अगर अभी तक नहीं सुन पाए हैं तो वो इस बात से जुड़े और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। हम आज बात कर रहे हैं कि आपके अनुसार बाल श्रम, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और इसे रोकने में समाज की क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी fmakashwanilakhnu@gmail.com के जरिए।
1: बिल्कुल, और मेल की तरफ चलते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो मेल आया था वो आया था घनश्याम सिंह जी का। जी हाँ, घनश्याम सिंह जी के साथ और भी मेल्स आए थे, सबसे पहले घनश्याम सिंह जी का मेल पढ़ते हैं। और ये है नारायण नगर ए फैजाबाद रोड लखनऊ से, लिखते हैं प्रिय सुष्मित भैया जी और प्यारी सी बिटिया रोली शुक्ला को श्रद्धा पूर्वक शुभ प्रभात और नमस्कार। आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप दोनों लोग कैसे हैं? हमारे घर में आम, जामुन, शरीफा, अमरूद बारोमास पेड़ हैं, जो सहजन फल रोज फलता है, ये मीठे मीठे जामुन भेजे हैं आपके लिए। मैं उन लोगों को समझाता हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चों को नौकरी करवाते हैं, इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए जिससे आगे चलकर इनका जीवन उज्ज्वल हो सके।
0: क्या बात है। अच्छा देखिए, एक मेल और है, ये सफीपुर जिला उन्नाव की रोशनी रावत जी ने चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुनते हुए लिखा है, कहती मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप प्लीज बबीता राव, नीलू शर्मा, गुलफशा दीदी, शमा परवीन, शाजिया साहिबा को राम राम बोल दीजिए हमारी तरफ से। तो साहब बहुत बहुत राम राम आप सभी लोगों को जो इनकी साथी हैं, इनकी दीदियाँ हैं।
1: और हमारे पास जो अगला मैसेज आया है वो मैसेज आया है दिलीप जी का। गुड मॉर्निंग, आज मौसम बड़ा सुहाना हो गया है हमारे यहाँ। दिलीप कुमार हरदोई से इनका मैसेज आया है और बड़े ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे स्माइलीज भेज रहे हैं ये, तो थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज किया।
0: चलिए, तो बहुत सारे मेल्स हैं जो हम तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद होंगे समाचार, उसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे और करेंगे आपकी बातें। फिलहाल तो आप इंजॉय करिए ये गीत
1: और कहीं भी मत जाएगा, हमारे साथ बने रहिए 100.7 FM रेडियो पर, जो है धड़कन
0: लखनऊ की।

नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं और अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में यूपी के हितों को लेकर कई मांगें रखीं। लखनऊ से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने आज इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर शीर्षक दिया, योगी ने यूपी के लिए मांगे 2 एम्स। समाचार पत्र दैनिक जागरण ने इस खबर पर लिखा, नीति आयोग में मुख्यमंत्री ने रखी प्रदेश के विकास की रूपरेखा। समाचार पत्र अमृत विचार इस पर लिखता है, सभी राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं होगा, मोदी। समाचार पत्र नवभारत टाइम्स ने इस पर लिखा, विजन बता योगी ने रखी यूपी की अपेक्षाएं। और समाचार पत्र अमर उजाला ने लिखा, विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा उत्तर प्रदेश। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और उत्तर प्रदेश पर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस खबर को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र अमृत विचार ने इस खबर पर लिखा, किससे पूछकर बढ़ाया बिजली अधिकार ऊर्जा मंत्री। दैनिक जागरण ने इस खबर पर लिखा, मेरी सहमति बिना कैसे बढ़ा सरचार्ज ए के शर्मा। अमर उजाला ने लिखा, ऊर्जा मंत्री का आरोप, पावर कॉरपोरेशन में जाति धर्म देख हो रही छटनी व भर्ती। नवभारत टाइम्स इस पर लिखता है, बिना पूछे बिल में 10% सरचार्ज कैसे लगा दिया। ओमान तट के पास गुरुवार को फिर एक वाणिज्यिक पोर्ट एमटी जलवीर पर अमेरिका ने हमला किया। इस खबर को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर लिखा, चार दिनों में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोर्ट तबाह। अमृत विचार इस पर लिखता है, भारतीय क्रू वाले तीसरे जहाज पर हमला, लापता तीन नाविकों की मौत। नवभारत टाइम्स ने लिखा, जहाजों पर यूएस का हमला, तीन भारतीयों की जान गई। अमर उजाला ने लिखा, लापता तीनों भारतीय नागरिकों की मौत, अमेरिका का तीसरे जहाज पर हमला। स्वतंत्र भारत इस पर लिखता है, ईरान यूएस जंग के बीच तीन भारतीय नागरिकों की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि घर संभालने वाली महिलाओं को सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता माना जाना चाहिए। इस खबर पर अखबार ने लिखा, सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों के गृह कार्य की कीमत आंकी। समाचार पत्र अमृत विचार लिखता है, गृहिणियां राष्ट्र निर्माता, उनके घरेलू काम की कीमत 30,000 रुपये प्रतिमाह। राम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कराई जाएगी। समाचार पत्र दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिस पर अखबार ने लिखा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच। मौसम विभाग ने 13 जून तक उत्तर पश्चिम भारत में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस खबर पर अखबार लिखता है, 17 राज्यों में तूफानी आंधी बारिश का अलर्ट। फीफा विश्व कप 2026 का गुरुवार रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ आगाज हुआ। इस खबर को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमृत विचार ने इस खबर पर लिखा, फीफा विश्व कप का आगाज। नवभारत टाइम्स इस पर लिखता है, फीफा वर्ल्ड कप शुरू। अमर उजाला ने लिखा, फुटबॉल का महाकुंभ शुरू। दैनिक जागरण लिखता है, फीफा विश्व कप 2026 का शुभारंभ। केरल में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है, इसके बाद राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिस पर अखबार ने लिखा, केरल में निपाह की पुष्टि, अलर्ट जारी। इसी के साथ ही बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: तो क्या कहते हैं आप, ये जो प्यारी सी सुबह है उसे और खूबसूरत बनाने की कोशिश हमारी कामयाब रही या नहीं। एक बार फिर सरोली शुक्ला और सुस्मिता आ चुके हैं 100.7 FM रेनबो पर।
4: क्या बात है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार, वेलकम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और इसके साथ ही साथ मौसम इतना खूबसूरत है और आप साथ भी इतना खूबसूरत है, तो क्या बात है, ये सफर वाकई में खूबसूरत हो चला है।
3: तो ये खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे हम यही चाहते हैं। फिलहाल और बातें करने के लिए है हमारे पास, लेकिन अभी एक प्यार सा ट्रैक है जिसे आप एंजॉय करने वाले हैं।
4: बिल्कुल, तो इस गीत के साथ हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आपको फिर से बता दें कि आज हम किस बारे में आपसे बातें कर रहे हैं और अपनी बात आप हमें पहुंचा सकते हैं किस बारे में। आज हम बात कर रहे हैं, आपके अनुसार बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में और इसे रोकने में हमारी समाज की क्या भूमिका हो सकती है। तो आप इस बारे में अपनी बातें पहुंचाइए और जुड़ जाइए।
3: वैसे तो आपको ईमेल आईडी याद हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से आप सभी के लिए बता दें कि fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि इस बारे में आपका क्या कहना है, और अगर इससे जुड़ा कोई वाकया भी है तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं।
4: बिल्कुल, तो इंतजार है आपकी बातों का, जल्दी जल्दी अपनी बातें भेज दीजिए और जुड़ जाइए 100.7 FM रेनबो के साथ।
3: प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: और अगर चुप बैठने के लिए कोई कहे बिना तो मैं तो नहीं बैठ सकती किसी भी हाल में नहीं बैठ सकती। और अगर कहा जाए कि भाई चुप बैठो ना डांट पड़ेगी, तो पक्का मैं डांट तो खा जाऊंगी, लेकिन शायद चुप तो नहीं बैठ सकती।
1: तो साहब चुप मत बैठिए, आप भी अपनी चुप्पी को तोड़िए और अपनी बातें हम तक पहुंचाइए, जैसे हमारे बहुत से साथी अपनी चुप्पी तोड़ के अपनी बात पहुंचा रहे हैं और रोली भी यहाँ पर आप तक अपनी बात पहुंचा रही है और बता भी दिया कि साहब मैं चुप नहीं रह सकती।
0: चुप नहीं रह सकती, और बहुत देर तक कोई अगर मुझसे बोल नहीं रहा हो तो बस दिमाग क्यों चलने लगेगा कि भाई क्या है, क्यों नहीं बोल रहे, कुछ तो मतलब कैसे ना कैसे करके तो अगले को मतलब बुलवाना ही है।
1: तो रोली ने बुलवा ही लिया है और बहुत से साथी हैं जिनके मेल्स हम तक पहुंचे हैं, और इसमें इस वक्त जो मेल मेरे सामने है वो

0: किसका है?
1: मेरे सामने फिलहाल सुष्मित, आपके सामने किसका मेल है मैं नहीं जानती, मेरे सामने किसका मेल है मैं बताती हूँ। राम मोहन गुप्ता का मेल है और ये लिखते हैं, प्रभु स्मरण संग पुष्पांजलि, फिर सुन समाचार, तन मन हुआ मस्त मगन, जानकारी मिली अपार, प्रातः काल की रिमझिम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, रेनबो की धुने गुनगुना, जीवन को बनाया है तराना, सदाबहार गीतों की रुंझुन मन को खूब भाती है, ज्ञान ध्यान विज्ञान की बातें जीवन की राह बताती हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने लिखी और सबसे बड़ी बात है कि इन पंक्तियों में आपके जो भाव है ना वो सामने आते हैं, बहुत ही मन से आप अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुलक्षा सिद्दीकी जी का मेल आया है संडीला से और कहती हैं कि इन्हें सदाबहार गीत में गाने बहुत पसंद आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी भी इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया गुलक्षा जी, इंजॉय करिए मौसम भी और साथ ही साथ ये प्रोग्राम भी।
1: हमारे पास अगला मेल आया है सुधांशु जी का, राधे राधे। सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम पुष्पांजलि बहुत अच्छा लगा और आपने भजन बहुत अच्छे चलाए,
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: और सदाबहार गाने भी बहुत अच्छे आपने प्ले किए उसमें, जो सॉन्ग्स प्ले किए। और ये लिखते हैं, हमारे गांव में कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, एक लोगों को करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई है, तो पूरे गांव में शोक की लहर है, हमें भी बहुत दुख है।
0: निश्चित रूप से ये दुख की बात है। और इसके बाद अगला मेल है राम राज जी का और ये मेल इन्होंने भेजा है रायबरेली में गाँव पहाड़ीपुर से, और इनका कहना है कि आज कुछ ऐसे गीत सुनने को मिले जिन्हें सुनकर मज़ा आ गया, बहुत कम सुनने को मिलते हैं और निश्चित रूप से ये बड़ा ही आनंददायक था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामराज जी, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: अगला मेल है वारिस अली खान जी का और ये लिखते हैं, आवाज की दुनिया के दोस्तों को खान परिवार का प्यार भरा सलाम
0: आपको भी,
1: और ये लिखते हैं कि भाई सुष्मित भाई, जहां भजन होता है वहां भाव होता है और जहां भाव होता है वहीं भगवान होते हैं, आपकी पुष्पांजलि भावभीनी प्रस्तुति थी, सदाबहार गीत में आप हमेशा ब्यूटीफुल ट्रैक और टाइमलेस सॉन्ग्स प्ले करते हैं, आज भी आपने बेहतरीन गीत बजाए, मैं 6 बजे से आपके साथ जुड़ा हूँ, थैंक यू सो मच, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा।
0: और देखिए ये मेल आया है मेरे पास हुस्बा अंसारी जी का श्रीनगर लखीमपुर से और इनका कहना है वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है और बारिश भी हो रही है और ऐसे में आपके यहाँ मौसम कैसा है, तो साहब हमारे यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा है और आप लोगों का साथ है तो फिर ये साथ और भी खुशनुमा, मौसम भी बहुत बढ़िया है, फिर तो क्या ही कहने।
1: और भैया मोनू सेठ जी का हमारे पास मैसेज आया है, लिखते हैं, सुबह उठकर पुष्पांजलि सुनकर मन प्रसन्न हो गया, भजन बहुत सुंदर लगा और फिल्मी गाने भी बहुत खूबसूरत थे।
0: क्या बात है। और देखिए सुधांशु जी ने अपना मेल भेजते हुए कहा है इटौंजा बख्शी का तालाब से कि आज का सुविचार बहुत अच्छा लगा और इन्होंने सभी को राधे राधे कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने क्रिकेट विश्व कप की बात पूछी है, जरूर हम उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे।
1: हमारे पास जो अगला मैसेज है वो है सुधन बाबा जी का और ये लिखते हैं कि नवीन गल्ला मंडी सीतापुर रोड से इन्होंने मेल किया है और लिखते हैं, आज गाने बहुत अच्छे प्ले हो रहे हैं, रेडियो रेडियो सुनाने के लिए मैं काफी लोगों को प्रेरित करता हूँ, क्या बात है, लेकिन मतलब यही है कि अच्छे गाने आएंगे तभी कोई दूसरा रेडियो पर गाने सुनेगा ना, तो आज वही काम हो रहा है, अच्छे गाने बज रहे हैं, यही यहाँ की किसी और को भी मैं प्रेरित कर सकता हूँ कि भाई रेडियो सुनो, रेडियो सुनो।
0: क्या बात?
1: बाकी आप दोनों का गुड मॉर्निंग बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच
0: जी, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और मेल ले लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, राजकमल यादव जी ने अपना मेल भेजा है सूरतगंज बाराबंकी से और नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे ये याद बहुत अच्छी लगती है, इनको अपनी एक याद का इन्होंने बीती हुई एक बात का जिक्र किया है कि मैं बचपन में VCR देखने का बहुत शौकीन था, रात को चुपके से चले जाते थे और जब वापस आते थे तो बहुत डांट खानी पड़ती थी। क्या बात है, ये एक वाकई में ये वो दौर था जब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुआ करती थी।
1: क्या बात है। और विनीत कुमार ने हमें मैसेज भेजा है और ये लिखते हैं, विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, लिखते हैं, सुष्मित रोली आप दोनों भाई बहनों को विनीत कुमार का शुभ गुड मॉर्निंग, आपको भी हमारी तरफ से स्वीट स्वीट नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ये लिखते हैं कि जी मैं 7 बजे वाला कार्यक्रम सदाबहार गाने सुपर हिट सॉन्ग्स मतलब सदाबहार गाने और गुड मॉर्निंग में भी आप लोग गाने सुपर हिट चला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, इतने अच्छे अच्छे गाने बजाने के लिए मजा आ रहा है, कार्यक्रम आप लोगों का सुनकर मौसम भी सुहाना है और गाने भी मजेदार।
0: क्या बात है, ऐसे ही मजे लेते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। देखिए एक और ट्रैक बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत सारे मेल्स हैं अभी बाकी है, उन बातों को भी हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बातें लंबी

0: और रोली कहा जाता है कि बच्चों के हाथों में कलम अच्छी लगती है किताबें अच्छी लगती हैं और अच्छे लगते हैं वो सपने जो उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं ऐसे अनेक बच्चे हैं जिनका बचपन काम की जिम्मेदारियों के बीच कहीं खो जाता है जिस उम्र में उन्हें स्कूल में होना चाहिए उस उम्र में वो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं
1: बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है और मेरा ख्याल है इसी

0: दा को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हम सभी मनाते हैं और हमें मनाना चाहिए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन का अधिकार है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि बच्चों के सपनों को मजबूरी नहीं अवसर मिले, उनके हाथों में बोझ नहीं किताबें हों,
1: और साथ ही साथ उनका जो ये बचपन है वो खुशियों, सीख और उम्मीदों से भरा हो तो क्या बात होगी। तो इस जो ये बचपन है उसको और खिलखिलाने दीजिए और खिलने दीजिए, यही हम आपसे गुजारिश करेंगे। इस बात के साथ ही साथ यहाँ पर एक ट्रैक और मिलते हैं हम इस गीत के बाद।

0: नमस्कार, 27 मिनट हो गए हैं रोली, मौसम इतना सुहावना है और हमारे दोस्त बता रहे हैं और यहाँ भी मौसम बड़ा खुशनुमा लग रहा है। ऐसे में ये जो मौसम में बदलाव आया है ये क्या कुछ करने वाला है ये जान ले।
1: फिलहाल हमने अभी स्टूडियो से बाहर जाकर नहीं देखा है, जब हम शो शुरू करने के लिए हम यहाँ बैठे थे उससे पहले देखा था। अब आप सभी बता सकते हैं कि भाई बाहर कैसा मौसम है। और फिलहाल मौसम की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास है कौन
0: जी, हमारे एक्सपर्ट, मौसम के एक्सपर्ट, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। करते हैं उनका वेलकम। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है 100.7 एफएम रेनबो पर। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर।
2: जी गुड मॉर्निंग।
0: तो हमारे साथी जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि मौसम में ये जो बदलाव आया है तो इसके साथ ही साथ क्या कुछ अपडेट रहने वाला है मौसम में।
2: जी बिल्कुल, जैसा कहा गया था मौसम बदल चुका है, काफी सुहाना मौसम हो गया है
0: जी।
2: और ये दिन में बीच में दो तीन बारिश की भी आएगी, तो ये सिलसिला आज और कल रहेगा, परसों भी ऐसे रहेगा, लेकिन परसों से धीरे धीरे मौसम खुलेगा और

0: कुछ बारिश होगा, लेकिन आज और कल अच्छी बारिश से मौसम खुशनुमा रहेगा और तापमान में गिरावट रहेगी।
1: तो फिलहाल एक दो दिन हम लोग खुश रह सकते हैं, बहुत खुश हो सकते हैं इस मौसम को लेकर के।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश हो सकते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, आपने हमें खुश कर दिया
2: सर। थैंक यू, आपने खुशियां हम तक पहुंचाई।
0: ओके, धन्यवाद।
1: तो मित्रों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने बताया कि खुश हो जाइए, और खुशी का कारण है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और ये रहने वाला है। फिलहाल अभी एक दो दिन आपको ऐसे ही राहत पहुंचाता रहेगा, तो एंजॉय करिए इस मौसम को और साथ ही साथ इस ट्रैक को भी जो आप तक पहुंच रहा है।
2: बिल्कुल।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, रोली शुक्ला और सुस्मित के साथ। और हमारे पास ये देखिए कितने सारे मेल्स एक साथ फ्लैश हो रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं जल्दी से, पढ़ देते हैं और भी मेल्स। हमारे पास सुल्तान रजा का मेल सामने दिख रहा है, क्या लिखते हैं।
4: और ये मेल है मेरे सामने नीलू शर्मा जी का, और इन्होंने कहा है कि इन्होंने कुछ समय पहले जब ये सफीपुर गई थी वहाँ पर एक किराने की दुकान पर इन्होंने एक बच्चे को काम करते हुए देखा था, और वहाँ पर जो मालिक का बेटा था वो उस लड़के से ज़बरदस्ती अपनी कार साफ़ करने के लिए बोल रहा था, और तब उस लड़के ने कहा कि हम नहीं करेंगे, जो हम काम करते हैं हम वही करेंगे। तो ये इनका कहना है, और कहती हैं बच्चे अमीर घर के हों या गरीब घर के हों, सभी के सपने बड़े होते हैं और सभी लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो हमें इन बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
3: सुल्तान रजा जी लिखते हैं, सुष्मित सर और रोली मैम को नमस्कार। कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा। आज का मुद्दा बहुत बढ़िया है, बाल श्रम ये बहुत ही मजबूरी वाला विषय, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि महंगाई को देखते हुए खर्चे ज्यादा हैं, इसलिए लोग बच्चों को भी काम पर भेज देते हैं, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इनका कहना है। थैंक यू सो मच, आपने हमें मेल किया।
4: और बांगरमऊ उन्नाव से प्रहलाद कुमार जी का मेल आया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, लेकिन आपने अपने प्यार से मेल भेजा, लेकिन हम आपकी पसंद के गाने नहीं इस वक्त हम प्ले कर सकते, लेकिन आपने मेल भेजा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वकील अहमद साहब का मेल, गुड मॉर्निंग का मुद्दा इनको बहुत अच्छा लगा, कहते हैं जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते तो हम उनसे कहते हैं पढ़ ज़रूर लो, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो ये इन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अरुण कुमार का मैसेज आया है हमारे पास हरदोई से, लिखते हैं सदाबहार प्रोग्राम में खूबसूरत गीत सुनाने के लिए धन्यवाद। इसी अंदाज में आपने गुड मॉर्निंग लखनऊ की भी शुरुआत की, क्या बात है, आज इस खूबसूरत मौसम में सुपर हिट गीत सुनकर तो दिन ही अच्छा हो गया। और आज का जो मुद्दा है वो भी बहुत अच्छा है, ज्यादा जनसंख्या, गरीबी, शिक्षा की कमी इसके प्रमुख कारण है जो बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं।
4: और देखिए महेंद्र देपन जी ने राजस्थान के नागौर से अपना मेल भेजा है, कहते हैं आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाला है। मैं खुद एक ग्रेनाइट और टाइल ठेकेदार हूं और अक्सर निर्माण कार्यों पर काम करता हूं। अपनी आंखों से देखता हूं कि कैसे मजबूरी के चलते कई बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि गरीबी के कारण ये करना पड़ता है, जो कि कड़वा सच भी है। मेरा मानना है कि इस समस्या का समाधान व्यावहारिक कदम उठाने से होगा। अगर समाज का हर सक्षम व्यक्ति अपने आसपास के एक बच्चे की शिक्षा या उसके पोषण की एक छोटी सी जिम्मेदारी उठा ले तो धीरे धीरे ये स्थिति बदल सकती है। और इसके साथ ही साथ हम ठेकेदारों और काम करने वाले

0: लोगों को भी ये समझना होगा कि एक बच्चे का भविष्य खराब करना पूरे देश का नुकसान है। बहुत अच्छी बात कही है आपने महेंद्र जी, निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए सोचने वाली और उस पर एक कदम उठाने वाली बात है।
1: बिल्कुल। अगला हमारे पास मेल आया है तेज बहादुर यादव का, लिखते हैं रोली दीदी सुषमा सर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? और ये लिखते हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है और सभी गाने बहुत बेहतरीन सुनवा रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं कि मुद्दा आज का पूरे समाज का है ये मुद्दा, और मुद्दे की बात ली जाए तो हम किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते और रखना भी नहीं चाहिए, बल्कि कहीं भी श्रमिक की हमें मदद करनी चाहिए, जैसे भी हो सके उन्हें पढ़ाई लिखाई की ओर प्रेरित करें और इसके लिए उनके माता पिता से बात भी करें अगर ज़रूरत पड़े तो। बिल्कुल सही बात लिखी है आपने, कभी आसपास अगर आपके ऐसा हुआ तो आपको कोई ऐसा शख्स दिखता है तो जरूर करिएगा, ये कदम सराहनीय होगा।
0: बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। और इसके साथ ही साथ जगमोहन मिश्रा जी का कृष्णा नगर लखनऊ से मेल आया है, मुद्दे से जुड़ते हुए इनका कहना, पुराना एक वाकया याद आ गया इस मुद्दे से। उन दिनों में भोपाल में था, सुबह उठकर अखबार पढ़ने का शौक है, आदत है, और लेकिन ऐसा हुआ कि 3 दिन से हमारे यहाँ पेपर नहीं आया, तो जो पेपर डालने लड़का आता था वो नहीं आ रहा था, उसके चलते मेरा गुस्सा जो था वो आसमान पर था और मैं सुबह उठकर उसका इंतज़ार कर रहा था, सोचा आज उसको बहुत डांटूंगा। तभी वो लड़का दिखाई दिया और उसने जैसे ही पेपर फेंका तो मैंने उसे रोक लिया और बुलाकर उससे कहा कि तुम 3 दिन से कहा थे, मेरे 3 दिन ख़राब कर दिए, पेपर क्यों नहीं डाला? बड़ी मासूमियत से चुप होकर उसने सिर झुका लिया। फिर भी मैंने पूछा कि भाई क्या है, तुम कहाँ थे? तो उसने फिर जो कहा उसने मेरा एकदम से सारा का सारा गुस्सा बदल दिया। इनका कहना, उसने बताया कि मैं हॉस्पिटल में था, मेरी माँ एडमिट थी और इसके चलते मैं नहीं आ पाया। इस बात को सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और मैं अवाक उसके चेहरे को देखता रहा। मैंने पूछा आप कैसी हैं, तो बोला ठीक है, घर पर आ गई हैं। तब मैंने उसे रोका और कुछ उसको मदद की कोशिश की, उसको कुछ रुपए दिए और उसके बाद मैंने देखा कि जब वो जा रहा है तो साइकिल पर चढ़ने से पहले, पैडल मारने से पहले उसने अपनी आँखें पोंछी और मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी हो गया। तो कहने का मतलब ये है इनका आगे कि मैं इस तरह से ना जाने कितने बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनकी मदद की, लेकिन सच्चाई है कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी आर्थिक स्थिति के आगे मजबूर होकर बाल श्रम नहीं छोड़ पाते। तो हम तो अपने सुनने वालों से यही कहेंगे कि उनके प्रति दया, करुणा और ममता का भाव रखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी मदद कर सकते हैं करें। बिल्कुल ठीक कहा जगमोहन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है।
1: और हमारे पास ब्रजेश सिंह का मैसेज आया है इटावा कैसरगंज बहराई से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सुस्मित सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू टू। लिखते हैं खेत में अच्छी हवा के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ और सॉन्ग सिलेक्शन आप सबका आज बहुत ही बेहतरीन है, मूड को एकदम फ्रेश कर दिया, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं कि नाबालिग बच्चों को मजदूरी कहीं ना कहीं मजबूर करती है और हम सब कोई हो कुछ सक्षम है अगर तो आर्थिक मदद उनकी ज़रूर करनी चाहिए, मैं करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ जितना हो सकता है आप भी उन बच्चों की मदद करिए, शिक्षा मिल सके तो उनको शिक्षा देने में मदद करिए। और सभी की मजबूरी होती है, परिवार की मजबूरी होती है समझता हूँ, लेकिन क्योंकि एक ख़राब स्थिति की वजह से पढ़ाई छूट जाती है और आने वाले समय में उनका जो भविष्य है छोटे छोटे बच्चों का वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे में अगर हम पर्सनली उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और ऐसा ही करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा पूजा भारद्वाज जी ने गुड़गांव हरियाणा से अपना मेल हमें भेजा है, गुड मॉर्निंग कहा है सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कुछ और मेल्स हैं उनकी तरफ भी हम आगे चलेंगे, फिलहाल यहाँ पर एक ट्रैक से जुड़ते हैं रोली और अपने साथियों के साथ आगे भी बातें करेंगे यहाँ पर इस गीत के बाद। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ट्रैफिक अपडेट आप तक पहुँचाएं।
1: तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, रोली शुक्ला और
0: सुस्मित के साथ।

0: हनी सिंगर।
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: ये लीजिए, 9:46 हो गए और देखिए
7: समय कितनी तेजी से भाग रहा है रूली।
6: वही मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए घड़ी की तरफ देखिए, उसका इशारा समझिए।
7: इशारा ये कि बस मुझे थोड़ी देर और इस प्रोग्राम में रहना है, उसके बाद आगे का जो जिम्मा है वो आपके हाथ तो रहेगा।
6: हाँ, और एक और इशारा है, सोचिए जरा वो कौन सा इशारा है।
7: अच्छा, मुझे लगता है बता ही दीजिए।
6: हाँ भाई, वो इशारा ये कि अभी भी बहुत सारे मेल्स हमारे पास बचे हुए हैं जिन्हें कि हमें पढ़ना है। क्योंकि कुछ लोग जो है ना अपने मेल्स में दोबारा से लिख कर भेज रहे हैं, हमारी मेल क्यों नहीं पढ़ी आप।
7: ओह माय गॉड, तो चलिए उन्हें निराश नहीं करते हैं, जो भी साथी हैं उनकी बातों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से साथी हैं जो भी बाकी हैं।
6: हमारे पास किसका मैसेज है, ये मैसेज है रुशाली सिंह का। गुड मॉर्निंग सर, मैं रुशाली सिंह मैं सुन रही हूँ आपको सुल्तानपुर UP से। आप लोगों की आवाज़ बहुत बहुत ही अच्छी। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो डेली आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ, अंत तो डेली आते नहीं, हमारे और आर्जिस आते हैं और सब आर्जिस की आवाज़ मान के चलिए बहुत अच्छी है। और ये लिखती है कि मुझे FM सुनना बहुत बहुत पसंद है, आई लव FM।
7: क्या बात है, क्या बात है। चलिए ये जो प्यार है ये यूँ ही बनाए रखिए। और इसके अलावा रोशनी रावत जी ने कहा है मुद्दे से जुड़ते हुए कि बच्चों को काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं कई सारे माता पिता, अपनी परिस्थितियों के चलते ऐसा उनके साथ होता है। इसे रोकने के लिए हमें दुकानदारों और जो ठेकेदार हैं उनसे बच्चों को काम पर न रखने के लिए एक उनसे हम कोशिश कर सकते हैं कि वो ऐसा ना करें।
6: बिल्कुल। और हमारे पास इसरोल जिला बाड़मेर राजस्थान से मैसेज आया है, किसका आया है, मोहम्मद सोलंकी। बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है गरीबी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां अक्सर देखा जाता है कि कोई व्यवसाय बहुत ज़्यादा नहीं होता तो लोगों को जुड़ना पड़ता है किसी ना किसी श्रम में।
7: और इसके अलावा आंचल सेठ ने अपना मेल भेजा है, कहती हैं बाल श्रम रोकना केवल श्रम विभाग का काम नहीं है बल्कि ये पूरे समाज का दायित्व भी है। इसे सिर्फ जन जागरण और जागरूकता के जरिए ही रोका जा सकता है। इसके लिए स्कूली बच्चों

0: के श्रम विभाग समाज कल्याण विभाग सहित इस काम में लगे हुए एनजीओ को रैलियों और गोष्ठियों के जरिए जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। किसी दुकान या होटल पर अगर हम कुछ ऐसा देखें कि कोई बच्चा काम कर रहा है तो हमारा ये फ़र्ज है कि हम टोकें और इसे रोकने की कोशिश करें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर कर पाएंगे। और ये टोकना तो हमारा बनता है क्योंकि ऐसे कानून है हमारे यहाँ जो अगर हम उनका ध्यान रखें, उनको इस्तेमाल करवाने की कोशिश करें, उनको लागू करवाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं बाल श्रम में कमी आएगी।
1: और हमारे पास अगला मेल है वारिस अली खान जी का, लिखते हैं सुषमित और रोली जी, मेरा मानना है कि बाल श्रम का प्रमुख कारण गरीबी है। जिन घरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती उन्हीं घरों के बच्चे काम करते हैं और बच्चियां दूसरे घरों में काम करती हैं। तो ऐसे में एक वाक्य आपसे शेयर कर रहा हूँ, बात उन दिनों की जब मैं प्राइमरी स्कूल जा रहा था, उस वक्त 25 बच्चों को के फीस माफ़ करने के साथ किताबें और यूनिफॉर्म मुफ्त करवाई गई थी, लेकिन वे बच्चे पढ़ नहीं पाए। उनके पेरेंट्स ने जवाब दिया, सर भूखे रहकर कैसे पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने अपना तरीका बदल दिया, गरीब परिवार को हर महीने की अब कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए जिससे कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए और वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया।
0: और इसके अलावा गीता सेठ जी देखिए क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं बाल श्रम समाज के लिए घातक है और हम ऐसे बच्चों के परिवार से जाकर बात करें तभी समस्या का हल होगा। कुछ घरों की स्थिति बहुत ख़राब होती, माता पिता लाचार होते हैं और उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता, ऐसे में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये हम अगर देखें और थोड़ा सा कोशिश करें तो इस पर कुछ बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं।
1: साथ ही हमारे पास राममोहन गुप्ता जी का मैसेज आया, लिखते हैं बाल श्रम के बजाय उनकी शिक्षा जरूरी हो सकी, जितना देकर ध्यान की मदद पूरी, बचपन है खेलने कूदने पढ़ने सीखने के लिए, बढ़ने मस्ती कर बचपने के संग जीने के लिए। सामान्य तौर पर हर बच्चा पढ़ना चाहता है मगर पारिवारिक मजबूरी मन को मारता है, ऐसे में अगर हम सब थोड़ा कर्तव्य निभाएं, थोड़ी बहुत कर मदद समझा, इनको पढ़ाए, निश्चित ही ऐसे बच्चों के भी जीवन बन जाए, होकर बड़े ये ही परिवार की मदद कर पाए। बहुत अच्छा मेल, थैंक यू सो मच राम मोहन गुप्ता जी।
0: मोनू सेठ जी कह रहे हैं कि बाल श्रम एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जो बच्चों को उनके बचपन, शिक्षा और बुनियादी अधिकारों से वंचित कर देती है, ऐसे में हमें इस पर ध्यान देना होगा।
1: और हमारे पास मैसेज किन का आया है, मैसेज आया है जौहर जी का और ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग, और ये लिखते हैं बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से इनका मेल आया है, थैंक यू सो मच आपने मेल किया।
0: तो देखिए हमने अपनी पूरी मेहनत करके जितने भी हमारे साथी थे उन सबके मेल शामिल कर लिए और आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप इतने प्यार से हम तक जुड़े, अपनी बातें हम तक पहुँचाई। और यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ रोली मैं भी कि अगर हम ये बच्चों की बात करते हैं, बाल श्रम की बात करते हैं, इसके निषेध की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बात मुझे लगती है कि हम मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहाँ किसी बच्चे के हाथ में मजदूरी नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कार और सपनों की रोशनी हो, तो ये एक बदलाव देखने को मिलेगा।
1: बिल्कुल, एक छोटा सा सपना जो बच्चों की मासूम से आंखों में कहीं खेलता खेलता सा फिरता है, बस उस सपने को सच करने के लिए आपको कोशिशें करनी है और ये कोशिशें हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम किसी भी बच्चे को अगर देखते हैं तो उसे विद्यालय ही पहुँचाएँ, अपनी तरफ से भी उसे कुछ किताबें और उसके साथ थोड़ा समय बिताकर उसको थोड़ा सा पढ़ाकर आगे बढ़ा सकते हैं, क्यों उसमें।
0: बिल्कुल सही कहा रोली। तो ये तो थी बात हमारी और हमने अपनी बात रखी, आपकी बातें भी इस मंच तक पहुंची, बहुत बहुत आप सभी का आभार। और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और इसके बाद अब समय का इशारा बहुत तेजी से हो रहा है कि मुझे बस बहुत कम समय है यहाँ पर, अब
1: लेंगे ना बेबी थोड़ा समय तो शेष है ना,
0: तो चलिए इस कमर्शियल ब्रेक के साथ आगे बढ़ते हैं।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा,
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
1: और सुष्मित का इशारा था, आप समझ ही गए होंगे सुष्मित क्या कहना चाह रहे थे, भाई ये जाना चाहते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको और रोक रही हूँ, रुक जाइए मत जाइए। आज हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे हमारे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स थे उनके मैसेजेस हम तक आए, उन्हें गाने पसंद आए उसके लिए थैंक यू, और उन्हें प्रोग्राम अच्छा लगा इसके लिए भी थैंक यू। और दोस्तों आपका जो ये प्यार है, आपका जो ये साथ है, ये सहयोग है हमारे साथ यानी FM रेनबो के साथ, ये वाकई काबिल-ए-तारीफ है और इसके लिए कितनी बार भी आपको थैंक यू लिखे लिखकर भी

0: जे या फिर डायरेक्टली वन एयर बोले वो कम ही हो जाता है।
1: क्या बात है रोली, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए चलते चलते मैं एक हमारे और साथी हैं जो बड़ी दूर शोलापुर महाराष्ट्र से जुड़े अपनी बात के साथ, इनका मेल आया। गुड मॉर्निंग कहा इन्होंने सभी को और कहते हैं बाल श्रम हमारी इंडिया का लॉस है और अच्छी शिक्षा के जरिए हम कुछ कर सकते हैं इस दिशा में। बहुत अच्छी बात कही आपने, इतनी दूर से आप हमको सुन रहे हैं, अपना मेल भेज रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और निश्चित रूप से हम सभी को इस दिशा में सोचना चाहिए दोस्तों और बढ़ के कुछ कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि जगमोहन मिश्रा जी ने भी कहा कि हम सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर हम अपने आसपास देखें तो उसके लिए जो भी हम कर सकें वो करने की कोशिश करें, तभी एक बदलाव आएगा।
0: तो दोस्तों वादा करिए कि जब भी आप किसी छोटे नन्हे से बच्चे को देखेंगे और कहीं भी देखेंगे, अगर वो बाल श्रम में लगा है, बाल श्रम से जुड़ा है, तो कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेंगे उसे वहां से हटाने का और उसे एक नई दिशा दिखाने का।
1: तो इस बात के साथ ही साथ अब मुझे सुस्मित को दीजिए यहाँ पर अनुमति, आपसे टाटा बाय बाय कहूंगा, लेकिन फिर मुलाकात होगी किसी और दिन।
0: और मैं रोली शुक्ला आपके साथ रहने वाली हूँ पूरे 12 बजे तक, तो कहीं भी मर जाइएगा, बस हमारे साथ सुनते रहिएगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में 10 से 11 आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक, अच्छे अच्छे गाने आप इंजॉय करेंगे, और उसके बाद 11 से 12 आपके मेल्स हम तक आएंगे, यानी संदेश आपके गीत हमारे। तो बस बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा प्रशासक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं था। ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो, अयोध्या का, राम मंदिर का निर्माण हो, तमाम ऐसे कार्य शामिल हैं। प्रदेश के फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस पर गुरुवार देर शाम पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है। इसी ट्रेन से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सफर कर रहे थे। पुलिस ने देर रात तक घटनास्थल के आसपास जांच की है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संघ प्रमुख कानपुर में एक समारोह में शामिल होने के बाद लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। हालांकि इस घटना में संघ प्रमुख पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बृहस्पतिवार को जिलों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश देखने को मिली। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अमरोहा में बीती रात झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश से फसलों को लाभ मिलने से किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। पीलीभीत जिले में भी रात से तड़के तक बरसात का क्रम जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ समेत यूपी के ज्यादातर जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि यूपी में 18 जून के बाद कभी भी मानसून की एंट्री हो सकती है। लखनऊ में मानसून के 20 जून तक पहुँचने की उम्मीद है। और अंत में फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन मुकाबले में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर अभियान की विजयी शुरुआत की। मेक्सिको ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और 9वें मिनट में विश्व कप 2026 का पहला गोल देखने को मिला। इस गोल के बाद एस्टेका स्टेडियम दर्शकों के उत्साह से गूंज उठा। मैक्सिको ने इस जीत के साथ विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की और घरेलू मैदान पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप 11 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
4: भाई अब मैच का क्या होगा?
3: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
5: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
6: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
5: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
7: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
8: सुबह के हो रहे हैं 10:05 और एक बार फिर से आपकी होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला आ चुकी है आपके अपने फेवरेट चैनल 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। और ये धड़कन लखनऊ की जो आप तक पहुंच रही है समय रेडियो के उस पार, फिलहाल अपने साथ एक म्यूजिक एक्सप्रेस में आपको तैयार करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो आपका क्या कहना है, आप तैयार होने के लिए है बिल्कुल तैयार? तो बस हो जाइए तैयार, अच्छे अच्छे गाने एंजॉय करिए और साथ में आपकी जो काम है उन्हें जल्दी जल्दी पूरा कर लीजिए और उसके बाद फिर बताइएगा आपको कैसे लगे सॉन्ग सिलेक्शंस।

0: जन गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: माई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

और दोस्तों इसी के साथ अभी ये प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही, रोली आपके साथ रहने वाली है नेक्स्ट प्रोग्राम में भी। बस बीच में होंगे समाचार और समाचार के उस पार आपके लिए लेकर आ जाऊंगी आपका फेवरेट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? जी हाँ, संदेश आपके गीत हमारे, तो बस रहिए तैयार और कई मजा आइए। स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल।

नमस्कार, अब सुने मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा एवं समग्र विकास के अधिकारों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना है। कार्यक्रम में लगभग 800 प्रतिभागियों के सम्मिलित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के माध्यम से प्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 3,99,36,22,551 रुपए की फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये स्वीकृति दो प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूमि पर दी गई 75% छूट की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई है। अयोध्या में कल हुए होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर DG होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि होमगार्ड से जुड़ी जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। और अंत में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिफ्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

करते हैं और आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे, जिसमें आप FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर हमें अपने ईमेल्स शेयर कर सकते हैं, कौन से जिसमें आपके संदेश होते हैं और ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और साथ ही साथ हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर्स पर जो कि है 0522 जो कि हमारा कोड है, और नंबर है 2238852 और 2238845, ये दो नंबर्स हैं, और इन नंबर्स पर डायल करिए, फटाफट हो जाइए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल।

हो चले हैं 11:08 और इस समय आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए आपके साथ हूँ मैं आपकी आरजे होस्ट रंदोस रोली शुक्ला और मेरे साथ रामराज का मेल सामने बिल्कुल सामने है। मैं ये लिखते हैं कि नमस्कार संदेश आपकी गीत हमारे प्रोग्राम में मेरा ये मेल शामिल करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपने मेल भेजा और ये जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से है रामराज राजभानु शंकर भैया और साथ ही साथ इनके कई दोस्त। सबसे पहले इनकी तरफ से प्यार भरा नमस्कार थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं कि संदेश है अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिनके माता पिता नहीं होते उनसे माता पिता की कीमत पूछिए, जब तक माता पिता रहते हैं उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए और उनके ना रहने पर माता पिता की बात समझ में आती है, इसलिए जब तक आपके साथ आपके मम्मी डैडी का साथ है उनकी बातें मानिए और अच्छे से उनके साथ जिंदगी को बिताइए, है ना, यही कहना चाहते हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत ही स्वीट सा मैसेज आपने प्रोग्राम की सबसे पहले पहल भेजा है। और कहते हैं कि जब किसी भी काम की शुरुआत हम अपने माता पिता के आशीर्वाद से करते हैं तो वो काम सफलता की ओर जरूर पहुंचता है और हमें अपनी मंजिल जरूर मिल जाती है। आपका क्या कहना है? हमारे पास एक और मैसेज आया है मोहम्मद सद्दाम का और ये लिखते हैं मेरी क्यूट सी प्यारी वाली आरजे

रोली दीदी आपको प्यार भरा नमस्कार, आपको भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार सलाम। और ये लिखते हैं, मैं ज़िला बाराबंकी से ईमेल कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम ने जो पिछला किया वो बहुत ही अच्छा किया, मेरा संदेश ये है, थैंक यू सो मच। ये लिखते हैं कि मेरा संदेश ये है कि सभी लोग अपना ख्याल रखें, ख़ास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं अपना ख्याल रखें, पानी पीते रहें और एक दूसरे का नाम, अच्छा ये अपने कुछ दोस्त का नाम लेना चाहते हैं, मोहम्मद फैज़ और बाबू अंसारी। थैंक यू सो मच, आपने हमें मेल किया और आपकी मेल देखिए शामिल हो गई है। और कई बार आप लोग कहते हैं ना कि हमारा कॉल लिया नहीं जाता, हमारी मेल शामिल नहीं, मेल तो आपकी दिखती है सामने लेकिन कई बार आपकी कॉल्स नहीं दिखते। वैसे कॉल्स हमारे पास करने के लिए क्या करना है आपको, आपको कॉल्स करने के लिए हमारे नंबर डायल करने। भाई लखनऊ का कोड क्या है आप सबको पता है? चलिए मैं फिर से बता देती हूँ, 0522 ये हमारा लखनऊ का कोड है और नंबर है 2238852 और साथ ही 2238845, ये दो नंबर हैं जिन्हें आप डायल कर सकते हैं। फिर आपसे बात करने के लिए मैं कर रही हूँ इंतज़ार, एक और मेल आ गया है झटाझट से, तो फिर ये मेल पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतने अच्छे मौसम में अगर एक और अच्छा सा ट्रैक आप तक ना पहुँचाऊँ तो क्या बात है, फिर क्या ही कहने, हाँ फिर तो गलत बात होगी ना। मैं अगला गाना बिल्कुल तैयार है आप सबके लिए, चलिए इसे एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद।

0: और हमारे प्रोग्राम की जो पहली कॉलर है उनसे हम बात करते हैं, टाइम आ गया उनसे बात करने का। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रही हैं?
1: नमस्ते, मैम दीक्षा पांडे बोल रहे हैं।
0: दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो आज आप क्या कहना चाहती हैं दीक्षा जी हमारे प्रोग्राम के में, जो कि संदेश आपके गीत हमारे है, इसमें क्या संदेश देना चाहती हैं आप?
1: जी, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में सभी लोग अपना ख्याल रखें और पक्षियों के लिए पानी या दाना जरूर रखें।
0: पक्षियों के लिए पानी और दाना आप रखती हैं?
1: जी
0: आप रखती हैं अपने घर में? आते हैं पक्षी आपके यहाँ?
1: जी जी जी

0: हमारे यहाँ तो हमारे छते पे घोंसला बना के कई पक्षी हैं।
1: बहुत खुशी होती है ना जब छोटे छोटे पक्षी आपके दिए हुए दाने और पानी पीते हैं, दाने चुगते हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है ना जब हम एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए करते हैं कुछ अच्छा सा, तो बड़ा प्यारा लगता है ना।
0: जी मैम जी बिल्कुल।
1: और ऐसे ही हमें प्यारा लगता है जब आप प्रयास करते हैं हमारे साथ जुड़ने का और हमसे बात करते हैं, तो हमें भी बहुत प्यारा
0: जी
1: लगता है।
0: मैम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं मैम पूरी शिद्दत से।
1: हाँ, तो देखिए आपका प्रयास जो कर रही थी आज सफल हो गया ना।
0: जी, 2-3 महीने से लगातार ट्राई करते हैं, पूरा 1 घंटा।
1: तो 1 घंटा आज आपने ट्राई किया था या उससे पहले ही कॉल मिल गया आपका?
0: नहीं मैम 10:50 से ट्राई कर रहे हैं।
1: मेहनत सफल हो गई, तालियां। ठीक है, थैंक यू
0: थैंक
1: सो
0: यू
1: मच।
0: मैम आपने कॉल रिसीव की।
1: नहीं, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। ओके, ऐसे ही हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, टाटा बाय।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

और थोड़ा सा जब मौसम ठंडा हो ना तो बस ये जो मस्ती है ना ये तो दिमाग में चढ़ी जाती है। तो बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि हर दिन अपने अपने खास होता है और आज का दिन भी खास है ऑब्वियसली, क्योंकि आज का दिन हम देख रहे हैं ना कितनी खूबसूरती से अपनी पूरी खुली आंखों से, यही तो सबसे ज्यादा खास बात है। और इससे भी ज्यादा खास बात क्या है इस प्रोग्राम की, क्योंकि इससे ज्यादा खास जो बात है ना, हमारे साथ एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है कि ये जनाब कहीं चले गए। हेलो दोस्त, कहाँ गए आप? तो फिलहाल हमारे साथ एक बड़े ही प्यारे से कॉलर ने हमें कॉल किया था, उनकी आवाज़ थी हमारे साथ में और शायद डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से कॉल कर सकते हैं दोस्त, फिर से एक बार आप हमें फ़ोन मिला सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे पास बड़े सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और मैसेज में मैं अगर पढ़ूं, सबसे पहला मैसेज तो आपको पढ़ के सुना चुकी हूं। रोशनी रावत जी ने एक बड़ा ही प्यारा सा पोस्टर बनाकर भेजा है हमारे पास और वो लिखती है कि प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में, संदेश ये है कि घरों के आसपास कूड़ा करकट ना फेंकें, अपनी सफाई अपने हाथ है। और इन्होंने बड़ा प्यारा सा बनाया है आकाशवाणी और आकाशवाणी का स्टूडियो बना करके भेजा है 100.7 FM का, बहुत खूबसूरत है। यकीन मानिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती इस पोस्टर को देखने के बाद मैं कितनी खुश हो रही हूँ। आपने आकाशवाणी का जो स्टूडियो बनाया है बहुत अच्छा पोस्टर है इसमें, और साथ ही साथ आपने एक आकाशवाणी का ऑफिस भी बनाया है। थैंक यू सो मच। और इन्होंने लिखा है कि रोशनी रावत ग्राम बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव अभी चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। और देखिए मैं शायद इतने ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि इमोशन में अपने होश कहीं खो रही थी, और ये देखिए होश को पकड़ लिया मैंने, वापस डाल लिया, वापस इसे पहन लिया। और हमारे पास वकील अहमद का मैसेज आया, लिखते हैं कि सलाम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, आपकी ये बातें हमें अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि संदेश ये है कि जगह मिलने पर आपको साइड ज़रूर देंगे रिक्शा चलाने वालों का, सभी बड़ी गाड़ियों वाले ज़रूर ध्यान दें, हमारे यहाँ बारिश होने से मौसम अच्छा हो गया है। वकील अहमद जी हमें ये मैसेज लिखते हैं, सीतापुर से भेजते हैं। और साहिबन सारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी, पिंकी, इन सबको, सबका इन्होंने नाम भी लिया है, गुलशा सिद्दीकी, एमन नवाब, इन सबका नाम लिया, हमारी रेगुलर लिसनर है ये सारे। और इन्होंने लिखा है कि भाई इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है कि साइड दिया जाए तभी अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए। राजकमल यादव का हमारे पास मैसेज आया है, लिखते हैं नमस्कार मैम जी, राम राम, आपको भी राम राम, लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है मैम जी, मेरा फ़ोन कभी नहीं लगता, मैम प्लीज़ मुझे एक बार मेरा गाना, अच्छा गाना भी आपने सेलेक्ट कर लिया, थैंक यू, आपने हमें मैसेज किया। और हमारे पास वारिस अली खान जी का मैसेज आया है, लिखते हैं रोली जी नमस्कार, आदाब, आपको भी आदाब, लिखते हैं आपने पिछले शो में बेहतरीन गीत बजाए, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं मौसम तो जितना भी बदल ले इंसान से ज़्यादा बदलने का हुनर तेरे पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। और नेक्स्ट ये लिखते हैं कि एक वक्त था जब हम गर्मियों में शाम होते ही अपनी छतों को पानी से धोकर रात में छतों पर सोते थे, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब दिन में तो तपो ही, रात में भी सुकून नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है पेड़ों का अंधाधुंध कटना और वृक्षारोपण का न होना। बिल्कुल सही बात है। और आपकी ये बात सुनकर वारिस जी मैं एक किसी सपने में खो गई। वाकई में अगर कुछ दशकों पहले की बात की जाए तो लोग छतों पर आराम से पंखे लगा करके सोया करते थे, पूरा का पूरा परिवार, पूरा एक बहुत बड़ा सा परिवार जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सभी लोग छत पर सोया करते थे, कोई अंताक्षरी खेलता था, कोई रात में चांद को ताकता था, तारे देखता था, मौसम बहुत अच्छा सा होता था, एकदम साफ होता था। वाकई वो समय वापस लाने के लिए हम सबको एकजुट प्रयास करना होगा एक बार फिर से, ताकि जो भी जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें वजह हैं। अगर हम धीरे धीरे प्रयास करें, अपना योगदान दें, तो शायद फिर से हम वही समा वापस ला पाएं जो पहले था, जिसे हम बड़े ही प्यार से जिया करते थे। क्या कहते हैं आप? सुनते रहिए संदेश आपके गीत हमारे, इस समय सुन रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर, जो कि धड़कन लखनऊ की। और इस समय आपके साथ मैं हूँ आपकी RJ होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना।

0: योजना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: और ये देखिए घड़ी जो है ना ऐसे टिक टिक टिक टिक करते हुए कैसे भागती है। कई बार अक्सर आपने कहते सुना होगा आपस में दोस्तों को, अरे समय कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वाकई अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने गोल को लेकर चल रहे हैं ना और लगातार लगे हुए हैं अपने काम में, तो वाकई आपको समय पता नहीं चलेगा। और अगर यकीन मानिए आपको समय पता चल रहा है, कट नहीं रहा, तो फिर आप गलत ट्रैक पर हैं। ट्रैक बदलिए और अपने लक्ष्य को पहचानिए। उसी जगह पर रहिए जहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रख सकते हो। एक संदेश है मेरी तरफ से आपको था, और हमारे पास महेंद्र दीपन का एक संदेश आया है। ये क्या लिखते हैं, लिखते हैं आदरणीय आरजे रोली मैम जी, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार और रेस्पेक्ट देते हैं आरजेस को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये लिखते हैं सादर नमस्कार, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ महेंद्र दीपन, गांव रूर जिला नौगढ़ राजस्थान से। जी हाँ, आपके मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमें इतने प्यार से मैसेजेस भेजते हैं और स्पेशली इसमें कंटेंट भी डालते हैं और लिखने में अच्छा खासा समय देते हैं और कई बार आपके पोस्टर्स भी आते हैं, तो फिर आपके मैसेजेस हमारे लिए हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़ास, क्योंकि आप इतना ज़्यादा समय इतना ज़्यादा प्यार हमें भेजते हैं। ये लिखते हैं आपके प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे को सुनना बहुत अच्छा लगता है, दिन का सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है। आज मैं अपने रेडियो परिवार के लिए खास संदेश साझा करना चाहता हूँ। लिखते हैं इंसानियत का असली फर्ज सिर्फ खुद को बचाना नहीं बल्कि बेजुबानों की रक्षा करना भी है। इस तपती गर्मी में हर इंसान कम से कम एक पेड़ लगाए और एक परिंदा पक्षियों के लिए ज़रूर रखें, एक पक्षियों के लिए घर बनाएं। याद रखिए आने वाली पीढ़ियां हमें हमारे काम से याद रखेंगी, इसलिए आज ही पर्यावरण रक्षक बने और इस मुहिम का हिस्सा बने। बिल्कुल सही बात है, अगर हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए खुद ही पर्सनल लेवल पर कुछ कुछ प्रयास करने लगें और एक दूसरे को ये मैसेज स्प्रेड करने लगें, तो मेरा ख्याल है जागरूकता आना शुरू हो गई है और भी ज़्यादा हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? हमारे पास अरुण कुमार का मैसेज आया, लिखते हैं कि मैं घमोइया हरदोई से, मैम आपको प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। लिखते हैं प्लीज़ एड्रेस पूरा पढ़ दिया करिए। अच्छा चलिए मैंने तो पढ़ दिया, घमोइया हरदोई से। और ये लिखते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। थैंक यू सो मच, आप सबकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, है ना। और ये लिखते हैं कि मेरा संदेश है घरों के आसपास खाली प्लॉटों में कृपया कूड़ा ना डालें ताकि आसपास साफ़ सफाई बनी रहे। हाँ ये बात बहुत आपने बिल्कुल कहते ना कि दिल की बात कह दी है। कई बार ऐसा होता है खाली जगह देखकर लोग अपने घर के आस पड़ोस, अपना घर तो साफ कर लेते हैं और घर के आस पड़ोस को गंदा कर देते हैं, जो कि एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ये बात समझनी चाहिए कि हम, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की जगह भी हमारी ही है, हमारा देश है, हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना शहर है, और इसे साफ करना तो हमारी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो हम ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि ये जो घर है हमारा, इसी को साफ करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा जो शहर है उसे साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। गलत बात है ना, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। अब हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन अभी एक ट्रैक बिल्कुल तैयार है आप सबके लिए, जो कि मेरा ख्याल है कि प्ले कर दिया जाए और आप भी इसे इंजॉय करिए और मैं भी इसे इंजॉय करती हूँ। बीच में एक टी ब्रेक लेती हूँ, मैं आती हूँ चाय के से लेकर वापस। आप सुने ये गाना 100.7 FM रेनबो पर।

0: और ये हल्की सी भीगी हुई सुबह और ये भागती हुई सी ये सुबह, ये दोनों ही अगर पकड़ के रख ली जाए तो कितना अच्छा हो अपनी जेब में। ये ठंडा सा मौसम और आज की प्यारी सी सुबह, क्या बात है। और अभी बाहर का मौसम कैसा है ये मुझे नहीं पता फिलहाल, अभी ये कॉलर क्या कह रहे हैं ये तो मुझे पता है। हेलो हेलो,
1: दिल में अपने बसाया था पलकों पे अपनी बिठाया था, दिल में अपने बसाया था पलकों पे अपनी बिठाया था, आंसू समझकर तुम्हें गिराना था हमको, आंसू समझकर तुम्हें गिराना था हमको, तो अपनी आंखों में मुझे क्यों बसाया था, तो अपनी आंखों में मुझे क्यों बसाया था। अस्सलाम वालेकुम।
0: सलाम, कैसी हैं आप और इतना प्यारा अंदाज आपका, इतने अच्छे से आपने एंट्री ली हमारे प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इतना अच्छे से इसकी प्रिपरेशन की। आपको याद था या आपने इसको पहले याद किया ये बताइए सबसे पहले। हेलो
1: हेलो जी, आवाज नहीं आ रही थी, नेटवर्क नहीं।
0: मैं बोल रही हूँ, इतनी प्यारी लाइंस जो आपने बोली तो जी? ये आपको याद था या आपने इसकी याद किया पहले उसके बाद हमें कॉल किया?
1: नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने याद किया।
0: तो आपने देखकर पढ़ा या ऐसे ही आपको याद हो गया था?
1: नहीं, देखकर नहीं, हमने अपने आप से मतलब इधर से उधर लाइन में कुछ मिलाया हो गई शायरी।
0: हाँ, क्या बात है। देखिए हमारे रेनबो के जो लिसनर्स हैं कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। हाँ, और थैंक यू सो मच, कितनी बार कहे आपको।
1: सुना
0: जी, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, देखिए नेटवर्क एरिया में। हेलो, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हेलो, अब तो वॉइस आ भी नहीं रही है, एक बार फिर से आप कॉल हमें लगा सकती हैं। वैसे बहुत अच्छी सी बात कह रही थी कि गर्मी में अपना ध्यान रखना चाहिए और आसपास आपके जो भी पशु पक्षी हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, विशेष अगर उनका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। वो बेजुबान जानवर हैं, कुछ भी बोल नहीं पाते, सिर्फ आंखों से आंखें मिलाकर अपने इमोशंस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइए, अगर आप उनके इमोशंस को नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर वो अपने बात को आप तक कैसे पहुँचाएंगे? हम सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमारी जो पृथ्वी में जितने भी लोग हैं एक दूसरे से

कनेक्टेड हैं, पर्यावरण का हिस्सा हैं, हम सभी जीव जंतुओं के कुछ ना कुछ योगदान से ही हमारा अस्तित्व बना हुआ है। क्या कहते हैं आप, अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। तो हमारे आसपास कभी भी कोई भी ऐसा दिखता है जिसको कि ज़रूरत है हमारी मदद की, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई जीव हो, हमें ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल आप सुन रहे हैं, आपको बता दो, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और इस समय आपके साथ इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी RJ होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला।

0: जी नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: कुमार परिहार, ग्राम हसनापुर, कोट लखीमपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा ये बताइए, आप अपना फोन बहुत दूर रखकर बोल रहे हैं क्या?
1: नहीं सर, फोन लगे।
0: अच्छा तो थोड़ा सा पास लाके बोलिए अपने, थोड़ा सा अच्छे से और अपने माउथ के पास लाके बोलिए। तो बताइए आप अभी क्या कर रहे थे? रेनबो सुन रहे थे?
1: हाँ सर,
0: तो कहिए आप आज हमारे प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे में क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे सभी सुनने वालों को?
1: सभी श्रोताओं को नमस्ते सर, और सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आराम से रोड पे चले, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी ज्यादा मत चलाएं, मीडियम में चलाएं,
0: बिल्कुल स्पीड कंट्रोल रखें। हाँ
1: इधर उधर मुड़े तो इंडिकेटर जला के मुड़े, गाड़ी का लाइसेंस और हेलमेट लगा के चलें।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही है, कम शब्दों में आपने पूरी बात बता दी है, सड़क पर कैसे चलना चाहिए, है ना? थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल
1: नाम
0: किया।
1: लेना चाहते हैं, नाम
0: जी
1: लेना चाहते हैं,
0: जी
1: नाम लेना चाहते हैं तो
0: जी नाम ले लीजिए।
1: मेरे पिताजी का नाम है श्री अजयपाल सिंह परिहार हसनापुर, माता जी का नाम है श्री सूरती देवी हसनापुर।
0: जी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आपके माता पिता दोनों हमेशा खुश और स्वस्थ रहें, और आप भी। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के कॉलर हैं, जो कि अब समय आगे बढ़ता जा रहा है, शायद लास्ट कॉलर है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो

0: और मटर गश्ती यूं ही चलती रहे, खुशियां यूं ही चलती रहे, यूं ही सेलिब्रेशंस चलते रहे, भाई आपकी जिंदगी यूं ही एकदम दिन चैक चलती रहे। हम हमेशा यही विश करते हैं। और देखिए यही विश करते करते कौन आ पहुंचा है यहाँ पर। हेलो हेलो
1: हेलो मुझे लगा आप किसी लिसनर से हेलो हेलो कर
0: रही। नहीं मैं तो आपसे ही कर रही थी, मैं तो लिसनर्स को टाटा बाय कर चुकी हूँ और अब आपसे भी कहती हूँ टाटा बाय मेरे जाने का समय। लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि आप कैसी हैं।
1: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आपको मालूम है कि थोड़ा सा मौसम हम लोग पर मेहरबान हो गया, यानी धूप कम है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है चलने में।
0: सुबह से सेलिब्रेशन चल रहा है अच्छे मौसम का, और आप भी इसी तरह से अच्छे मौसम को सेलिब्रेशन करते रहिए। और आइए, बस आपका इंतजार है। भाई मैं चलती हूँ, लेकिन आप सभी जो लिसनर्स हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया, यानी जिनका नाम पढ़ दूँ, अंगद यादव ने हमें मैसेज किया, और मोहम्मद कैफ कुरैशी ने हमें मैसेज किया, मोहम्मद आसिफ ने हमें मैसेज किया, मेल भेजा, और मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी ने हमें मेल भेजा। आप सबको थैंक यू सो मच। थोड़ी थोड़ी सी समय की कमी है, आपके मैसेजेस पूरे पूरे नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आपको ये गाना डेडिकेट करते हुए जा रही हूँ। और यूं ही आज से मुस्कुराते अपनी जिंदगी एंजॉय करें। टाटा बाय।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेनो वेस्ट, गाजियाबाद, दिल्ली तक ई सिटी बसों का संचालन हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। परियोजना के तहत 510 ई सिटी बसों का संचालन होना है, लेकिन प्रथम चरण में सिर्फ 110 सिटी बस संचालित होंगे, जिसे तीनों प्राधिकरण मिलकर संचालित कराएंगे। इसके बाद 100 ई सिटी बस मुख्यमंत्री ई सिटी बस योजना के तहत 4 से 5 माह में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुबह लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लोक भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा सुशासन के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहते हुए 140 करोड़ भारतीयों के 12 वर्षों की निरंतर सेवा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में मीडिया से संवाद करेंगे। वे मोदी सरकार के अंतर्गत जन कल्याणकारी पहलों, अवसंरचना, विकास और भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दिए गए सम्मान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। पिछले 12 वर्षों के दौरान देश की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा को समान प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। सौर ऊर्जा आधारित औद्योगिक मॉडल भविष्य की आवश्यकता है, जो उद्योगों को लागत में राहत देने के साथ आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। भारत के दिग्गज निशानेबाजी कोच और पूर्व स्टार शूटर जसपाल राणा का कल देर रात नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। उनके निधन से भारतीय खेल जगत, विशेषकर निशानेबाजी समूह में शोक की लहर है। जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी के सबसे प्रभावशाली नामों में गिने जाते हैं। कोच के रूप में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया। उनके मार्गदर्शन में मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: बारह बजकर 4 मिनट 54 सेकंड 55 सेकंड और बढ़ते सेकंड करते करते 12 बजकर ठीक 5 मिनट हो गए। 100.7 FM रेनबो पर शिल्पी आ चुकी है आपके लिए प्रोग्राम स्वयं सिद्धा लेकर। फ्राइडे का दिन स्पेशल होता है और हम किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं जिनसे बातचीत की गई बातचीत आपको इंस्पायर करे या फिर आपको उनकी बातचीत सुनकर बहुत अच्छा लगे। और आप, जाहिर सी बात है कि कई बार ऐसा होता है

कि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और एक थोड़ा सा नहीं कहते हैं, थोड़ा सा कोई धक्का दे दे, तो बस वो चीज़ें होती हैं कि अगर थोड़ी सी भी किसी की बात से हम बहुत अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हाँ हम भी कर सकते हैं, तो ऐसी ही शख्सियत को लेकर आते हैं हम प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में। और आज का दिन भी बहुत ख़ास है, आप आज जानते हैं कि आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जी हाँ, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं कि इन बच्चों को बचपन में ही मजदूरी करनी पड़ती है, इनकी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है, वे सिर्फ खिलौने देखकर उन्हें दूर से देखते हैं, उनके हाथों में कुछ और होता है जो उनके हाथों में नहीं होना चाहिए, यानी बचपन से वो काम करने लगते हैं। और आज हम इस विषय में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम जिनसे आपकी बात कराएंगे प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में, उन्होंने बच्चों के लिए ही कुछ खास काम किया। वो क्या काम है वो सब हम जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो कैसे इस फील्ड में आए, लेकिन वो सबसे पहले प्रोग्राम स्वयं सिद्धा की शुरुआत एक खूबसूरत से गाने से कर देते हैं। इंजॉय कीजिए और बस इंजॉय कीजिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और भाई दोस्तों, और हमारी लेडीज जो हैं और प्रोग्राम सुन रही हैं या फिर कहीं भी हैं, काम पर हैं, तो भी मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूँगी। और वो बात ये है कि आप सुबह हड़बड़ी में अक्सर होता है सर ब्रेकफास्ट को मिस कर देती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आप ऑफिस जाती हैं तो वहाँ के कामों में फंस कर खाना भी आपका ऐसे ही वैसे रहता है। मतलब आप सिर्फ चाय पीकर या फिर कुछ ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर पूरा दिन ऐसे ही बिता देती है। तो अगर आप भी इनमें से हैं कि आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट होने की बात है, क्योंकि हम अक्सर आपसे कहते रहते हैं कि अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर रखिए और अपनी सेहत का खास ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम इसे इग्नोर करते हैं तो फिर हमारी बॉडी सिग्नल देना शुरू करती है और फिर हमें बहुत सारा समय अपने शरीर को देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा समय अपने शरीर को देते रहिए। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं, आपको 10 बार चीज़ें बताई जाती हैं, आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आप हमारे थ्रू कई सारी बातें जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई सारी बातें इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज की बात हम करते हैं, और एक्सरसाइज ऐसा होता है कि एक्सरसाइज हम में से बहुत कम लोग उसको बिल्कुल एक रूटीन की तरह फॉलो कर पाते हैं। यानी हम सोचते हैं कि चलो 4 दिन कर लिया, अच्छा आज थक गया, आज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अपने शरीर के लिए आपको समय निकाल के एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जो आजकल काम है आप कंप्यूटर्स पर बैठ के कर रहे हैं, तो फिर बैठे बैठे आपका बहुत सारा समय गुजर जाता है, जिस वजह से आपको ये एक्सरसाइज अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए ज़रूर करनी है। और बाकी आपका दिमाग फिट रहे, हेल्दी रहे और खुश महसूस करना है अपने आप को, मतलब आप अपने आप से कोई भी ऐसे नेगेटिव टॉक्स नहीं करेंगे जिससे कि आप बहुत परेशान हो जाएं। ऐसी बातें करनी है जो आपके दिमाग को अच्छे लगे और आप हंसते मुस्कुराते रहिए। कहते हैं मैं जो चेहरा होता है उस पर एक जो स्माइल होती है उससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आप करके देखिए, यानी आप स्माइल के साथ लोगों से मिलिए, स्माइल रखिए दिन भर चेहरे पर, फिर देखिए कि उस दिन का दिन आपका कैसा बीतता है। और मैं ये सिर्फ यूं ही नहीं कह रही हूँ, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ कि मुस्कुराहट जो होता है वो आपकी खूबसूरती का सबसे प्यारा गहना होता है। सो कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो।

0: जी प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में हमने आपसे कहा था कि हम बातचीत आपकी कराएंगे किसी खास शख्सियत के साथ, और हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो समय समाज के लिए समर्पित करते हैं अपना जीवन, यानी समाज में कुछ नया परिवर्तन करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो समाज के लिए हितकारी हो और लोगों के लिए हितकारी हो। और इसी जो आपको बातें बता रहे हैं उन्हीं में से एक है अनन्या जी, विज्ञान फाउंडेशन से हमारे साथ आज स्वयं सिद्धा में जुड़ी हुई हैं। अनन्या जी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में।
1: बहुत शुक्रिया
0: जी। अनन्या जी, सबसे पहले तो आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है
1: जी।
0: तो कई बच्चे होते हैं जो बचपन की उड़ान भरने से पहले ही उनको रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप काम करो क्योंकि पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, है ना? और आपने जो है वो सबसे पहले हमें बताइए कि कब आपको लगा कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि हम अक्सर चीज़ों को देखते हैं कि बिखरी हुई हैं लेकिन उन्हें समेटने की कोशिश ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने अपने आप को रोका और ऐसी समाज की बिखरी हुई चीज़ों को समेटने की कोशिश की, तो ये ख्याल कब आया आपके जहन में?
1: देखिए, मैं काफी मतलब लाड से पाली हुई एक व्यक्ति हूँ, तो मैंने वो नजरिया कभी बनाया ही नहीं था कि बच्चों को काम करना पड़ता है। मैंने तो घर के भी काम कभी नहीं किए थे
0: जी।
1: और उसी धर्रे पे चलते हुए मैंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। मैंने कॉर्पोरेट में मैं एचआर सेक्शन में काम कर

0: सकती थी।
1: जी
0: तभी लगा कि यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो हमने देखा इधर उधर कई संस्थाएं काम कर रही थी,
1: जी
0: तो हमने एक संस्था में अप्लाई किया और उन्होंने अपने काम के सिलसिले में मुझे भेजा सीतापुर जिले में।
1: जी
0: सीतापुर जिले में उनका एक स्कूल चलता था जहाँ पे वो फ्री में बच्चों को पढ़ाते थे,
1: जी
0: और फ्री में पढ़ाने के बावजूद वहां पे बच्चों की संख्या बहुत कम थी।
1: जी
0: जब हम गांव के अंदर अंदर गए और जाके उनसे बातचीत करी कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि बच्चे काम कर रहे हैं, जब अपना काम नहीं भी कर रहे तो घर के काम, मतलब घर के काम मतलब घर के अंदर के काम नहीं, घर से जुड़े जो खेती का काम है या घर से जुड़ा हुआ जो भी उनके माता पिता जिस भी तरीके का काम कर रहे होते हैं
1: जी
0: उसमें वो हाथ बता रहे हैं। और उसी ढर्रे पे वो चलते चलते खुद से इंडिपेंडेंटली भी वही काम करने लगे और शिक्षा उनकी छूट गई। तो
1: जी
0: अब प्रिविलेज समझते हो ना,
1: जी जी
0: हम जिस प्रिविलेज के साथ बड़े हुए हैं वो प्रिविलेज मुझे अपना प्रिविलेज बहुत मतलब एकदम ऐसे तरीके से दिखने लगा कि फिर अपने इस तरीके के बड़े होने का गिल्ट होने लगा।
1: जी
0: तो तब लगा कि अगर ये हो रहा है तो इस पे काम तो करना बहुत जरूरी है। और ये 2015 की बात है और आज हम 2026 में खड़े हैं, हम आज भी यही काम कर रहे हैं।
1: जी तो बेसिकली आप बच्चों को पढ़ाई के प्रति इंस्पायर करते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, क्योंकि उनकी उम्र पढ़ाई करने वाली है, ना कि काम करने वाली।
0: बिल्कुल, मेरा इस वक्त जो काम है, विज्ञान फाउंडेशन एक संस्था है जो उत्तर प्रदेश के 6-7 जिलों में काम कर रही है,
1: जी
0: और आज की डेट में मैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। और मेरा काम किशोरियों के साथ है।
1: जी जी
0: किशोरियों का काम थोड़ा सा और उलझा हुआ होता है, वो केवल बाहर के काम नहीं, वो घर के भी कामों में इतना उलझ जाते हैं कि उनको पढ़ने का समय नहीं मिलता है, और एक्चुअली उनको समय नहीं मिलता है। वो कभी अपने माँ का हाथ बटा रही होती हैं, जो माँ घरेलू कामगार हैं उनके साथ काम पे जा रही होती हैं,
1: जी
0: पिता चले गए हैं तो सारा जो काम का बोझा है वो माँ और बच्चे पे है, तो तब भी वो हाथ बटा रहे होते हैं। तो अगर वो काम कर भी रहे हैं तब भी इनकम उनके हाथ में नहीं आ रही है, लेकिन वो पूरा दिन व्यस्त है।
1: जी
0: तो उस व्यस्तता में से जब उनसे कुछ अच्छे से बात करने वाले, कुछ उनको इंसान समझ के बात करने वाले 4 लोग मिल जाते हैं, तो वो लोग
1: आपका सहयोग देना शुरू करते हैं।
0: नतीजा आपके सामने। इस वक्त लखनऊ में लगभग 1400 लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं।
1: जी, चलिए अनन्या जी, और भी आपसे बातें करेंगे क्योंकि ये सफर जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपके पसंद के खूबसूरत से गीत जानना चाहते हैं कि आप भी सुनिए और हमारे तमाम लिसनर्स भी सुने।
0: तारे जमीन पे सुन सकते हैं क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाने में जो बात कही गई है वो आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती है।
0: जी
1: चलिए एंजॉय करते हैं ये ट्रैक 100.7 FM रेनबो पर।

0: प्रकृति की बनाई हर चीज बहुत खूबसूरत होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या प्रकृति में रहने वाली कोई भी चीज। अनन्या जी जुड़ी हुई हैं एक ऐसे काम से जो उनके लिए शुरुआत में बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस काम को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बहुत आसान बना दिया। अनन्या जी, हेलो
1: जी,
0: अनन्या जी, ये काम वाकई में इतना आसान नहीं था कि बच्चियों को प्रेरित करना शिक्षा के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो लोगों को लगता है कि अरे हमारे तो पैसे आने बंद हो जाएंगे, हम कैसे क्या करेंगे और पढ़ लिख कर हमें क्या करना। ऐसे में उनको इंस्पायर करना, उनको प्रेरित करना बहुत बड़ा टास्क था, तो इस चीज़ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे आप, कौन सी चीज़ थी जिसने आपको कहा कि नहीं हमें तो करना ही है बच्चों को इस क्षेत्र में, क्या चीज़ थी ऐसी?
1: बराबर है, हम जब बच्चों की बात करें तो हर बच्चा बराबर है और बस उसको एक मौके की तलाश है।
0: जी,
1: हमारी संस्था विज्ञान फाउंडेशन इस वक्त आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 4,000-5,000 बच्चों के साथ काम कर रही है।
0: जी,
1: और हमारी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि उनको शिक्षा से जोड़े, क्योंकि जैसे ही वो शिक्षा से छूटते हैं वो काम पे लग जाते हैं। और घरों की स्थिति ऐसी है जहाँ पे हम जिन समुदायों में देख रहे हैं वहाँ पे छोटे 8-9 साल के लड़के भी जो है वो काम सीखने चले जाते हैं, तो भले वो ज्यादा कमा नहीं रहे लेकिन वो आगे चल के कमा सके उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो मतलब हमको ये दिखता है कि उनके हाथ से कौन से मौके छूट जा रहे हैं जब वो इस तरह के कामों में, कोई पंचर बनाना सीख रहा है, कोई लकड़ी का काम सीख रहा है, कोई यहाँ लखनऊ में चिकनकारी का काम सीख रहा है, छपाई का काम सीख रहा है। तो मतलब मोटिवेशन उनका पढ़ाई की तरफ है ही नहीं,
0: जी,
1: तो उनको वो मौके दिखाने पड़ते हैं। और जब अगर पढ़ाई में एक बार मजा आ गया तो फिर वो, मतलब हम उनसे ये नहीं कह सकते कि तुम अपनी आमदनी छोड़ दो, क्योंकि घर चलता है उससे,
0: बिल्कुल
1: सबसे
0: बिल्कुल,
1: पहले तो पेट में खाना होना जरूरी
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल
1: लेकिन हाँ, अगर अगर उनको उस चीज में एक बार मजा आ गया तो फिर वो उसमें से भी समय निकाल के पढ़ाई
0: बिल्कुल
1: करने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल, रास्ते
1: ये तो
0: आपको
1: मैं अपने
0: निकालने
1: अनुभव
0: पड़ते
1: से।
0: हैं, दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगी तो आप रास्ते उसके लिए निकाल ही लेते हैं। क्या
1: बिल्कुल
0: इनके
1: वही बात
0: क्लासेस वगैरह आप शाम को कराते हैं?
1: है। हमारे क्लासेस जैसे अलग अलग समुदाय में अलग अलग समय पे क्लासेस
0: जी
1: चलती
0: जी
1: हैं
0: जी
1: जब ये लोग उपलब्ध हो पाते हैं,
0: जी
1: तो हमने अपने टीचर्स को भी उसी तरीके से एंगेज किया है कि जहाँ पे दोपहर में क्लास हो सके वो वहाँ पे दोपहर में क्लास ले, जहाँ पे शाम को हो सके वहाँ पे शाम मिले, या जो घर घरेलू कामगार हैं वो जैसे 11 बजे लौट के आती हैं घर, तो
0: जी
1: उनकी
0: जी
1: 12 बजे से 2-2.5 बजे तक क्लासेस होती हैं। तो हमको केटर करना पड़ा है, वो जिस समय जो उपलब्ध होता है उस समुदाय के हिसाब से हमको वहाँ
0: हेलो, हाँ अनन्या जी,
1: बस
0: हाँ
1: जॉइन
0: जी
1: करना
0: जी जी
1: पड़ेगा, क्योंकि मौका अगर देना है तो फिर देना ही है।
0: बिल्कुल देना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम आज आप कर रही हैं, आपकी संस्था कर रही है और तमाम लोग इस कार्यों से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी सेट होंगे जिनको आप, उनको आप बता सकते हैं कि भाई देखिए उसने अपनी पढ़ाई करी और आज इस मुकाम पे पहुंचा है, इस तरह के एग्जांपल्स भी आप, क्या हुए हैं कुछ ऐसे पढ़ाने से बच्चों
1: जी
0: को कुछ
1: बिल्कुल,
0: है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ हुए हैं। हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी हुई थी, वो राजाजीपुरम साइड की बच्ची थी,
0: जी
1: लखनऊ की राजाजीपुरम साइड की बच्ची थी। वो दूसरों के घरों में खाना बनाने जाती थी, और फिर आज की डेट में वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, उसके फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और होपफुली वो ग्रेजुएट होके, उसने दिल्ली में एक नौकरी ज्वाइन करी है जो इस शर्त पे है कि उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। तो उनकी ग्रेजुएशन पूरा जब वो कंप्लीट कर लेंगी तो फिर वो दिल्ली के जॉब को अपने कंटिन्यू करेंगी।
0: जी

0: जी, बहुत बहुत
1: एग्जाम्स
0: बड़ा, बहुत बड़ा ये सहयोग होता है उन लोगों को जो अपने हाथों में कलम थामना चाहते हैं, लेकिन उनकी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं होता है। और आप ऐसे लोग की उंगली पकड़कर उन्हें आगे बढ़ा रही हैं, उन्हें रोशनी दिखा रही हैं, वो भी सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की रोशनी आप दे रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे कार्य करते रहें, लोगों के जीवन में रोशनी बिखेरती रहें। हमसे बात करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जो तो भाई ये अनन्या जी थी विज्ञान फाउंडेशन से, जो बच्चों के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं, उनको शिक्षा की रोशनी प्रदान कर रही हैं ताकि वो शिक्षित होकर समाज के लिए कुछ कर सके। और अनन्या जी से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक और गाना हमसे बताया था, और वो गाना भी हम प्ले कर देते हैं। एंजॉय कीजिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम स्वयं सिद्धा, आज शिल्पी के साथ।

0: कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

बहुत प्यारी सी बातचीत, क्योंकि आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, तो बच्चे ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को बचपन की उड़ान दे दो, मजदूरी लोग को उनके चेहरे पर मुस्कान दे दो। ये तो बातें सब हो गई, और अब एक बात आपके घर पे रहने वाले बच्चों की, जिनकी आजकल गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, और जब ये गर्मी की छुट्टियां चलती हैं तो बच्चे या तो घूमे फिरे और या फिर वो क्या करते हैं ना, पूरा समय उनका कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स पर बीतता है, और वो किसी ना किसी बहाने से आपकी ये जो डिवाइस है उसको अपने पास रख लेते हैं, और आप भी सोचती हैं ठीक है भैया क्या करें, जाने दो। लेकिन अगर आपका भी ऐसा एटीट्यूड है तो प्लीज़ इसे बदलिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेरे टेंशन ख़त्म हो, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि इन सबको अगर आप दे रही हैं तो आगे आने वाली टेंशन आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। एंड बच्चा पार्टी, प्लीज़ अगर आप भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक डिसिप्लिन जो होता है किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं तो अगर आपका रूटीन डिस्टर्ब होता है तो भाई कुछ एक आध दिन आप इसमें थोड़ा सा कर सकते हैं, यानी एक आध दिन तो एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भाई कायदे से आपको छुट्टियों में एक रूटीन होना चाहिए। सुबह उठिए, सुबह की ठंडी हवा का आनंद लीजिए, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में होता है कि आप फटाफट स्कूल के लिए निकल जाते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन आज के जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा, सुबह आप खेल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी को एक नया आयाम दे सकते हैं, जिसमें अक्सर आपसे पेरेंट कहते हैं भाई जल्दी उठ के आप ये सब करिए, लेकिन आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें करना अपनी मर्जी की है। तो जब अगर ये आपके अंदर फीलिंग है तो इसको आपको चेंज करना, ठीक है। और पेरेंट्स भी खास ध्यान दें, थोड़े से इंडोर गेम्स जो है बच्चों के साथ आप भी खेलें जिससे उनका मन लगे, क्योंकि भाई किसी न किसी चीज़ में तो उनका मन लगना ज़रूरी है। बच्चे हैं, वो आपकी तरह थक के सो नहीं सकते, उनमें तो भरपूर ऊर्जा होती है, तो इस भरपूर ऊर्जा का अच्छी जगह इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल 12:39 हो गए, स्वयं सिद्धा प्रोग्राम आप इंजॉय करें 100.7 FM रेनबो पर। एक खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए, एंजॉय कीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
4: विरासत और स्वस्थ मनोरंजन की अनूठी पहचान, आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे तथा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अपना ध्येय पूरा करती रहे, इसी आशा के साथ मैं SR बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी के परिवार तथा असंख्य श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:48 हो गए हैं, ढेर सारी बातें हैं आपसे करने को, और आप भी अपने ख्याल रख रही हैं कि नहीं पहले बताइए। मैं तो हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छा भाई, ये जो आप सुबह से उठकर काम में लग जाती हैं, इस दौरान भागते दौड़ते आपको कभी स्ट्रेस फील हो तो आपको बस एक काम करना है, और वो क्या काम है कि ये जो बच्चे नन्हे शैतान घर पर आजकल बैठे हैं, इनके साथ थोड़ा समय आपको स्पेंड करना है। वर्किंग लेडीज़ के लिए अक्सर दिक्कत हो जाती है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे संडे आपके पास है, सैटरडे संडे इन लोगों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना लीजिए, घूमिए फिरिए, इन लोगों को भी ऐसी चीज़ें दिखाइए जो आप भी साथ में घूम लेंगे, और सबसे बड़ी बात है ये जो बच्चे हैं इनको भी इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आएगा। तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा समय जो आपका डेली रूटीन होता है उससे हट कर आप अगर निकालेंगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, यानी कि जब आप अच्छा फील करते हैं तो आपकी शरीर भी उसी तरह अच्छा अंदर से फील करता है। तो बस कुछ चीज़ों का मैनेजमेंट ज़रूरी है, और फिर देखिए कैसे आप ना ना करते करते इन बच्चों से प्यार कर बैठेंगी। प्यार बहुत करते लेकिन गुस्सा बहुत आता जब आपका ये कहना नहीं सुनते, लेकिन ये भी क्या करें। तो भाई इन गर्मी की छुट्टियों में इनके साथ आप थोड़ा समय, जितना भी समय आप निकाल सकती हैं उनके साथ स्पेंड कीजिए, यकीन जानिए आप भी बहुत बेटर फील करेंगी।

जी तो इतनी सारी बातें करने के बाद अब आपको बता दें कि 12:56 हो गए, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। तो बस आपसे लेती हूँ इजाजत इस प्रोग्राम से, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम यानी होठों पे तेरी बात में एक बार फिर मेरा आपका होगा साथ।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में संयुक्त रूप से जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश के 4,00,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। ये परिवर्तन 9 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा।

मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा को समान प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। सौर ऊर्जा आधारित औद्योगिक मॉडल भविष्य की आवश्यकता है, जो उद्योगों को लागत में राहत देने के साथ आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस पहल के तहत हवाई अड्डे से सीधे उत्तर भारत के प्रमुख शहरों के लिए अंतर शहरी बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये भारत में किसी हवाई अड्डे और बस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के बीच अपनी तरह का पहला समझौता माना जा रहा है। इस साझेदारी का उद्देश्य यात्रियों को हवाई यात्रा के साथ साथ सड़क परिवहन की भी सहज और पारदर्शी सुविधा प्रदान करना है। नई व्यवस्था के तहत आगरा, मथुरा, लखनऊ, देहरादून और चंडीगढ़ सहित 20 से अधिक शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। पीलीभीत जिले में गन्ने की मिठास के साथ अब खेतों में गेंदे की खुशबू और रंगत भी देखने को मिल रही है। इससे किसानों का लाभ हो रहा है और वे समृद्धि की नई कहानी लिख रहे हैं। जिले में काफी किसानों ने मिलवा खेती के रूप में गन्ने के खेतों में गेंदा लगाया है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने खेत पर पहुंचकर किसानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इससे किसानों की आमदनी में निरंतर वृद्धि हो रही है। केंद्रीय मौसम विभाग के विस्तृत अपडेट के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 जून तक आंधी पानी का मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली और मुरादाबाद समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: हंड्रेड और सेवन एफ एम रेनबो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करने के लिए हाजिर हो चुकी है आपकी अपनी दोस्त शिल्पी। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेल, होठों पे तेरी बात प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम कोई ना कोई टॉपिक आपसे देते हैं और आपसे बातें करते हैं, और सबसे पहले आपके पास एक खूबसूरत सा गाना आता है और उसके बाद आप इलाकाई खबरें सुनते हैं और उसके बाद होठों पे तेरी बात का सफर रहता है जारी। तो आज भी भाई हमने सोचा आपसे क्या बात की जाए। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई हम आपसे क्या बात करें और किस तरह की बात करें जो आपको मज़ा भी आए और आप अपने विचार भी हमसे साझा करें। तो भाई आज हमने आप सबके लिए एक चीज़ बताई है जो आपके दिल के बेहद करीब है, वो चीज़ जो आपको सबसे प्यारी है, वो चीज़ जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो है आपका प्यारा मोबाइल। तो आपको बताना है कि अगर एक दिन आप बिना मोबाइल के हों तो वो दिन आपका कैसा होगा। आपको दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन सोचना है सिर्फ आपको कि वो एक दिन बिना मोबाइल का कैसा होगा। और ये आपको हमें बताना है कहाँ, आप जानते हैं, आपको हमारा ईमेल आईडी पता है, फिर भी हम बता देते हैं, fmakashwanilakhnow@gmail.com पर हमें बताइए और हम भी आपकी मज़ेदार बातें अपने जो लिसनर्स हैं उन तक शेयर करेंगे। तो फिलहाल इन्जॉय कीजिए खूबसूरत सा ट्रैक और हम आपसे मुलाकात करेंगे इलाकाई खबरों के बाद।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत पहली बार 28 रियासतों और 5 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुंतज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहड़ी ने कहा कि नीति आयोग ने मीटिंग के दौरान वज़राए आला के दूरंदेश तबसरों और उनकी रियासतों में किए गए कामों से फ़ायदा उठाया।

0: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
1: विश्वास और संस्कृति की अनमोल धरोहर आकाशवाणी।
2: अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ के प्रथम समाचार वाचक।
3: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के लिए यज्ञदेव पंडित की हार्दिक बधाई।
4: इलाकाई खबरों के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 9.7 FM रेनबो पर। जी तो आज भाई प्रोग्राम होठ पे तेरी बात में हमने आपसे कहा कि मोबाइल के बिना एक दिन कैसा हो सकता है आपका, इमेजिन करके हमें आपको बताना है और हमारे पास मेल करना है। तो भाई मेल हमारे पास आए हैं और पहला मेल हम जिनका पढ़ने जा रहे हैं वो है विकास संडीला से। विकास बहुत ही प्यारी बात लिख रहे हैं कि बिल्कुल मैं ईमानदारी से और सच्ची बात कहूँगा कि बिना मोबाइल के मैं अपने दिन की और अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। हाँ, पूरे दिन में जो मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ वो थोड़ा उसकी अवधि कम कर सकता हूँ, यानी टाइम लिमिट जो है वो कम कर सकता हूँ कि मैं जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं वो कुछ कम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहिए कि भाई मैं छोड़ दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है, और ऐसा होना मुझे लगता है शायद किसी के साथ भी मुमकिन नहीं है। तो विकास जी ऐसा तो ना कहिए, हो सकता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, मतलब बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जी तो भाई अब हमारे पास सोनू जी का मेल आ गया और ये लिख रहे हैं हमें गाना सुना दीजिए। तो भाई अभी मैं बताऊं कि प्रोग्राम चला होठो पे तेरी बात, और अभी इस गाने के प्रोग्राम का टाइम आपका नहीं हुआ है, वो हॉट मेल होगा, वो 2 बजे से आप सुनेंगे होठो पे तेरी बात। इस प्रोग्राम का आज का टॉपिक, एक दिन आपके पास मोबाइल नहीं हुआ तो आपको कैसा लगता है, हमारे पास एक दिन क्या 10 मिनट भी मोबाइल रहा तो हमको कुछ तो गुम हो गया ऐसा मालूम होता है। वैसे हम अपने आकाशवाणी के प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते, हम 5 मिनट भी मोबाइल अपने पास से दूर नहीं कर सकते, ऐसा लिखने वाले हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित प्रथमेश, सर्वत प्रणाली सानवी, कल्पना जी ग्राम पंचायत काला गांव और जाफराबाद मराठवाड़ा से आपने हमें मेल किया। गुलफ्शा सिद्दीकी आ गई, गुड आफ्टरनून मैम। सो गुलफ्शा लिख रही संडीला से, मैम मोबाइल की अगर एक दिन मोबाइल के बगैर रहना पड़े तो फिर FM से कैसे जुड़ूंगी, कॉल या फिर मैसेज कैसे करूंगी, और तो सब ठीक रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस FM पर एक दिन बात नहीं कर पाऊंगी। गुलफ्शा जी ये आपका प्यार है हमारे लिए। वैसे मैं तो कह रही थी आप इमेजिन करके देखिए और बताइए, मतलब एक इमेजिनेशन होती है ना हर इंसान की, अगर ये चीज़ मेरे पास ना हो तो कैसा हो, लेकिन चलिए हर इंसान अपने विचार रख सकता है। जैसे कि ये हमारे पास मेल आया महेंद्र देपन का, राजस्थान के नागौर ज़िले के रोड़ गाँव से, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि न्यूज़ ऑन AIR ऐप के थ्रू हमसे लोग इतनी दूर से जुड़े हैं और अपना प्यार हमसे यूं ही बरकरार रखिएगा, इस बात को हम यहाँ पर ज़रूर बताएंगे। और लिखा है आपने कि विषय बहुत ही चुनौतीपूर्ण लेकिन मज़ेदार है। तो भाई सच कहूँ तो मेरे लिए कल्पना करना बेहद मुश्किल है, मोबाइल का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन प्रोग्राम FM रेनबो मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया और इसके बिना दिन काटने का ख्याल भी डरावना लगता है। जैसे ही कोई अच्छा टॉपिक मिलता हाथ खुद ब खुद मोबाइल की ओर बढ़ जाता है ताकि आप तक बात पहुंचा सकूं। अगर एक भी दिन ये नहीं रहा तो मैं आप लोगों से जुड़ने और रेडियो पर पसंदीदा धुनें सुनने से वंचित रह जाऊंगा, जो मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं होगा। तो भाई अब हम क्या कहें, लोगों की बातें हम सुन रहे हैं और हमें बहुत एंटरटेनिंग लग रही, बहुत अच्छी लग रही हैं। बस हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये तो ठीक है कि आप हमसे नहीं जुड़ पाएंगे एक दिन, लेकिन ज़रा सा एक इमेजिनेशन होती है, आप इमेजिन करके बताइए कि अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है। मतलब ये तो आप गाने सुन रहे हैं या प्रोग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अक्सर होता है कि आप लेटे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका हाथ कुछ ढूंढ रहा होता है कि आप मेरे पास है ना यानी मैंने जो आपसे शुरू में जिक्र किया कि भाई कोई चीज़ है जो आपके बेहद दिल के करीब है, आप उसे अपने पास हमेशा रखते हैं और वो ऐसी डिवाइस है जिससे आप डिस्कनेक्ट नहीं रह सकते। तो अगर आपको डिस्कनेक्ट होना पड़े तो आप क्या करेंगे। फिलहाल अभी तो हम आपसे डिस्कनेक्ट नहीं, हम आपसे कंटिन्यूसली जुड़े 100.7 FM रेनबो पर, और एक बढ़िया सा गाना प्ले करने जा रहे हैं आपके लिए, एंजॉय कीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी तो भाई, हमने आपसे पूछा था होठों पे तेरी बात में कि भाई मोबाइल के बगैर आपके कैसा दिन होगा, एक दिन अगर सोचिए मोबाइल आपके हाथ में ना हो। तो भाई हमारे पास ये मेल किसका आया है, गणेश आय नमा, होठों पे तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले लिखा है नमस्कार। तो भाई आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार। और हमारे जो आज का टॉपिक, उस पर आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम मोबाइल के बिना रह सकते हैं लेकिन रेडियो के बिना नहीं रह सकते। तो ये जो मोबाइल रिचार्ज सिर्फ रेडियो की वजह से कराते हैं, नहीं तो हम कैसे सुनेंगे ये प्रसारण आपका। तो भाई आप रेडियो भी ले सकते हैं और रेडियो उस पर भी इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अहमद नवाब जी ने लिख दी कि इनका आज गिफ्ट आया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दो गिफ्ट, और पहला गिफ्ट जो आप आए, आहा शुक्रिया, और दूसरा गिफ्ट मेरा नया रेडियो है, उसके लिए आपको भाई कंग्रेचुलेशंस कि आज आपका नया रेडियो आया है। आप लिख रही हैं, आती हूँ टॉपिक पर, अगर एक दिन मोबाइल ना हो तो बस सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी, ईमेल कैसे करूँगे, और अगर ईमेल नहीं करना है तो मोबाइल हो या ना हो। वैसे भी कह रही है मेरा मोबाइल इधर उधर पड़ा रहता है और मैं रेडियो पर FM रेनबो लखनऊ सुनती हूँ, तो रेडियो पर ये सुनती हैं। और लिखती हैं अगर नहीं होगा तो मेहंदी लगाऊंगी, कोई ऑर्डर है तो वो लगा लूंगी, बढ़िया रेडियो पे सुनते हुए मैं पूरा मजा लूंगी। इसके अलावा हमारे पास किसका मिला है, पिंकू सोनी जी का आ गया, टिकैत नगर बाराबंकी से। कैसी हैं पिंकू, आई होप आप बहुत अच्छी होंगी। लिखा है सबसे ज़्यादा आजकल लोग मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट रहते हैं पर सबसे ज़्यादा रेडियो सुनने के लिए बार बार देखते हैं हम कि मोबाइल इम्पॉर्टेंट लगने लगा है। अब मैं कुछ रेडियो दोस्तों से भी जुड़ी हुई हूँ तो इसलिए मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगता है। सबकी बात अलग अलग है और दिल की बातें लोग हमसे शेयर कर रहे हैं, ये ख़ास बात है। अहमद नवाब, आज आपका नया रेडियो आया है। और रोशनी रावत जी का मेल आ गया है, वाह वाह क्या बात है, बहुत प्यारा सा उन्होंने एक फ़ोटो बना के भेजी है, इमेजिन करी है, और उसके बाद लिखा है स्मार्टफोन छूटे तो क्या, हमारे पास कंप्यूटर का संसार है और हमें FM रेनबो से बहुत प्यार है। उन्नाव की रोशनी अब चंडीगढ़ में बिखेर रही है अपनी चमक, बिना फ़ोन के भी रेडियो पर गूंजेगी उनकी खनक, अरे वाह। और ये गांव बमना, तहसील सफेपुर, ज़िला उन्नाव से, और चंडीगढ़ से ये सुन रही है, लिख रही हैं कि खास संदेश ये है कि एक दिन के लिए मेरा फ़ोन ले लीजिए, मैं बिना फ़ोन रह लूँगी क्योंकि मेरे कंप्यूटर में सब कुछ है। मतलब डिवाइसेस जो है उनसे आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, ऐसा शायद वो कहना चाहती हैं। आप सब हमें मेल कर रहे हैं उसका दिल से शुक्रिया। और अब आपसे मैं एक बात और कहूँगी कि भाई अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं और लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं इमेजिन करके कि भाई एक दिन बिना मोबाइल के उनका कैसा होगा, तो आप हमें बता सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। और फिलहाल हम एक बढ़िया सा गाना प्ले कर देना, बहुत अच्छा गाना है एंड रियली आपके दिल में उतरने वाला सॉन्ग है, मुझे तो बहुत पसंद है। और एंजॉय कीजिए 100.7 FM रेनबो पर। उसके बाद आपके और मेल्स हम लेंगे, हमें लगातार मेल्स मिल रहे हैं जिसके लिए आपका दिल से शुक्रिया।

जी भाई, तो हमारे पास इस समय मेल जो है वो नीलू शर्मा जी का रूपपुर चंदेला से आ गया है, और इन्होंने टाइपिंग एरर हो गई थोड़ी, तो शिल्पी मैम को उन्होंने शिल्पी मामू लिख दिया। तो भाई चलिए, नमस्कार, मैं आपका स्वीकार कर रही हूँ, और लिखा है इसी हफ्ते

मैम, मेरे गांव में 4 दिन लाइट नहीं आई और मेरा फोन स्विच ऑफ था एक दिन. क्या मैं हर दिन बिना मोबाइल के रह सकती हूँ? क्योंकि मुझे मोबाइल का शौक नहीं है. और जहाँ तक बात रेडियो सुनने की है, तो भाई रेडियो मेरे पास हर वक्त होना चाहिए. और ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है. एम के राज जी, यानी मुनेश कुमार राज, ग्राम भानपुर हरावा, जिला लखीमपुर खीरी से शुभ दोपहरिया लिख रहे हैं. तो भाई आपको भी शुभ दोपहरिया लिख रहे हैं. हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, वाह वाह क्या बात है. और आगे लिखते हैं शिल्पी मैम जी, कोई टेंशन नहीं, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होगा तो हम रेडियो लाएंगे, ट्यूनिंग करेंगे और चिट्ठियों के जरिए आप तक पहुंचेंगे. और आगे बहुत प्यारा सी चीज़ लिखी, बहुत प्यारी सी बात लिखी, आपका पक्का श्रोता मुनेश कुमार राज, थैंक यू सो मच. रामेश्वर जी लिख रहे हैं, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को सप्रेम नमस्कार, प्रोग्राम आपका बराबर सुन रहे हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम मोबाइल बिन रह ना सकेंगे. क्या हमारा मोबाइल है, मेरा टाइम पास होता है और हम आपको मेल कैसे करेंगे. और ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से लिख रहे हैं और समस्त कठेरिया परिवार है जिसमें नाम लेना बहुत ज़रूरी है. रामेश्वर जी, उमा कांति, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू कठेरिया और सारा कठेरिया परिवार. अब देखिए, ओके, विनीत कुमार जी का मेल आया, विनीत कुमार जी का मेल आया, अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से. और देखा, होठों पे तेरे बात प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली बहन को गुड आफ्टरनून. आज का मौसम सुरीला मीठा अनुकूल है. मोबाइल के बिना अब आदमी का कोई काम नहीं होता, सब चीज़ मोबाइल पर डिपेंड है, तो इसके बिना वो इसकी कल्पना नहीं कर सकते. यानी हम डिवाइसेस के बहुत गुलाम हो चुके हैं, ऐसे आप सबकी बातों से. लिखा है प्रकाश पांडे जी का मेल आया है और लिखा है बहुत अच्छा टॉपिक है और लिख रहे हैं कि अगर मैं एक दिन नहीं यूज़ करी तो वो दिन डेडिकेटेड हुआ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, ज़बरदस्त इंजॉय करता हूँ और ये हम लोग हमेशा करते रहते हैं. वी इन्जॉय योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच. और आपने बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम जब इससे डिसकनेक्ट होते हैं तो अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों से अलग होते हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं. यानी हम आपसे रोज़ अलग होने को कहीं नहीं रहे, हम तो आपसे कह रहे हैं सिर्फ एक दिन अगर ना हो तो बताइए. तो बातें अभी और होती रहेंगी, लेकिन और भी गाने हमने क्यों कर रखे हैं जो आपके लिए प्ले कर रहे हैं. फिलहाल जावेद अख्तर जी, आपका मेल हम पढ़ेंगे लेकिन इस ट्रैक के बाद. एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो पर. प्रोग्राम कौन सा है? होठों पे तेरी बात शिल्पी के साथ.

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: दरगन लखनऊ के 100.7 एफएम रेनबो शिल पे आपके साथ है, प्रोग्राम चल रहा होटल पे तेरी बात. और आज टॉपिक ये था कि भाई एक दिन बिना मोबाइल के कोई रह नहीं पा रहा है. मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे मेल्स कह रहे हैं. अब देखिए हमारे पास इस समय किसका मेल आ गया, मैं पढ़ती हूँ. और ये मेल हमारे पास आया सुल्तान रजा साहब का. अस्सलाम वालेकुम, लिख रहे हैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से. और सुल्तान रजा जीशान रजा अफजाल रजा इकबाल रजा सादिक रजा, मैम हम मोबाइल के बिना तो रह लेते हैं लेकिन 100.7 एफएम रेनबो तो हमारे दिल अजीब से लगता है अगर मैं ना सुनूं तो. क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता पर रहा नहीं जाता. इस कदर मोहब्बत हो गई एफएम रेनबो से किसके बिना नहीं रहा जाता. अरे जी मैं कब कह रही हूँ किसके बगैर रहिए, इससे ज़रूर जुड़े रहिए और अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए. इसके बाद हमारे पास मेल आया जितेंद्र नामदेव जी का. और बबलू अंजू खनक आरूही नामदेव सौम्या नामदेव इनका शहडोल मध्य प्रदेश से आया, लिखा है प्रोग्राम में टॉपिक बहुत अच्छा है, मोबाइल के बगैर तो हम रह सकते हैं लेकिन मेरी टेलरिंग शॉप है तो कस्टमर मुझे परेशान करते हैं और दूर दूर से कस्टमर जुड़े हुए हैं इसलिए मोबाइल रखना ज़रूरी है. ये आपने मुद्दे की बात बताई कि बगैर नहीं होगा तो काम धंधा थोड़ा बंद होने की उम्मीद है, यानी कि लोगों को कॉन्टैक्ट चाहिए. तो हम आपसे एक बात कहें, है ना जितेंद्र जी, कोशिश कीजिए कह दीजिए कि जैसे आपके हर दिन तो शॉप खुली नहीं रहती होगी ना, एक दिन बंद रहती होगी तो उस दिन आप ये

कह सकते हैं कि भाई आज मोबाइल बंद एंड शॉप बंद, दोनों चीज़ों को आप बंद कर दीजिए और अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए. करके देखिएगा, बताइएगा फिर. ये तो मैं आपको बता रही हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा. सतीश अनेजा जी का मेल आ गया है और लिखा है, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन. रेनबो लखनऊ से बेशुमार मोहब्बत है. और लिखा है, मैं अधिकांश समय पहाड़ों में रहता हूँ. मोबाइल पे ऐप के जरिए रेनबो को हम सफ़र बना रखा है, जो सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है. और आवाज़ के ज़रिए ये मिली मोहब्बत बहुत मजबूत है और बरकरार रहेगी. जी बिल्कुल बरकरार रहेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो धागा, यानी ये जो हमारा जो कनेक्शन है, वो कभी नहीं टूटेगा. अरुण कुमार कुशवाहा जी हरदोई से, घमोइया हरदोई से लिख रहे हैं, प्यार भरा नमस्कार. मैम आप एक दिन की बात कर रही हैं? अरे मोबाइल एक घंटे के लिए दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है इस दुनिया से हम बिल्कुल अलग अलग हो गए, क्योंकि सारे प्रोग्राम सुनते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें मोबाइल के थ्रू कनेक्ट रखती हैं, तो इसलिए मुझे तो एक घंटे क्या एक मिनट के लिए भी मोबाइल से दूर ये नहीं रह सकते हम. और साथ ही भाई अमन नवाब जी का मेल फिर क्या आ गया है. और

जरिए रेनबो को हम सफर बना रखा है, जो सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है, और आवाज़ के ज़रिए ये मिली मोहब्बत बहुत मजबूत है और बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल बरकरार रहेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो धागा यानी ये जो हमारा जो कनेक्शन है वो कभी नहीं टूटेगा। अरुण कुमार कुशवाहा जी हरदोई से, घमोइया हरदोई से लिख रहे हैं, प्यार भरा नमस्कार। मैम आप एक दिन की बात कर रही हैं, अरे मोबाइल एक घंटे के लिए दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है इस दुनिया से हम बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि सारे प्रोग्राम सुनते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें मोबाइल के थ्रू कनेक्ट रखती हैं, तो इसलिए मुझे तो एक घंटे क्या एक मिनट के लिए भी मोबाइल से दूर ये नहीं रह सकते हम। और साथ ही भाई अमन नवाब जी का मेल फिर क्या आ गया है, और ओ हो इन्होंने अपने मोबाइल अपना जो रेडियो ख़रीदा है, बहुत प्यारा सा रेडियो है, उसकी फ़ोटो भेजी है और साथ ही मिठाई भी भेजी है कि आप बिल्कुल इसका स्वादन मतलब आप इसका स्वाद ले लीजिए। भाई बहुत बहुत बधाई हो। और साथ ही हमारे पास एक और बहुत अच्छा मेल आया, और ये मेल आया है हमारे पास निहाल वर्मा का। निहाल वर्मा ने हमें मेल किया है चिन्हट से, लिख रहे हैं ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर हम चाहें किसी भी डिवाइस से डिसकनेक्ट होना एक दिन के लिए तो रह सकते हैं, सिर्फ अपने ऊपर है। यानी हम बहाने कई सारे बना लेते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें तो उससे डिसकनेक्ट होकर अपनी लाइफ को न्यू बिता सकते हैं जैसे पहले रहा करते थे। तो अगर आप चाहते हैं तो एक दिन इसे छोड़ सकते हैं, यानी एक दिन इस डिवाइस को त्याग सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रकाश पांडे लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी कभी सिर्फ अपने मोबाइल डेटा को बंद करें पर और सिर्फ फिर स्क्रॉलिंग की दुनिया से निकलकर अपने रिलेशनशिप को स्क्रॉल करिए, मज़ा आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात प्रकाश जी, आपने कहाँ से मेल किया ये भी लिखते तो अच्छा लगता, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इतनी सारी बातें सुन के हमें क्या कहना है, हमें कुछ कहना है लेकिन हम नहीं कहेंगे, एक गाना है आपके लिए हमने क्यों कर रखा है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए।

और चलते चलते देखिए हमारे पास मेल है जावेद अख्तर साहब का, और लिख रहे हैं कि भाई होठों पे तेरी बात प्रोग्राम में जो आज आपका टॉपिक पे इसके बारे में लिख रहे हैं कि अगर एक दिन कोई मोबाइल ले लेगा तो हम नहीं रह पाएंगे क्योंकि एफएम रेनबो के सभी कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुनते हैं, मैसेज भी करते हैं क्योंकि रेडियो मेरे लिए सच्चा जीवन साथी है। रश्मि नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें मेल किया है। और भाई ये बात तो ठीक है कि आप इससे जुड़ते हैं और सब चीज़ें हैं, लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि भाई चलिए आपने रेडियो पे गाना बजा दिया और आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप अगर कुछ समय के लिए, ऐसा होता है केवल रेडियो नहीं सुनते होंगे और बहुत सारे काम होते होंगे बीच बीच में और कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ आप रेडियो सुनने के लिए करते हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी एक आदत बन गई, हमारी लत बन गई है, और ऐसा हम सभी कर रहे हैं। और हम कभी कभी लगता भी है कि हम शायद ये चीज़ें ना करें लेकिन इनसे हम निकल नहीं पाते। तो भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करें, और डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए थोड़ा सा समय अपनी और अपनी फैमिली के ज़रूर निकालें। फिलहाल 1:55 हो गया, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। इजाज़त दीजिए शिल्पी को प्रोग्राम होटो पे तेरी बात से, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपका बेहद फेवरेट है, जी प्रोग्राम हॉटमेल, जिसमें आप अपनी पसंद के गाने हमें लिख कर भेजते हैं और हम आपकी पसंद के गाने प्ले करते हैं। तो बस उन गानों को सुनने के लिए और मेल करने के लिए हो जाइए रेडी। बस कुछ ही पलों में आते हैं हॉटमेल के साथ एक बार फिर से। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार। दोपहर के 2 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित हो रही प्रदर्शनी में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत तथा विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। राष्ट्रीय प्रशिक्षण परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाले रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर

चार कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों ने, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए सुधार किया गया है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजी के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने में मदद की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जसपाल राणा के निधन पर शोक जताया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: दो बजकर 3 मिनट का वक्त, एक बार फिर शिल्पी हाजिर हो चुकी है आपके लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर, जो है हॉट मेल। एंड हॉट मेल में आप जानते हैं कि आपको क्या करना होता है, आप जानते हैं क्योंकि इतने सारे मेल हमें अभी से मिल चुके हैं और हम आपको बता दें जिनके मेल हमें 2 बजे के बाद मिले उन्हीं के मेल शामिल होंगे। fmakashwanilakhnau@gmail.com ये है वो मेल आईडी जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। अपने पसंद के गाने लिखिए, आपने कहाँ से मेल किया ये भी हमें आप लिखिए। फ़िलहाल एक बहुत पुराना गाना है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं इस प्रोग्राम की। एक समय था जब इन गानों, जो गाने मैं आपको प्ले करके सुना रही हूँ, मतलब ये गाना जो मैं प्ले करने जा रही हूँ ये लोगों की ज़ुबान पे था, यानी कि लोगों को बहुत पसंद आते थे ये गाने। फिल्मों के नहीं होते थे, एल्बम के हैं, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत से गाना और बहुत दिन से ये गाना हमने आप तक नहीं भेजा है। तो चलिए हम सुनवाते हैं आपको ये ट्रैक और उसके बाद शामिल करेंगे आपकी पसंद जो आप हमें भेज रहे हैं। तो फिलहाल ये गाना आपके लिए खास।

जी तो आई होप आपको ये गाना अच्छा लगा होगा और हमारे पास मेल आने शुरू हो गए हैं। तो भाई चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा विमला नेजा जी का मेल आ गया है, लिखा है नमस्कार और अपनी पसंद का गाना लिखा। बाबू जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने उत्तम नगर दिल्ली से मेल किया है और गाने की फरमाइश लिखी। वसंत कुमार सिन्हा जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास और ये मेल हमें बहुत दूर से मिला है। लिखा है आदरणीय प्रसारक को नमस्कार और इन्होंने दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमें मेल किया है। बहुत सारे नाम भी हैं, वसंत, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री, नन्हे मुन्ने, अनविका बेबी के साथ ही पीहरा बाजार, डुमेरिया, झुमरी, तलैया, गिरिडीह से अभय कुमार, सनातनी, गुड्डू कुमार, शिवानी कुमार, प्रियंका कुमारी साहू, मुन्नी देवी, जयप्रकाश रावत, रिया जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, बेकी सिन्हा, बाके बिहारी, बाबू मोसाई और नाम शामिल करने के लिए दिल से धन्यवाद किया। अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदक आरजू, जूह इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, छोटी बलिया करजत मुंबई से, कपासड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, रबिया मंताशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले की फैमिली। भाई मूसा शेख जी का भी आ गया सनावत से और इन्होंने भी प्यार भरा आदाब लिखा है, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामर शिंडा जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा पुंडाने जी का भी मेल आ गया है और ये ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। संदीप मकड़ जी का भी मेल आ गया, ज्योति मन्नत मकड़, भारत मकड़, कमल साहनी पिंगा वाला चौक गोरिया जलंधर से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, नाम जरूर शामिल कर लीजिएगा, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। लिखा कैसी है जी, बिल्कुल ठीक है, नारगढ़ छत्तीसगढ़ से ये पूछने वाले हैं, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी तुलसी और दिशा गोस्वामी, माई रेडियो माई लाइफ। बाबू अंसारी जी ने लिखा गुड आफ्टरनून शिल्पी मैम, मुझे ये गाना सुनवा दीजिए, और बिल्कुल गाने का ही है प्रोग्राम और इन्होंने डेडिकेट भी किए हैं महेंद्र दीपन, कुलदीप गुप्ता, फैज अंसारी साहब को, बाराबंकी अहमदपुर बाजार से मेल किया बाबू अंसारी जी ने। तुलसी मस्किन जी का भी मेल आ गया, बिहार कांडो ने शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चौतन मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु खुराना। डियर एंकर, आपको विनम्र निवेदन करते हैं कि भाई परिवार के सदस्यों का नाम जो है आप क्या हो रहा है बिगड़ कर लिख रहे हैं और इस बात की वो उनके शहर का नाम गलत लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, यानी कोई

इस तरह के नाम लिखकर भेज देता है. ओके, तो चलिए भाई इस चीज़ का ध्यान रखें. और आप भी कह रहे हैं कि जो लोग उंधाधुंध ईमेल्स भेज रहे हैं उनके लिए शायद ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह की ईमेल्स को ड्रॉप कीजिए और ध्यान रखिए. बिल्कुल सही बात है, मैं तो आपसे पहले भी कहती हूँ कि सिर्फ एक मेल कीजिए. आपके मेल हमें मिलेंगे, हम ज़रूर पढ़ेंगे, इस बात की हम आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं. दातार सिंह जी का मेल आ गया है. संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंका शेखावत लिखा है गाना सुनवा दीजिए. तो चलिए, उन्होंने गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से मेल किया है, तो चलिए आप ही में से किसी की पसंद का गाना हम प्ले करने चाह रहे हैं. एंजॉय कीजिए.

और प्रोग्राम चल रहा हॉट मेल, 2:15 हो गए, आपके ढेर सारे मेल्स यानी ढेर सारा प्यार हमारे चैनल यानी एफएम रेनबो को मिल रहा है और अपना प्यार यूं ही बरकरार रखें, लेकिन बस ये प्यार ज़्यादा ना कीजिए। कहने का मतलब ये है कि मेल्स को थोड़ा सा आप अपना एक मेल करने के बाद थोड़ा इंतज़ार कीजिए ताकि और लोग के मेल भी शामिल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मेल्स में अक्सर हमारे कई लिसनर शिकायत करते हैं कि उनके मेल छुप जाते हैं, नाम नहीं आते, तो उनकी भी भाई चैनल आपका भी है, उनका भी है, सबका चैनल है, और तो ये प्यार थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होने दीजिए, एक ही के लिए खाते में ना जाने दीजिए। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, प्यार से कह रहे हैं, नाराज़गी की कोई बात नहीं है।

भाई 2:20 का समय हो गया, लगातार आपके मेल्स, आपका प्यार हमें मिल रहा है और आपकी फरमाइशें भी हमें मिल रही हैं। संजय ढिंगिया जी बागपत उत्तर प्रदेश से मेल कर रहे हैं, नमन ढिंगिया, अपा ढिंगिया, और इन सब ने एक हमें रिक्वेस्ट भेजी, जैसे कि आप सभी भेजते हैं। आफ्ताब अंसारी जी, आरजे बहना जी, प्यार भरा नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार। शेरवानी स्कूल गुंजुन द्वारा उत्तर प्रदेश से मेल कर रहे हैं आफ्ताब रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। साथ ही हमारे पास मेल आ चुका है जयराम खोरवाल जी आपका, बिल्कुल आप लाइन में हैं, ऐसा मत कहिए कि आप लाइन में नहीं हैं। और जो दिलीप कुमार जी हैं, हमें बूंदी चक भागलपुर बिहार से मेल करें, दिलीप कुमार सोनी जी का मेल आ गया है। और ये भाई कुछ लोग हमें बराबर मेल कर रहे हैं, यानी बार बार मेल कर रहे हैं। और ये विनीत कुमार हैं।

सीतापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से और लिखा है शुभ दोपहरिया, मौसम और प्रोग्राम बहुत सुपर हिट है, जितनी तारीफ करें उतना कम है, थैंक यू सो मच। और इन्होंने गाना सुनना चाहा, उसका रिक्वेस्ट भेजी। तो देखिए बहुत सारे मेल्स होते हैं, अगर आपका शामिल हो पाए, आप गाना सुनिएगा तो हमें खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने लिसनर्स को बिल्कुल निराश ना करें। हितेंद्र दास जी का मेल आ गया असम से, असम इतनी दूर से हमें मेल किया है और लिखा है भाई हमारा नाम ज़रूर पढ़ दीजिए और एनी सॉन्ग, चलिए भाई। और ये मेहर अरोड़ा जी हैं पद्मापुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, महात्मा ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने बहुत ही प्यारे गाने की रिक्वेस्ट की है। आलोक कुमार जी का भी मेल आ गया, आलोक कुमार खरे जी, और लिखा है प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता मैडम जी को नमस्ते, तो भाई आपको भी प्यार भरा नमस्ते। और लिख रहे हैं अनिल कुमार खरे, अरुण कुमार खरे, सुनील खरे, संजय खरे, उन्नति खरे, मंसूर नगर शाहबाद पिहानी हरदोई से, और एक गीत की फरमाइश इन्होंने भी भेजी है जैसे सब लोग भेजते हैं, तो भाई चलिए आपकी फरमाइश भी नोट डाउन कर ली है। तो इतनी सारी फरमाइशों के बाद अब बनता है कि हम जल्दी से एक गाना प्ले कर दें आप ही में से किसी की पसंद का, और साथ ही एक गाना और प्ले करेंगे, यानी बैक टू बैक गाने प्ले होंगे और वो गाने आप ही की पसंद के होंगे। तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं प्रोग्राम हॉटमेल में fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। सुनते रहिए हॉटमेल 100.7 FM रेनबो।

जी प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल और ढेर सारे मेल्स के साथ आपके साथ हाजिर है शिल्पी और मेरे साथ हैं आपके मेल. सत्यनारायण कुरील जी ने भेज दिया जिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मेल और लिखा प्यार भरा नमस्कार राधे राधे. जिस तरह से प्रोग्राम पेश कर रही हैं उससे लगता है स्वस्थ और मस्त होंगी और मैं भी ठीक हूँ और साथ ही अपनी रिक्वेस्ट भी आपने लिखी है भेजी है. इसके बाद हमारे पास मेल आया है हनुमंत शिंदा जी का, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा जी का. और ये मेल इन्होंने हमें भेजा है ग्राम शिरटे ज़िला सांगली से. बहुत दूर से आपने मेल किया. ताली बंसारी जी कैसे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से मेल किया है और लिखा है मेरा मेल पढ़ दीजिए. ध्यान से सुनिए ताली बंसारी जी, मेल हमने आपका पढ़ दिया. वारिस अली खान साहब का मेल आ गया है, लिख रहे हैं मौसम तो चाहे जितने भी रंग बदले लेकिन इंसान के रंग बदलने जैसा हुनर तेरे पास नहीं है. आपसे गुजारिश है कि फिल्म का गाना सुनवा दीजिए. संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से आपका मेल आया है. सफ़ीद्दीन अंसारी साहब का मेल आ गया है और ये शरफुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू और डुमराव बिहार से, डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, साथ ही सहारनपुर बक्सर से राजश्री अंसारी, आसमा खातून अंसारी. शैलेश कुमार जी ने नीलू शर्मा रूपपुर चंदेरा से, शिल्पी दीदी क्या मेरी पसंद का एक गाना सुना देंगी, और मेरा नंबर कभी जल्दी आता नहीं है इसलिए गाना सुनवा दीजिए. पीहू नीलू जी बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास मेल्स होते हैं और हमको बहुत मुश्किल होता है उसमें से इतने सारे लोग के हम पसंद का गाना तो नहीं बजा सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भाई आप में से लोग ही पसंद का गाना जल्दी जल्दी शामिल करें क्योंकि हमें नाम भी पढ़ने पड़ते हैं. किसी भी गीत में शामिल करने की लिख के भेज रहे हैं हमें नागपुर नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल ढक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजन कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी और पायल जोशी, मोहम्मद शादा विलेज विलई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई. गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ. और इन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट लिख के भेजी है. दिग्दर्शन कौर जी, कविता, राधा नामदेव, संजय ढिंगिया, संदीप मकड़, अनिल जर, दर्शन भाई को मेरठ कैंट से मेल किया है. किसने? यही नाम है, दिग्दर्शन कौर जी हैं. मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमाश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गुगावा से हाजी शाह लोलावनी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ ये लिखते हैं पाकिस्तान रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से. उत्तम कुमार भगत जी का मेल आ गया पाकुड़ झारखंड से, श्वेता भगत, किसुता स्वर्णानंद, सत्यानंद, बोड़ागाची पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत. लिखा है क्या बात है दीदी, मेरा मेल छुप गया था. जी हाँ छुप गया था, क्योंकि भाई उत्तम भगत जी वे लगातार मेल कर रहे हैं, लगातार मेल कर रहे हैं, तो यही होता है कि जब आप बार बार मेल करते हैं तो मेल छुप जाता है. श्वेता मोहित अर्णव फ्रॉम हरिद्वार, प्रोग्राम बेहद खूबसूरत है, आवाज़ भी बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच. और इन्होंने अपना गाना भी हमें लिख दिया है और लिखा है प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा, ज़रूर कोशिश करते हैं पूरी तरह. प्रकाश बोरगांवकर जी का मेल आ गया है, छत्रपति संभाजी नगर, सूर्यवाड़ी, सुषमा, प्रकाश, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, अंशुमन, दिल से शुक्रिया भी कह दिया है और लिखा गीत हमें पसंद आ रहा है, हमें शामिल कीजिए. तो चलिए अब बिना देर के हम गीत प्ले कर देते हैं एंड आई होप आई भी दूसरों की पसंद में भी अपनी पसंद

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: 2:46 हो गए हैं, बहुत थोड़ा सा वक्त हमारे पास है और आपके ढेर सारे मेल हैं, उसमें से वो मेल्स भी हैं जो हमें कुछ लिसनर्स बार बार भेज रहे हैं। मुनेश कुमार राजी ग्राम

कानपुर हर आवाज जिला लखीमपुर खीरी से शुभ दोपहरिया और लिखा है हर कार्यक्रम बेस्तेमाल सुनते सुनते हो गए कई साल और लिखा है मैसेज को इग्नोर मत कीजिए प्लीज गाना बजा दीजिए क्योंकि कम से कम दो हफ्ते में एक बार मेरे पसंद का गाना बजाना तो बनता है। ये आपके लोग जो लोग के आपके हक होते हैं ना हक से आप बात कर देते हैं ये हमको बड़ी अच्छी लगती है। रिस्पेक्टेड होस्ट जी प्यार भरा आदाब लिखने वाले गौना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता दीपेश शर्मा जी का मेल आ गया ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश पूनम वर्मा ज्योति और शिवान शर्मा रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल डिकेस्ट्रो विलिस डिकेस्ट्रो और जॉन डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। मूसा शेख जी हम आपका नाम ले चुके हैं और साथ ही हमारे पास अब्दुल गफ्फार जी का भी मेल आ गया और हम ये मेल आपका पढ़ चुके हैं अब्दुल गफ्फार जी। सुनील पाठक जी का मेल आ गया है कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक जी का मेल हमारे पास पहुंच गया है। राम राज जी

मूसा शेख जी हम आपका नाम ले चुके हैं और साथ ही हमारे पास अब्दुल गफ्फार जी का भी मेल आ गया और हम ये मेल आपका पढ़ चुके हैं। अब्दुल गफ्फार जी, सुनील पाठक जी का मेल आ गया है, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक जी का मेल हमारे पास पहुंच गया है। रामराज जी, जी जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी, सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार और फिर गाना की रिक्वेस्ट, गाने की रिक्वेस्ट। विजय जी, विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी कोसलोनी और पेंटर बाबू शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनय अनाया फिल्म का गीत लिखा है, लिखा है गीत को सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामगंज खंडवा से लालगिरी जी का मेल आ गया, नमस्कार दीदी, सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोई भी सॉन्ग में हमें शामिल कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब प्रोग्राम में आपकी प्रस्तुति सुनते हैं। लालगिरी जी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी, रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से, थैंक यू सो मच लालगिरी जी। डीके यानी न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, वो रिक्वेस्ट भेजिए। श्वेता सारस्वत जी और लिखा है थैंक यू दी और साथ ही हमारे पास जगदीश जी का मेल आया है, जगदीश धाकड़, नायमा जी, रंजू भाई धाकड़, नायमा, युवराज सिंह धाकड़ जी, शिवांगी धाकड़ जी, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, कार्यक्रम नियमित सुनते हैं, फरमाइश करता है मालवा रेडियो श्रोता संघ, हिंगड़ी, अलोट, जिला रतलाम MP से। हीरामणि वर्मा जी, पारसमणि वर्मा जी, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, लोखेलाल वर्मा, दत्तरोहिंगी, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से। प्रसारक शिल्पी जी प्रणाम और साहिब आलम है बब्बन भाई, समीर अहमद, एवरेडी तिराहा, अम्बेडकर नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। क्राउन फ्रांसिस हिहार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी। विजय महोबिया जी कह रहे हैं कि सभी गीत लाजवाब सुरीले चल रहे हैं, सुंदर प्रस्तुति और जानदार पेशकश को सैल्यूट करते हैं, सुंदर महफिल में हमारा भी नगमा सुना दीजिए। चलिए भाई, आपका ही नगमा हम सुनवाएंगे, बस कुछ ही देर बाद आपका नगमा आज शामिल होने वाला है। शरुण अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, बॉग, ग्राम अपो, सररपुर, मटकली, जिला बरेली से गीत सुनवा दीजिए और 2:49 पर दो गीत आएंगे बैक टू बैक, आप एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम हॉट मिल शिल्पी के साथ।

जी साईं गायकवाड़ का मेल आ गया है नारायण गायकवाड़ दयानंद जी ओमकार और साईं गायकवाड़ जी हम आपको बता दें आप भी आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट करी कहो ना पैर वो ऑलरेडी प्ले हो चुका दिलीप प्रामेकर जी का मेल आ गया है राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से और 2:56:44 हो गए प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है इजाजत दीजिए अपने दो शिल्पी को नेक्स्ट प्रोग्राम में एक बार फिर मेरा आपका होगा साथ सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड

नमस्कार। दोपहर के 3 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में संयुक्त रूप से जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया है। श्री योगी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सबके साथ साथ पश्चिम एशिया में चल रहे गतिरोध हम सबके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून से एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। उसी कड़ी में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीनों अथॉरिटी ने मिलकर यह प्रयास किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशेष कार्याधिकारी डॉ सुधीर महादेव बोबड़े की अध्यक्षता में आज जनभवन उत्तर प्रदेश में लखनऊ उत्तर प्रदेश में सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंधन समिति की 52वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में निधि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और योजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में निर्देश दिए गए कि उत्तर प्रदेश पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान लखनऊ द्वारा संचालित वार्षिक शैक्षिक सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृत पाठ्यक्रमों को अंगीकार किया जाए। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभ किए जा रहे नए पाठ्यक्रमों को भी योजना में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वाराणसी में मृदा स्वास्थ्य सुधारने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन में हरी खाद कार्यक्रम को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में किसानों को ढैचा और मिश्रित हरी खाद के बीज उपलब्ध कराए गए हैं। कृषि विभाग ने बताया कि वर्तमान खरीफ मौसम में 216 क्विंटल ढैचा बीज 50% अनुदान पर किसानों को वितरित किया गया है। विशेषज्ञों ने बताया कि हरी खाद के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिससे खेती की लागत घटती है। साथ ही मृदा की गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में करीब 4,92,00,000 की लागत से आधुनिक इंडोर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने आज भूमि पूजन कर इस परियोजना का शुभारंभ किया। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी CNDS और उत्तर प्रदेश जल निगम को सौंपी गई है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना को 1 वर्ष के भीतर

0: समय बदला, दौर बदले, पर एक आवाज हमेशा साथ रही।
1: 90 वर्षों से सतत जनसेवा में तत्पर आकाशवाणी।
2: अपने बधाई संदेश के साथ है पद्मश्री डॉक्टर के ठकराल।
3: मैं डॉक्टर के ठकराल आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: तीन बजकर 4 मिनट का समय, सतरंगी दुनिया का सफर लेकर हाजिर हो चुकी है आपकी दोस्त शिल्पी एक बार फिर आपके साथ 100.7 फ्रीक्वेंसी पर। हल दोस्तों, इतनी बातें करते करते आप सबसे सबकी मेल पढ़ते पढ़ते अब हम जो है वो कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं लेकिन उसके बारे में ज़रा खोज कम करते हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप खोज करें या ना करें लेकिन हम खोज कर करके लाते हैं और आपको बताते हैं। और सतरंगी दुनिया वही प्रोग्राम है जो सात रंगों से सजी दुनिया है और उसी में से एक रंग चुरा कर लाते हैं। तो भाई आज कौन सा रंग चुरा कर लाएं, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

हम सतरंगी दुनिया में शुरुआत करते हैं मेडिसिंस से. जी हाँ, मेडिसिंस कभी ना कभी किसी ना किसी को लेनी ही पड़ती है. टैबलेट्स को खाते वक्त आपने नोटिस किया होगा कि किसी किसी टैबलेट में एक लाइन होती है बीच में, यानी वो लाइन जहाँ से दवा को आप तोड़ सकें. आपको मालूम है इस लाइन को क्या कहते हैं? पहले इस लाइन को कहते हैं स्कोर लाइन, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि दवा को आसानी और बराबर हिस्सों में तोड़कर आधी डोज लेनी हो तो ली जा सके. और जिन दवाओं पर यह लाइन नहीं होती उन्हें तोड़ना खतरनाक हो सकता है. ऐसी दवाएं कहलाती हैं सस्टेन्ड रिलीज यानी SR. तो भाई ऐसी दवाएं क्या कहलाती हैं जिनमें लाइन नहीं होती? वो होती हैं सस्टेन्ड रिलीज होती हैं, जिन्हें एक बार में पेट में जाकर धीरे धीरे घुलने के लिए बनाया जाता है. इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ब्रेक करना चाहिए. तो अब आप जब ये लाइन देखिएगा, यानी दवा को जो डिवाइड करते हुए लाइन है, तो आप तुरंत समझ जाएगा कि ये कोई और लाइन नहीं बल्कि स्कोर लाइन है. और ये वो लाइन है जो हमें बताई थी किसने? मैंने 100.7 FM रेनबो पर.

3:13 हो गए और हम इसमें बात करते हैं कि हम रोजमर्रा की बातचीत में ओके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ओके का एक्सेप्टेबल फुल फॉर्म है ऑल करेक्ट, यानी OLLKORRECT. ओके की शुरुआत एक मजाकिया और ट्रेंडी तरीका था ऑल करेक्ट को कहने का। 1830 के दशक में अमेरिका के जगह पर यह शुरुआत हुई थी एंड 1839 में बॉस्टन मॉर्निंग पोस्ट में इसे पब्लिश किया गया था। तो यानी ओके मतलब ऑल करेक्ट, लेकिन उस समय इस स्पेलिंग को लिखा गया था ऑल, यानी OLLKORRECT. सो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, ओके का मतलब ऑल करेक्ट।

जी भाई, 3:18 हो गए और हम अब बात करेंगे ओके के बाद आरएसवीपी की. आरएसवीपी जो आप अक्सर जो आपका कार्ड आते हैं यानी इनविटेशन कार्ड होते हैं उसमें आरएसवीपी आप देखते होंगे, लेकिन आपने कभी शायद जानने की कोशिश नहीं की कि आरएसवीपी होता क्या है. एक्चुअली आरएसवीपी एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इन्विटेशन कार्ड में अक्सर आप लिखे इसको देखते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है रिस्पोंडेंस सिल्वू प्ले. जी हाँ, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है तो हो सकता है मेरे बोलने में ये चीज़ वो ना आ रही हो, लेकिन रिस्पोंडेंट सिल्वू प्ले इसका मतलब होता है कि प्लीज़ रिस्पोंड. यानी आरएसवीपी का ये मतलब होता है कि किसी से अनुरोध करना कि आप पार्टी यानी मेज़बान यानी होस्ट को ये बताने के लिए कह रहे हैं कि आप शामिल हो पाएंगे या नहीं, तो रिस्पोंड करना यानी प्लीज़ रिस्पोंड, ये होता है इसका मतलब. और फिलहाल हम आपकी खैरियत जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे हैं. ये मैं नहीं पूछ रही, देखिए ये कौन पूछ रहा है.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और अब बात करते हैं हेलो शब्द की. जी हाँ, हेलो शब्द जो आप अक्सर करते हैं, हेलो हेलो. और ये हम आपको बता दें, पुराने फ्रांसीसी भाषा के शब्द होला से इसकी उत्पत्ति हुई है. इसका मतलब होता है रुको या सुनो. और वक्त के साथ ये वर्ड जर्मन वर्ड हालो में बदल गया और फिर 19वीं सदी में एक ग्रीटिंग बन गया. होला का मतलब होता है कैसे हो. और फ़ोन पर इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1887 में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, जो अब तक चला आ रहा है.

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: और अब से कुछ ही पलों में सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी।

0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है।
1: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में, इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है। ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया। प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
1: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में

में बताते हुए वहाँ के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गाँव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित हो रही प्रदर्शनी में भाग लेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत तथा विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। नया समय दोपहर को 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। एजेंसी ने प्रश्न पुस्तिका के साथ दिए जाने वाले रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज 14 जून तक जनपद झांसी और फरुखाबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री सिंह दोनों जनपदों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे तथा झांसी में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण एवं सेवा संस्कार, सुशासन एवं सम्मान थीम पर आयोजित लघु प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। फरुखाबाद जनपद में आगामी 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला अधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बताया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम होगा। योग टीचरों के साथ प्रशिक्षण को लेकर पूरी वार्ता कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

चार बजकर के हो गए हैं 4 मिनट और आपकी दोस्त चंद्रकला आ गई है आपके साथ और इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ को और इस समय आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम यूथ वेव होता है शुरू। लीजिए हमने कर लिया है आगाज आज प्रोग्राम यूथ वेव का, लेकिन आज जो सेगमेंट है वो है यूथ का हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ और हाइजीन सेगमेंट को हम इंजॉय करते करते आपके लिए आज लेकर के आए हैं प्रोग्राम यूथ वेव में एक खास सा, या यूं कहें कि आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज, जो एक ऐसी आर्ट से जुड़ा हुआ है जो आपको भी पसंद आता है और सबको पसंद आता है, मुझे भी पसंद है, सबको पसंद आता है। बस ट्यून इन करके रखिए और ट्यून इन करके रखने का मतलब यह है कि आप ये खूबसूरत सा गाना सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और तुरंत उसके बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे आज के सेगमेंट की और उस सरप्राइज की।

4:11 हो गए हैं। एक खास बात के बारे में आपको बताया था हमने, और प्रोग्राम यूथ वेव चल रहा है, हेल्थ और हाइजीन सेगमेंट भी है, उसको लेकर हम साथ में चलने वाले हैं। लेकिन आज एक कंपटीशन के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, एक आर्ट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, और उस आर्ट के आज हमारे साथ जो बैठे हैं वो हैं विनर। समझ रहे हैं आप, विनर किसको बोलते हैं और किस तरीके का वो एहसास होता है और क्या पोजीशन होती है, क्या माइंडसेट होता है वहां पहुंचने तक, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन आर्ट की बात हम पहले कर रहे हैं, और वो आर्ट फॉर्म है म्यूजिक, संगीत। एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो है क्या। पहले तो वो है किस चीज के विनर, ये आप समझ लीजिए। वेव्स, एक बैटल ऑफ बैंड इंटरनेशनल 25, ये जो कंपटीशन था वेव्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, इस कंपटीशन के विनर हैं वो जो हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन ये सरप्राइज है, आप तक पहुंचने वाला है। ये है क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता है, जी ग्लोबल म्यूजिक कंपटीशन है, जिसको भारत सरकार के वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और प्रसार भारती और सारे गामा के सहयोग से किया जाता है। और इसका उद्देश्य दुनिया भर के बैंड्स को एक साझा

सीधा मंच देना था, जहां अपनी संगीत प्रतिभा का एक से एक हुनरबाज प्रदर्शन कर सके। अब वेव्स के बारे में, वेव्स आपसे कह रहे हैं ये है क्या, इसके बारे में आपको बताते हैं कि वेव्स, पहले तो पूरा नाम सुन लीजिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट है और भारत सरकार की एक वैश्विक पहल है जिसका लक्ष्य भारत को मीडिया, मनोरंजन, संगीत, फिल्म, एनिमेशन, डिजिटल कंटेंट के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और आपको बता दें कि वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई 2025 के दौरान मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। अब इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन ज्यादा आपको नहीं पकाएंगे, तुरंत थोड़ी देर में हम लेके जाएंगे उनके पास जो है विनर इस कॉन्टेस्ट के, इस प्रतियोगिता के। और उनकी आर्ट फॉर्म हमने आपको बता दी है कि वो वोकलिस्ट हैं, सिंगर हैं और बहुत खूबसूरत गाते हैं, और विनर हैं तो आप समझते होंगे कि वो किस तरह का म्यूज़िक आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। बस वेट करना है आपको, इस गाने के तुरंत बाद आपके रेडियो सेट पर होगी उनकी आवाज़।

0: 4:18 हो गए हैं और ये जो खूबसूरत गाना आपने सुना ना, ये खूबसूरत गाना जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत बनाता है इसको, इसकी आवाज़। देखिए हर गाने की खूबसूरती क्या होती है, उसका संगीत और उसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है आवाज़ की, वोकलिस्ट की। भाई कितनी खूबसूरत आवाज़ अभी हम सुन रहे थे। अब मैं आपको बिना देरी के हमारे गेस्ट की तरफ ले जाती हूँ और बात करते हैं हम उस खास मेहमान के बारे में। लेकिन हमने उनको विनर बोला है और विनर बोला है तो बता दें कि किस बात के विनर हैं भाई। फिर से एक बार जो बैटल ऑफ बैंड्स इंटरनेशनल कंपटीशन है उसके ये विनर हैं, और पहले बैटल ऑफ बैंड्स मुख्य रूप से भारतीय बैंड्स के लिए ही आयोजित किया जाता था, लेकिन 2025 में इसको इंटरनेशनल रूप दिया गया और इसमें बहुत सारे देशों के बैंड्स ने भाग लिया। अब आपको बताएं कि इसमें मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंगापुर, रूस, स्पेन, यूके, बहुत सारे देश शामिल थे। और इस कॉम्पिटिशन के विनर हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, अंकित मिश्रा जी। अब उनकी आवाज़ आपके रेडियो सेट तक पहुंचने का समय है और अब उन तक आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले यूथ वेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी। बैटल ऑफ बैंड्स इंटरनेशनल 2025 जीतने की आपको ढेर सारी बधाई।
1: थैंक यू चंद्रकला।
0: ओके, तो अंकित जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी हमारी ढेर सारी ऑडियंस सुन रही है और ढेर सारे लोग क्यूरियस भी थे जानने के लिए कि आखिर कौन है वो गेस्ट। तो आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है अभी स्टूडियो पहुंचने से पहले तक की बात बताइए, मतलब बैटल जीतने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आया है?
1: नहीं, चंद्रकला, बहुत सारे चेंजेस हैं और बैटल ऑफ बैंड्स जीतने के बाद में जो भी म्यूज़िकल फील्ड में या जो भी हमारे फ्रेंड्स थे और जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, और मुंबई में भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो भी एक अच्छा मेरा, एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस शो के ज़रिए मेरी आवाज़ सारे 14 से 15 देशों में पहुंची है, और मैं इसके लिए बैटल ऑफ बैंड्स का, वेव्स का, सारेगामापा का बहुत बहुत शुक्रगुजार।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बेशक हमें महसूस हो पा रहा है कि ये बैटल जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी में बेशक ढेर सारे चेंज हुए होंगे। लेकिन आपके लिए हमारे पास सवालों की झड़ी है, लेकिन ये तो हमने बस आपका स्वागत किया है, सवालों की झड़ी है। और बस सवालों की झड़ी शुरू करने से पहले हम आपसे पूछ लेते हैं, आज अभी इस वक्त आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं जो हम गाना प्ले कर दें आपके लिए? और आपने जो गाना बोला है सुब्रमण्यम साहब का, कौन सा?
1: मैं एक्चुअली उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है, तो पहला पहला प्यार है, मैं चाहूँगा आप दर्शकों को सुनाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अंकित जी की पसंद का और सबकी पसंद का, और आपको भी ये पसंद आएगा। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर है, इसे आप सुनिए और तुरंत वापस आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग से सवाल और इंटरेस्टिंग सी क्वेरीज, जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सब लेकर के आएंगे। ट्यून इन करके रखिए।

रहा हूं मुनीश शर्मा आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इंडिया एग्जिम बैंक सीधी भर्ती अभियान के तहत आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन उपप्रबंधक सूचना सुरक्षा चार पद प्रबंधन प्रशिक्षु मानव संसाधन प्रबंधन तीन पद प्रबंधन प्रशिक्षु प्रशासन दो पद विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.eximbankindia.in/careers भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है निदेशक शैक्षणिक एक पद उपनिदेशक शैक्षणिक एक पद कार्यकारी शैक्षणिक तीन पद तीनों पदों का नियुक्ति स्थान मुंबई रहेगा अधिक जानकारी जैसे योग्यता अनुभव आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आदि के लिए देखिए वेबसाइट www.icsi.edu/careers आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 19 जून 2026 भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित रेजिडेंसी योजना के अंतर्गत कॉलेज के विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in वेबसाइट पर जाकर क्लिक कीजिए वर्क विद डीयू उसके बाद जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो साथ ही कॉलेज की वेबसाइट www.ucms.ac.in पर करियर्स का अनुभाग देखें इसमें आपको तमाम जानकारी प्राप्त हो जाएगी ये विज्ञापन रोजगार समाचार के 6 से 12 जून 2026 के अंक में प्रकाशित हुआ है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर हैदराबाद आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन चिकित्सा अधीक्षक वित्तीय सलाहकार अधीक्षण अभियंता कार्यकारी अभियंता विद्युत नर्सिंग अधीक्षक लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी कार्यकारी सहायक

0: निजी सहायक तकनीशियन प्रयोगशाला और अपर श्रेणी लिपिक। तकनीशियन प्रयोगशाला के लिए 5 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जबकि अपर श्रेणी लिपिक के लिए 3 तथा सहायक लेखा अधिकारी और नर्सिंग अधीक्षक के लिए 2-2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। अन्य सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति ही उपलब्ध है। शैक्षिक योग्यता, आयु और पात्रता मानदंड आदि सभी शर्तों और नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर की वेबसाइट aimsbbnagar.edu.in। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में अध्यक्ष के पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन फॉर्मेट, योग्यता शर्तें, अपेक्षित अर्हताएं, सेवा के लिए निबंधन और शर्तों जैसे अन्य ब्यौरों के लिए देखिए मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in अथवा www.ibbi.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आमंत्रित कर रहा है एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों के लिए आवेदन। पद संबंधी विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रारूप देखने के लिए देखिए वेबसाइट nidm.gov.in। आवेदन की अंतिम तिथि है 13 जुलाई 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: 4:31 हो गए हैं। प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। और आज प्रोग्राम यूथ वेव में सेगमेंट तो हमारा है हेल्थ एंड हाइजीन, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज, स्पेशल गेस्ट आज के प्रोग्राम के हमारे साथ हैं, मिस्टर अंकित मिश्रा। और हेल्थ और हाइजीन को जोड़ते हुए हम साथ में चल रहे हैं। हाइजीन तो नहीं, लेकिन हेल्थ की बात करूं, अगर मेंटल हेल्थ की बात करूं, तो म्यूजिक थेरेपी का काम करता है, म्यूजिक मेडिसिन का काम करता है। और आपको पता है, रिसेंटली मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर को जैसे ही पता चला कि मुझे म्यूजिक सुनने का शौक है, आपको पता है डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर सेड कि आपको तो संगीत का इतना शौक है, आपको सुनना पसंद है, कहां आपको नींद नहीं आ रही है, क्यों आप इतना डिस्टर्ब हो रही हैं? समझ रहे हैं आप, म्यूजिक को थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग बहुत जगह है और मैं कहूंगी कि रेमेडियल है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बस इसी जर्नी को हम अपनी मेंटल हेल्थ से जोड़ते हुए आगे चलते हैं और अंकित जी को ट्यून इन करते हैं। और अंकित आपको बताने वाले हैं कि मतलब क्या स्पार्क है, क्या मजा है और क्या क्या खूबसूरती है, सब आपको बताएंगे। लेकिन अंकित जी, आप सुन रहे हैं?
1: यस यस
0: जी। तो अंकित जी हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ है आपके रेडियो सेट पर, उनकी आवाज सीधे सीधे पहुंच रही है। और आपको आपके मन का सवाल अंकित जी से हम पूछते हैं। तो अंकित जी ये बताइए कि जिस समय इस बैटल का विनर, जब आप फाइनल में होंगे, आपने परफॉर्म किया होगा, जब आपको विनर डिक्लेयर किया होगा, बोला होगा कि इस बैटल के, इस सीजन के जो विनर है वो है अंकित मिश्रा, तो आपको क्या फील हुआ, मतलब आपने क्या

0: पूछा सबसे पहले?
1: एक्चुअली इस शो में जब मेरा ऑडिशन हुआ था तो सब बहुत बड़ी खुशी हुई थी, और ये तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ मैं विनर ही होऊंगा, क्योंकि इतने सारे देश, इतने अच्छे म्यूजिशियन, और फिर उसके बाद में सबसे बड़ी खुशी तो मुझे हुई जब मैं टॉप सिक्स में पहुंचा। टॉप सिक्स में होने के बाद में लगा कि अरे वाह, अभी तो सब कुछ मिल गया। और फिर उसके बाद में जब टॉप थ्री में पहुँचा तो लगा कि अरे ये क्या हो गया, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और उसके बाद में जब विनर का अनाउंसमेंट किया गया, एक टाइम के लिए लगा कि ऐसा तो मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा शो और इतने सारे बैंड्स का मैं विनर हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही खुशी हुई।
0: अच्छा, एक और बात मेरे मन में, मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल है, जब आप विनर हुए हैं तो आपको ट्रॉफी मिली होगी, जो भी आपको सर्टिफिकेट या जो भी मिला होगा, तो उसको लेने के बाद मतलब वो जो आपके अंदर से एक चैन और सुकून की सांस निकली होगी, वो कितनी गहरी थी, कितनी सुकून देने वाली थी वो?
1: वो एक्चुअली बहुत ही गहरी थी। और और सबसे ज़रूरी ये कि जो भी हमारे म्यूज़िकल जर्नी थी वो सब कुछ याद आ रही थी, जो भी मैंने हार्डवर्क किया था इतने टाइम में वो सारा कुछ रिकॉल हो रहा था। तो एक टाइम के समझ में नहीं आ रहा था कि ये ट्रॉफी है और मैं एक्चुअली अभी कहाँ पे हूँ, तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। थैंक यू।
0: मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ इसको। और बस कुछ एक और सवाल पूछा है हम आपसे?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो दूसरा सवाल आपसे ये है, बिल्कुल बेसिक से, जो हमारे सारे श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें आप ये बताइए कि आपके संगीत का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, और ये भाई आज विनर होने तक का आपका सफ़र है, तो जहाँ से आपका संगीत का सफ़र शुरू हुआ कृपया हमें बताएं कि क्या हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे मिली वो प्रेरणा आपको?
1: संगीत का सफ़र ऐसे, मैं एक्चुअली बहुत ही छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, जो हरगांव, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो सीतापुर है। तो एक्चुअली सीतापुर में इतना म्यूज़िक का कोई स्कोप नहीं है। हाँ, जो मेरी मम्मी हैं, जो मेरी माँ जी हैं, मैंने वो एक्चुअली ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि वो तबला प्ले करती थी। तो संगीत से तो एक्चुअली मम्मी मेरे बचपन में बोलती थी कि आप हनुमान चालीसा गाइए, तो हनुमान चालीसा से एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि हाँ मैं गाता हूँ। तो मेरा जो गाने का जो स्किल है वो भी मेरी माँ ने पहचाना
0: जी।
1: तो उसके बाद से फिर हम आफ्टर इंटर ट्वेल्थ के बाद में जब हम यहाँ लखनऊ में शिफ्ट हुए
0: जी,
1: देन उसके बाद में फिर मेरी मम्मी मुझे भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, एक है कैसरबाग में पड़ता है यहाँ पे,
0: जी जी जी,
1: तो वहाँ से मैंने जो है मास्टर किया, एमपीए किया, जिसको एमपीए भी बोलते हैं वहाँ पे, मास्टर ऑफ म्यूज़िक भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे
0: जी।
1: और जो हमारे सबसे पहले गुरु हैं लखनऊ में आने के बाद में, वो श्री राहुल अवस्थी जी हैं, मैंने
0: जी।
1: उनसे शिक्षा ग्रहण करी है। और फिर जब मैं भातखंडे में आया तो सृष्टि मैम, जो कि मेरे सबसे फेवरेट है
0: जी।
1: और मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। और फिर आफ्टर मास्टर के बाद में मैं निकल गया दिल्ली, देन वहाँ पे भी मैंने उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब जी से मैंने संगीत की शिक्षा, शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा
0: जी।
1: और फिर ऐसे यूं ही मैं एक्चुअली नेट पे अप्लाई कर रहा था कि कहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिले लाइव शोज़ की, क्योंकि मुझे लाइव शोज़ करना बहुत पसंद है और मैं सोच भी रहा था। तो मैंने मॉरिशस में मैंने अप्लाई किया था एज अ लीड सिंगर, तो वहाँ पे बैंड जो है वो हायर करते हैं इंडियन सिंगर्स को, बॉलीवुड सिंगर्स, वहाँ बॉलीवुड सिंगिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है और सॉन्ग्स भी बहुत पसंद किए जाते हैं
0: जी।
1: तो वहाँ पे आने के बाद में फिर थोड़ा सा मेरी पहचान बढ़ी
0: जी।
1: और उसके बाद में मैंने जो बैटल ऑफ बैंड्स का जो ऑडिशन है वो भी मैंने मॉरिशस से ही दिया एक्चुअली, जो मेरे जो बैंड का नाम था वो इबानेज म्यूज़िक था।
0: ओके।
1: तो मैंने एक्चुअली मॉरिशस को ही रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे
0: जी।
1: तो उसके बाद में फिर मेरी शो में एंट्री हुई और बाकी आप तो जानते ही हैं। फिर उसके बाद में मैं विनर हुआ उसका, मेरा बैंड इबानेज म्यूजिक।
0: बिल्कुल। और
1: तो
0: आपने मतलब उस स्टोरी को जहाँ से उठाया था सीधे आपने विनर का ताज पहना दिया उसे
1: जी।
0: चलिए, बड़ा अच्छा लगा। और ये जो जर्नी है और ये जो बातें हैं हमारी वो चलते रहेंगे, और जो हमारे श्रोताओं के, लिसनर्स के मन में क्वेरी चल रही हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। और अंकित जी की पसंद का ये खूबसूरत सा गाना है, क्योंकि

हमारे गेस्ट हैं और उनका म्यूजिक का टेस्ट बड़ा अच्छा है। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, भागे नहीं, उनकी पसंद का गाना सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनकी जुबान से उनकी आवाज में गाना सुनेंगे। तो ट्यून इन करके रखिए ये खूबसूरत सा गाना आपकी रेडियो सेट पर।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 4:43 हो गए हैं और ट्यून इन किया है आपने 100.7 FM रेनबो को. आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और एक खूबसूरत आवाज अंकित है आपके साथ. और अंकित, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो म्यूजिक है ये हमारे मतलब मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है? कितना अच्छा आपको क्या लगता है?
1: नहीं, ऐसा तो हमारे जो भी गुरुजन हैं उन्होंने भी ये बोला है कि जैसे शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत से ऐसे राग हैं
0: जी
1: जिनको सुनने से स्ट्रेस दूर होता है
0: जी.
1: और पियानो सेशंस हैं, गिटार सेशंस हैं, जैसे आप उनको जब सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन लाइक जैसे जो इंसान एकदम काम हो जाता है.
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल. और अगर इससे भी बहुत जनरल मैं सवाल पूछूं, जैसे आपने तो शास्त्रीय संगीत सीखा है, आपने तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी विधा सीखी है, आपको ज्ञान है उसका, लेकिन एक जनरल आम आदमी का सवाल मैं आपसे पूछता हूँ. एक आम आदमी जिसको सा भी नहीं आता है कुछ, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है उस समय, तो अगर ये खूबसूरत सा गाना सुन ले तो क्या थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम हो सकता है?
1: नहीं, बिल्कुल. और आजकल का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा सोशल मीडिया
0: जी,
1: तो सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनको सुनने से ही डिप्रेशन और स्ट्रेस दूर होता है. और बहुत से ऐसे गाने हैं लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं. हाँ, सैड को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे
0: जी,
1: बट हाँ, रोमांटिक सॉन्ग सुन सकते हैं, कुछ हिप हॉप सुन सकते हैं, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे.
0: क्या बात है, यही मैं कहने वाली थी कि जो आम आदमी की आवाज़ है ना वो मतलब क्लियर होनी चाहिए, उसके सवाल जो है वो क्लियर होने चाहिए. तो मतलब श्रोताओं, अगर आप सुन रहे हैं तो मतलब आपको शास्त्रीय संगीत तक पहुँच नहीं है आपकी, तो आपको एक खूबसूरत सा गाना, किसी भी रफ़ी जी की आवाज़ है, किशोर जी की आवाज़ है, लता जी की आवाज़ है, आपके मन को शांत कर सकती है. खैर, अंकित जी की तरफ जाते हैं और बात करते हैं. ये बताइए कि जब आपने इस बैटल ऑफ बैंड्स जो ये आपका कंपटीशन था, इसमें शुरुआत से लेकर के विनर बनने तक आपने मतलब आपको क्या क्या चैलेंजेस फील हुए?
1: चैलेंजेस बहुत सारे फील हुए क्योंकि मेरा एकदम फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम मेरा कैमरा फेस करना, इतने सारी ऑडियंस को फेस करना, जजेस को फेस करना. और अगर मैं बहुत एकदम स्टार्ट में चला जाऊं तो जब मेरे राउंड्स हो रहे थे, ऑडिशन राउंड्स हो रहे थे, तो राउंड्स फर्स्ट क्लियर हुआ, देन उसके बाद में एक मन में रहता है कि अभी कौन सा सॉन्ग सुनेंगे, क्या फरमाइश करेंगे, तो सेकंड राउंड क्लियर हुआ. देन थर्ड राउंड पे जब ही आया तो वीडियो कॉल सेशन हुआ
0: जी.
1: तो अब उसमें इतना डर था कि ऐसा कौन सा गाना सुनने को बोल दें जो बहुत डिफ़िकल्ट हो और मैं ना सुना पाऊँ, तो बहुत सारी क्वेरीज माइंड में चलती रहती हैं ड्यूरिंग जब हम ऑडिशन देते हैं
0: जी.
1: फिर उसके बाद में जब कैमरा फेस करना हुआ तो इतने सारे जजेस, इतना ऑडियंस, और एकदम जब कैमरा आपके सामने होता है तो जो नर्वसनेस होती है उसको फेस करना, ये बहुत ही बड़ा टास्क था हमारे लिए
0: जी.
1: हाँ, तो ऐसा है, यही सारे चैलेंजेस हमने फेस किए. देन उसके बाद में तो फिर धीरे धीरे आदमी हैबिचुअल हो जाता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये दूसरा सवाल हर किसी के मन का सवाल है, जो संगीत सीखना चाहते हैं, जो संगीत में करियर बनाना चाहते हैं, जो सिंगर्स हैं, जो युवा गाते हैं, टैलेंटेड हैं, उनके मन का ये सवाल है कि क्या अपनी ज़िंदगी में इस संगीत के इस सफ़र में किसी समय आपको ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, या बहुत मुसीबत भरा समय है, या बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरा सैडनेस भरा या कहें कि परेशानी का वक्त रहा हो, उस समय आपने क्या सोचकर, क्या मोटिवेशन लेकर ओवरकम किया और आपने अपनी यात्रा को जारी रखा?
1: जब भी

0: स्टार्टिंग फेज़ था हमारा, जब भी मैं सीख रहा था, तो सीखते सीखते क्या होता है कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन में देखते हैं कि कोई भी परफॉर्म कर रहा है, तो एक एक माइंड मेकअप होता है कि मुझे मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है। और जब भी आप अपने आप को देखते हो कि मेरा एक्चुअली लेवल क्या है, और फिर आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ तक गा पाता हूँ,
1: जी
0: और फिर भी अगर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ या आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो
1: जी
0: ये चीज़ें मैंने बहुत फेस करी हैं,
1: जी
0: और फिर उसके बाद में बट मैंने रियाज़ को अपना कंटिन्यू रखा,
1: जी
0: क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी आ सकती हैं, कहीं पे भी आ सकती हैं। तो हर एक म्यूज़िशियन को प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसा मैंने अपने आप को प्रिपेयर रखा, और जो भी सॉन्ग्स हैं या जो भी हमारा रियाज़ है, जो भी हमारे राग हैं,
1: जी
0: तो ये मैं कंटिन्यूसली करता रहता था। और कहीं पे भी अगर परेशानी होती, हाँ डेफिनेटली परेशानी होती है कि हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही, इतना सारा स्ट्रगल हो रहा था कि एक टाइम पे भी लगता है कि हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा,
1: जी
0: तो उसमें

0: मैंने अपने आप को प्रिपेयर रखा और जो भी सॉन्ग्स हैं या जो भी हमारा रियाज है, जो भी हमारे राग हैं
1: जी,
0: तो ये मैं कंटिन्यूसली करता रहता था। और कहीं पे भी अगर परेशानी होती, हाँ डेफिनेटली परेशानी होती है कि हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही, इतना सारा स्ट्रगल हो रहा था कि एक टाइम पे भी लगता है कि हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा
1: जी।
0: तो उसमें हमारी मम्मी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने समझाया कि अपना कंटिन्यू रखो, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि सफलता की कुंजी वो कभी भी आपके हाथ लग सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो कुछ ऐसा ही जर्नी रहा है और इन फेजेस आए हमारी लाइफ में। बट हाँ, अभी तो अगर आप हार्ड वर्क कंटिन्यू रखते हैं और ईमानदारी के साथ में अगर आप संगीत को करते हैं तो डेफिनेटली आपको जीत मिलेगी।
1: बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है अंकित जी, जो कीवर्ड्स हैं आपके सफलता के पीछे, मुझे ऐसा लगता है कि निराशा आएगी, डाउनफॉल होगा, डिप्रेशन होगा,
0: Correct.
1: दुख होगा, लेकिन जो आपने सोचा है उसको पकड़ के चलना है।
0: करेक्ट।
1: तो बिल्कुल आपकी इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ और ये यूथ को हमारा बड़ा ही अच्छा मैसेज है कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जो खूबसूरत संगीत है, अगर आप इसमें हैं, करियर बनाना चाहते हैं, या म्यूज़िक में नहीं है, किसी और फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बस उसे पकड़ कर रखना होगा। दुख की घड़ी में उसका साथ छोड़ देने से वो भी आपका साथ छोड़ देगा। ट्यून इन करके रखिए, खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, तुरंत आते हैं वापस।

0: 4:51 और ये खूबसूरत हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। अभी हमारे पास वक्त कम है, लेकिन जो वक्त है वो ये कह रहा है कि इस खूबसूरत आवाज़ में कोई नगमा तो सुन लिया जाए। अंकित जी, कुछ तो बढ़िया सा हमें सुना दीजिए आप। देखिए, जैसे ही हमने अंकित जी से बोला कुछ तो बढ़िया सुना दीजिए, उन्होंने बिना लफ्ज़ निकाले सीधे जो है गिटार ले लिया है हाथ में। अब क्या सुनाएंगे ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अंकित जी जो भी आप सुनाना चाहते हैं वो सुना दीजिए, बिना बताए हम खुद सुन लेंगे, समझ जाएंगे।
1: जरूर, जरूर।

0: क्या बात है, क्या बात है, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी आवाज़। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही गाना नहीं, एक और तो कुछ हम सुनना चाहेंगे, कुछ एक और गाना तो, कुछ तो मतलब ऐसा होना चाहिए टेस्ट बदलने वाला। इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है और हमारे इतने सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, आप जो चाहें वो हमें सुना दें दूसरा गाना।
1: जी ज़रूर, एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरे रंग में, जो कि मुझे शो में भी इसके लिए परफॉर्मर ऑफ द डे मिला था।
0: ओ हाँ,
1: तो
0: देखिए अंकित जी, आपसे ये सवाल भी था हमारा कि मतलब पूरे दौरान जो प्रतियोगिता थी उसमें आपकी सबसे पसंदीदा परफॉर्मेंस कौन सी थी और कौन सा गाना था, तो चलिए शुरू करते हैं।
1: जी ज़रूर।

0: क्या बात है, क्या बात है,
1: थैंक यू।
0: इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। और ऐसा लग रहा है अंकित जी कि बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, लेकिन जो वक्त है हमारे पास वो बहुत ही कम है। मतलब ये आपकी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस है
1: जी
0: उस प्रतियोगिता के
1: जी
0: दौरान?
1: क्योंकि इसमें मेरा भी फेवरेट फेवरेट है और जो भी जजेस थे उनका भी फेवरेट है, दैट्स वाई उन्होंने परफॉर्मर ऑफ द डे ये दिया था मुझे।
0: मतलब बेशक आपको मिलना ही चाहिए था। बहुत कम समय है, लेकिन एक सवाल आपके लिए है आखिरी। आज के युवाओं में टैलेंट बहुत है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ही लो। मतलब वो आगे नहीं जाना चाहते हैं, या जो युवा म्यूजिक में हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको आप?
1: सबसे पहले तो उनको यही बोलना चाहेंगे कि पहले तो आप संगीत को सीखना स्टार्ट कीजिए,
0: जी
1: और सीखने के साथ साथ आपका जो प्रैक्टिस है, आपका जो रियाज है, उसको ईमानदारी से आप कंटिन्यू रखिए।
0: जी
1: और जो भी निराशा है वो एक हर एक फील्ड में आती है, तो
0: जी
1: वो नेचुरली है, वो आएगी, बट अपनी जो जो अपना जो रियाज है, अपना जो हार्डवर्क है और जो अपनी प्रैक्टिस है, उसको कंटिन्यू अगर आप रखते हैं और ईमानदारी से अगर आप संगीत को करते हैं, तो डेफिनेटली संगीत कभी धोखा नहीं देगी आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल अंकित, और ये बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया है। और आपकी इन्हीं बातों के साथ श्रोताओं, अब अंकित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के
1: थैंक यू
0: लिए,
1: चंद्रकला, थैंक
0: अपनी
1: यू,
0: इतनी खूबसूरत रूहानी आवाज़ सबको सुनाने के लिए।
1: थैंक यू।
0: और बस इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे, और हमारी दुआएं रहेंगी कि आप संगीत को लेकर खूब तरक्की करते रहें,
1: थैंक यू,
0: खूब आगे
1: थैंक यू,
0: बढ़ते रहें।
1: थैंक यू।
0: दोस्तों, आप सुन रहे थे वेव्स के द्वारा आयोजित कंपटीशन बैटल ऑफ बैंड्स इंटरनेशनल। इस कंपटीशन के विनर अंकित मिश्रा के साथ हमारी बातचीत, और प्रोग्राम यूथ वेव में आज वो थे हमारे प्रोग्राम के खास मेहमान। और इस गाने के साथ हम प्रोग्राम यूथ वेव से आपसे लेते हैं विदा। और इसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा उसके लिए FM टॉप 10 आपको ट्यून इन करके रखना होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश को जब ऐसा लोकप्रिय, चमत्कारी और दूरदर्शी नेता मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगता। श्री योगी ने कहा कि पिछले 12 सालों में हमने बदलते भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद के भारत पर आज की पीढ़ी गर्व करती है और गौर करती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जिस भारत ने अपनी विकास यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए बिना रुके, बिना थके लगातार आगे बढ़ाया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास दुनिया को कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित रहे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत जिले के वनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज हर गरीब को पक्का मकान मिला है और सड़क, बिजली, परिवहन, पुल, रोजगार जैसे अभूतपूर्व काम हुए हैं। इससे पहले श्री प्रसाद ने 7 बारात घर और 2 अंत्येष्टि स्थलों का ऑनलाइन माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

5:04 हो गए हैं और प्रोग्राम FM टॉप 10 में आपका स्वागत है। और प्रोग्राम FM टॉप 10 में आज जो यूनिक गाने लेकर के आए हैं वो खूबसूरत से गाने 10 गाने होंगे और उन 10 गानों में से जो पहला टॉप 10 में से 10th नंबर का जो गाना होगा वो आपके रेडियो सेट पर आने को तैयार है। लेकिन आपको बता दूं, ये उस दौर के गाने हैं, उस ज़माने के गाने हैं जब लोग इन नगमों में, इन गानों में खो जाते थे, लेकिन आज भी वही दौर इन गानों को सुनते ही याद आने लगता है। कौन सा दौर है वो, उसको जानने के लिए आपको ट्यून इन करके रखना होगा 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं। और साथ ही याद रखिए, ये है आज FM टॉप 10 का 10वां गाना।

5:11 हो गए हैं और प्रोग्राम FM टॉप 10 चल रहा है और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। FM टॉप 10 का आज का 10वां गाना आपने सुन लिया है और ये रहा 9वां गाना आज की FM टॉप 10 की लिस्ट का, 9th सॉन्ग आपके रेडियो सेट पर। आप इसे सुनिए और तुरंत वापस आते हैं।

5:25 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और प्रोग्राम FM टॉप 10 का नंबर 7th गाना अब आपके रेडियो सेट पर आने वाला है। और यह खूबसूरत गाना है आज प्रोग्राम FM टॉप 10 का नंबर 7th।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: पाँच बजकर के 31 मिनट हुए हैं, प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10 और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो। और आज के प्रोग्राम FM टॉप 10 का गाना नंबर 6 रहा आपके रेडियो सेट पर, ये

बिल्कुल। और इसे जाने क्यों के साथ आज के FM टॉप 10 का सॉन्ग नंबर 4 आपके रेडियो सेट पर रहा ये।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: समय बदला, दौर बदले, पर एक आवाज हमेशा साथ रही।
3: 90 वर्षों से सतत जनसेवा में तत्पर
4: आकाशवाणी।
5: अपने बधाई संदेश के साथ है पद्मश्री डॉक्टर के ठकराल।
6: मैं डॉक्टर के ठकराल आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ।
7: ये जो बादल गरज रहे हैं ये आसमान में अभी के नहीं हैं, ये इस गाने के हैं जो कि आज के FM Top 10 का सॉन्ग नंबर 3 है।

5:54 हो गए हैं और अब समय है इस प्रोग्राम के आखिरी गाने का. और आज का प्रोग्राम का टॉप सॉन्ग या पहला नंबर वन सॉन्ग जिसको हम आज की इस लिस्ट में रखते हैं जो आखिरी में प्ले करते हैं, वो गाना आपके रेडियो सेट पर आने को तैयार है, बस प्ले हो रहा है. लेकिन इसी गाने के साथ हमें आपको कहना होगा बाय, इस प्रोग्राम से अलविदा आपको कहना होगा. लेकिन अगला प्रोग्राम आपका अपना शाम अवध है जिसके लिए आप ट्यून इन करके रखिए और तुरंत न्यूज़ ब्रेक के उस पार आपसे मिलते हैं शाम अवध में. आज FM टॉप 10 का टॉप सॉन्ग या शो स्टॉपर कह सकते हैं इसको, इस गाने को छोड़ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। श्री योगी सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के पश्चात गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चौथे संस्करण के लिए देशव्यापी प्रचार अभियान की शुरुआत आज नई दिल्ली में आयोजित रोड शो के साथ की गई। इस अवसर पर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपीआईटीएस राज्य की औद्योगिक शक्ति, निर्यात क्षमता और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने वाला प्रमुख मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने, ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने और नए व्यापारिक अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये व्यापार मेला 25 से 29 सितंबर 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्तिवर्धन सिंह ने आज कहा कि संघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। तजाकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि SCO में भाग लेने के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास को नई दिशा दी है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारकर जनता तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, महिला और युवा समेत समाज के हर वर्ग के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली

0: ये लखनऊ है जनाब,
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। लखनऊ की।

6:04 हो गए हैं और इस खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्यार भरा सलाम आपको। मैं आपकी दोस्त चंद्रकला जुड़ गई हूँ आपसे आपके अपने प्रोग्राम की शुरुआत के साथ, जो कि आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम है शाम अवध। और इस खूबसूरत शाम में, इस सुकून भरी शाम में आपका स्वागत है फिर से, और बार बार स्वागत है। इस खूबसूरत शाम में स्वागत करते करते आपको ये भी याद दिलाऊं कि भाई बहुत सारी बातें आपसे करनी होती हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होती है और साथ में आपके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना होता है। तो क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना होता है और एंटरटेनमेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो इसलिए आपकी पसंद का नहीं, हम सब की पसंद का और हमारी तरफ से ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर शाम अवध का खूबसूरत आगाज करता हुआ।

0: और इसी खूबसूरत गाने के साथ आपके साथ फिर से आ गई, मैं हाज़िर हो गई, आपसे जुड़ गई हूँ। और मौसम का हाल कर जानने से पहले, मौसम के बारे में बात करने से पहले, पहले आपको कहें कि अगर आप घर जा रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, या फिर आप कहीं भी निकल रहे हैं, गाड़ी से हैं और हमें सुन रहे हैं, तो यातायात नियमों को दिमाग में रख कर कृपया चलते रहें। और मेरा तो एक ही कहना है कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं और अपनों का ख्याल करते हैं, तो आप बहुत अलग से ग्लो करते हैं। वो जो ईमानदारी का ग्लो होता है ना चेहरे पे, वो खूबसूरत सा नूर जो होता है वो अलग सा होता है। तो बस यही है, मेरा अपना मानना ये है, ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो आप खूबसूरत लगते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं और सभी को पॉजिटिव वाइब देते हैं। बस इसी बात के साथ ज़्यादा आपको ज़ोर ज़बरदस्ती वाले शब्दों में नहीं कहूँगी, बाकी ये है कि जिन भी बातों के बारे में आपको गौर करना चाहिए उनके बारे में तो करना ही चाहिए, ध्यान तो देना ही चाहिए। आप हैं, आपसे ये जहाँ हैं, आपके होने से आपके अपने हैं, बहुत सारी बातें हैं। मौसम के बारे में अगर आपको बात करें तो भाई मौसम विज्ञान ने जो है थोड़ी सी अलर्ट जारी तो किया है मौसम ठीक होने का, जैसे आपने आज दोपहर तक देखा होगा कि मौसम कैसा करवट लिया है। और कई जिलों में गरज चमक के साथ आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कल रात भर भी आपने देखा होगा, इसके अलावा परसों भी आंधी चली है खूब सारी। थोड़ा बहुत मौसम जो भीषण गर्मी चल रही थी अभी, उससे राहत मिलने की संभावना है और थोड़ी थोड़ी बारिश के छींटे बूंदेबांदी की भी संभावना है और थोड़ी सी ठंडी हवाओं के साथ टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होने वाला है और बारिश भी आ सकती है। बस इसी खुशी वाली बात के साथ मैं आपसे कह देती हूँ कि आप जो है बहुत अच्छी तरीके से खुश रहते रहते इन्जॉय करिए। ये ट्यून इन किया है ना आपने 100.7 FM रेनबो, अगली अपडेट लेकर तुरंत आते हैं आपके पास।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

और इस खूबसूरत नंबर के बाद आपका स्वागत है अपने प्रोग्राम शाम अवध में। वापस लौट आइए अगले जोन में अगर आप चले गए हैं तो। ये खूबसूरत शाम आपको सुकून की तरफ लौटा रही है। ये खूबसूरत शाम आपसे कह रही है कि कोई बात नहीं, दिन भर की थकन, भाग दौड़, बहुत सारे विचारों को एक तरफ एक किनारे करके समेट कर अपनी अलग सुकून भरी दुनिया में चलने को वापस बुला रही है। ये सुकून भरी शाम आपसे कह रही है कि आप आओ, बैठो, शांति से गहरी सांस लो और देखो कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दीवारें, ये खुला आसमान और कुछ ठंडी हवा आपका इंतज़ार कर रही है। हाथ में चाय की प्याली, और अगर आपने चाय पीना छोड़ दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ और इसलिए कभी कहूँगी भी नहीं कि चाय पीनी अच्छी बात है। अगर आप पीते हैं और हेल्दी चाय पीते हैं, हेल्दी चाय मतलब हो सकता है आप हरी चाय पी लें, काली चाय पी लें, लेकिन सफ़ेद चाय थोड़ी सी नुकसान कर सकती है। खैर, लेकिन आपकी मर्जी, आप उसे भी, सफ़ेद चाय को भी हेल्दी बनाकर पी सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, और नहीं भी करते हैं, बाकी हमारे बहुत सारे श्रोता करते होंगे, और वैसे यात्रा तो हर किसी को करनी पड़ती है, ओकेजनली भी करनी पड़ती है और ऐसे भी करनी पड़ती है। खैर, ये बात तो बहुत ज़रूरी है, यात्रा हर किसी को करनी पड़ती है, किसी को बस से, किसी को ट्रेन से, किसी को गाड़ी से सड़क पर, लेकिन किसी को यात्रा करनी पड़ती है विचारों की, सोचने की। खैर कभी कभी मैं ऐसी फनी बातें कर लेती हूँ। खैर, अब जो अगली जो खबर है आपके लिए, वो खबर ये है कि चारबाग रेलवे स्टेशन पे जो कॉन्कोर्स का निर्माण कार्य चल रहा था ना, पूरा मेंटेनेंस, उसकी वजह से गाड़ियों के रूट बदले गए थे। अब ये रूट्स बहाल कर दिए गए हैं, कई सारे रूट हैं जो बदल दिए गए हैं। इससे पहले ट्रेनें चारबाग स्टेशन के बजाय जो है ऐशबाग या बादशाह नगर स्टेशन से होकर

लाई जा रही थी, अब ये वापस क्योंकि वहां पे निर्माण कार्य जो है पूरा हो गया है तो वापस वहां से शुरू कर दी गई है। जी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो है वो मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। रेलवे ने इसके चलते राजधानी एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, 36 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म्स बदले थे। लखनऊ मंडल के जो सूचना है वहां से जो मिली हमें, सूरत मुजफ्फरपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर, गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पनवेल गोरखपुर, भावनगर अयोध्या कैंट और पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस, इन सब ट्रेनों का रूट नॉर्मल कर दिया गया है, जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलने लगी हैं। इसके अलावा राजधानी, श्रमजीवी, बहुत सारे लगभग 36 ट्रेनों का जो प्लेटफॉर्म्स है वो बदला गया है, इधर उधर फेरबदल हुई है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपको अगर सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस जो बदली हुई जानकारी है इसके बारे में देख लेंगे, थोड़ी सी खोज खबर कर लेंगे, उसके बाद ही यात्रा करेंगे। ये ना हो कि आखिरी मौके पर कोई देर हो जाए। ट्यून इन करके रखिए, और खबरें हैं आपके लिए और आपके काम की खबरें हैं। तब तक के लिए खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर।

6:34 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध। आपने ट्यूनिंग किया है 107 FM रेनबो लखनऊ को। अगली खबर आपके लिए ये है कि IIM लखनऊ में 12वीं पास जो छात्र हैं उनको मौका मिलने वाला है एक चीज़ का, और वो चीज़ है AI और बिजनेस एनालिटिक्स। ये एक नया कोर्स यहाँ शुरू किया गया है, AI और बिजनेस एनालिटिक्स। JEE एडवांस के आधार पर आपको दाखिला मिलेगा, और ज़्यादा अगर आपको इंक्वायरी चाहिए और आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो IIM लखनऊ के वेबसाइट पर देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो 10+2 जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए AI और बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स मतलब बैचलर ऑफ साइंस BS में ये प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है IIM लखनऊ ने। और इसी के साथ ही आपको एक और खबर ये बताएं कि लखनऊ में मालवीय मार्ग स्थित कोकोरो आर्ट गैलरी में बंगाल की जो सुप्रसिद्ध लोक चित्र परंपरा काली घाट पट चित्र प्रदर्शनी है ये शुरू हो चुकी है, और डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। और बंगाल के जो प्रसिद्ध लोक चित्रकार, मनोरंजन चित्रकार, वरिष्ठ IAS अधिकारी नवनीत सहगल और बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद रहे, और पट चित्र शैली की बहुत सारी अलग अलग कलाकृतियों को यहां प्रदर्शित किया जाता है। जितने भी कला प्रेमी हैं यहाँ जा सकते हैं आर्ट गैलरी में इसका लुत्फ उठाने के लिए। आपको पता है ये जो लोक चित्र है, लोक चित्र मतलब लोक चित्र परंपरा काली, या जिसको कहते हैं पट चित्रकला जिसको कहते हैं, ये लोक चित्र परंपरा पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, लोक जीवन से जुड़े हुए विषयों को एक अलग से शैली में ड्रॉ किया जाता है, या ये कहेंगे कि चित्रित किया जाता है। ये आर्ट शैली ये फॉर्म करती है। और भी खबरें होंगी आपके लिए हमारे पास, और आप ट्यून इन करके रखिए 107 FM रेनबो को।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ। कॉल 666-444।
5: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

6:47 हो गए हैं और अपडेट का समय है आपके लिए। एक और अपडेट आपके लिए है, या यूं कहें कि ये तो गुड न्यूज है अपने शहर के लिए, आपके लिए, सबके लिए। भाई यूपी, ग्रीन यूपी की बात चलते रहती है और अपने मुख्यमंत्री जी ने जो है एक खूबसूरत चीज हम लोगों के लिए की है और पर्यावरण के लिए की है, जिसके बारे में बात करना तो बनता है। भाई हमारे यूपी में ईडा एरिया में, ईडा एरिया यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वाला जो एरिया है, इसमें 3 हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिख गई है भाई। और ये हरी झंडी दिखने का मतलब ये है कि अपने यूपी में अब जो ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट की एक नए युग की शुरुआत हो गई है। ये बसें आपको पता है बिल्कुल ही प्रदूषण मुक्त हैं, एक बार में 750 किलोमीटर तक का सफर कर तय कर सकती हैं। और आपको पता है कितनी खुशी मिलती है ये सुनकर कि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, इससे पर्यावरण को शुद्ध करने में ये अपना योगदान

देने वाली हैं आपको। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बसेस है ये कैसे काम करती है। इनको बहुत ही मॉडर्न बसों का निर्माण, मतलब एनटीपीसी दादरी के द्वारा डेवलप किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित जो मोबिलिटी स्कीम है उसके तहत इन बसों को बनाया गया है। और डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बिल्कुल अपोजिट हाइड्रोजन जो है फ्यूल सेल टेक्निक पूरी तरह से इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। इन बसों के एग्जॉस्ट जो होते हैं, साइलेंसर जिनको कहते हैं, उससे हानिकारक धुएं के बजाय सिर्फ पानी की बूंदें, मतलब भाप बाहर निकलती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये इससे जो एयर पोल्यूशन है उसको जड़ से ख़त्म करने का इफ़ेक्टिव प्रयास किया जा सकता है। है ना, एकदम ज़बरदस्त ऑप्शन। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि अगर इसके बारे में बात करें हम, मुझे सबसे ख़ास बात इसकी ये लगी कि ये जो बस है ना, ग्रीन मोबिलिटी जो ये योजना बनाई है इसका सस्टेनेबल मॉडल है। इसमें आपको पता है

करने का इफेक्टिव प्रयास किया जा सकता है। है ना एकदम जबरदस्त ऑप्शन। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर इसके बारे में बात करें हम, मुझे सबसे खास बात इसकी ये लगी कि ये जो बस है ना, ग्रीन मोबिलिटी जो ये योजना बनाई है, इसका सस्टेनेबल मॉडल है। इसमें आपको पता है प्राकृतिक जल संसाधनों को छेड़ने के बजाय, मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उससे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इन अगर ऐसी बसेस चलने लग गई ना, तो हर दिन 2080 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। ये मुझे इसकी सबसे खास बात लगती है, और जिसका सीधा फायदा हमारे इन्वायरमेंट को मिलेगा। और ये मात्रा आप समझ रहे हैं, मतलब 2080 किलोग्राम ऑक्सीजन का मतलब है कि करीब हमने 1700-1750 पेड़ लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से हर साल जो हमारा वायुमंडल है उसमें घुलने वाले लगभग 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 हमारा होता है, निकलता है, उसको भी निकलने से रोका जा सकेगा। है ना एकदम जबरदस्त स्कीम। और ये स्कीम मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई। और सबसे खास बात इन हाइड्रोजन बसेस की, वो भी एक और खास बात है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ रेंज के मामले में भी बहुत बढ़िया है। एक बार टैंक फुल कर दिया जाए इसका, तो फिर ये 750 किलोमीटर एक बार टैंक फुल करने में चल सकती है, और लगभग 40-42-45 की क्षमता है एक बस में, और एक बार में 56 किलोग्राम हाइड्रोजन भरा जा सकता है। मुझे तो ये स्कीम बड़ी पसंद आई, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा सुनकर के, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और बहुत ही फायदेमंद होता है अगर ये स्कीम, इस तरीके की हाइड्रोजन बसेस अगर चलने लगती हैं तो। ट्यून इन करके रखिए खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: और इसी के साथ 6:56 हो गए हैं और प्रोग्राम शाम अवध से हमें दीजिए जाने की अनुमति। अगला प्रोग्राम आपका अपना हेलो FM में। मिलते हैं समाचारों के बुलेटिन यानी टॉप 10 समाचारों के बुलेटिन के उस पार।

0: ist.
1: नमस्कार, आप सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। श्री योगी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यीरा क्षेत्र में संयुक्त रूप से जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत जिले के वनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका निराकरण कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र और प्रदेश के सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास को नई दिशा दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशेष कार्याधिकारी डॉ सुधीर महादेव बोबडे की अध्यक्षता में आज जनभवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंधन समिति की 52वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में निधि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों एवं योजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चौथे संस्करण के लिए देशव्यापी प्रचार अभियान की शुरुआत आज नई दिल्ली में हुई। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपीआईटीएएस राज्य के औद्योगिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने वाला प्रमुख मंच बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर लखनऊ में श्रम और सेवा योजन विभाग द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जसपाल राणा के निधन पर शोक जताया। उन्नाव के थाना आसीवन क्षेत्र में आज गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इसी के साथ टॉप 10 समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
1: विरासत और स्वस्थ मनोरंजन की अनूठी पहचान।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण।

होने पर हार्दिक बधाई। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे तथा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अपना ध्येय पूरा करती रहे, इसी आशा के साथ मैं SR बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी के परिवार तथा असंख्य श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

0: 7:05 हो गए हैं। आपका स्वागत है, आपको प्यार भरा सलाम नमस्कार, खूबसूरत शाम है, गुड इवनिंग, और आपका अपना प्रोग्राम है हेलो एफएम। हेलो एफएम एक ऐसा प्रोग्राम है, फरमाइशी प्रोग्राम है, जिसमें आप सीधे हमें हमारे स्टूडियो के नंबर्स पर कॉल करते हैं और अपनी फरमाइश कॉल पर बताते हैं। और अगर आप हमारे नए श्रोता हैं जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और अभी आपको हमारे स्टूडियो के नंबर्स याद नहीं हैं, तो आपको हम अपने स्टूडियो के नंबर्स बता देते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं 2238845, 2238852। ये दो हमारे स्टूडियो के नंबर हैं। दोनों नंबरों में आगे आपको कोड लगाना होगा, वो कोड होगा 0522। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 2238845, 2238852, ये दो नंबर हैं, आगे कोड लगाना होगा 0522। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप अपनी फरमाइश यानी कि गाने की फरमाइश ऑन एयर हमें बता सकते हैं। हेलो एफएम प्रोग्राम का ये जो आगाज़ है वो हो चुका है, लेकिन हमें देखना होगा बिना देरी के जल्दी से कि हमारे साथ कौन जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। हेलो,
1: ये इंतजार का दुख सहा नहीं जाता, तड़प रही हूँ आपकी मोहब्बत में अब रहा नहीं जाता। ये इंतजार का दुख सहा नहीं जाता, तड़प रही हूँ आपकी मोहब्बत में अब रहा नहीं जाता। पहली बार बात हो रही है आपसे, पहली बार बात हो रही है आपसे, इतना खुश हूँ मैं कि अब हमसे कुछ कहा नहीं जाता।
0: अरे
1: इतना
0: वाह,
1: खुश मैं कि अब हमसे कुछ कहा नहीं जाता।
0: क्या बात है, क्या बात है, मतलब इतनी खूबसूरत शायरी आपने बना कैसे दी एकदम?
1: ऐसे ही बना लिया मैंने, हम शायरी बनाते रहते हैं।
0: सही बताइए, सही बताइए, आपने शायरी खुद बनाई है कि आपने इंटरनेट से?
1: हमने खुद बनाया है, हम शायरी बनाते हैं।
0: वाह,
1: और सबको सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम अलैकुम, मेरा प्यार भरा।
0: क्या बात है, क्या बात है, मतलब
1: कैसी है?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आपकी शायरी सुनकर बहुत खुश हो गई हूँ एकदम।
1: और हम आपसे बात करके बहुत खुश हो गए, आपसे मैं पहली बार बात हो रही है।
0: क्या बात है, पहली, चलिए ठीक है, पहली बार आपकी हमसे बात हो रही है, आप एक्साइटेड होंगी, लेकिन आपने हमसे पहली बार बात करके हमें खुश कर दिया एकदम, अपनी तरफ कर लिया आपने।
1: हम भी बहुत खुश हैं, आपसे बात हो गई, आपने मेरा फोन रिसीव किया है, इसके लिए थैंक यू मैम। जब भी आप आती थी स्टूडियो में प्रोग्राम करने के लिए, हम सोचते थे काश टीम भी चमकला मैम से बात हो जाती।
0: अरे वाह, लेकिन देखिए फोन ये इत्तेफाक था, आज आपकी बात होनी थी। एक्चुअली क्या है कि हम नहीं पता कर सकते कि किसका फोन आ रहा है, हमें बस जो है मतलब जो फोन बजता है, आप इत्तेफाक से हमने फोन उठाया और कॉल की, उस पार आप थी कॉल पर।
1: जी मैम,
0: और क्या चल रहा है इस समय? आज तो मौसम काफी अच्छा है
1: मैम, बहुत अच्छा है। रात को बारिश हुई थी, आज भी दिन में थोड़ी सी बारिश हुई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
0: कहाँ से बोल रही हैं आप, हम भूल गए।
1: जिला सीतापुर कुचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रही
0: हूँ। शमा जी, आपके यहाँ सीतापुर में कल बारिश हुई थी?
1: हाँ, रात में बारिश हुई थी और अभी 4 बजे की थोड़ी बारिश हुई थी, ज्यादा नहीं हुई थी, पर मौसम बहुत अच्छा है, पूरा दिन बादल छाए और हवा चली बहुत अच्छा, गर्मी बिल्कुल नहीं थी।
0: वही तो हम सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों, लखनऊ में कोई भी बारिश की एक बूंद नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, मौसम लेकिन आज यहाँ भी अच्छा था, टेम्परेचर थोड़ा गिरा है, आज भीषण गर्मी नहीं थी। चलिए, और हो गया आपका डिनर का तैयारी?
1: हाँ हो गया मैम, आइए आप भी।
0: अरे वाह, क्या
1: सीतापुर आके घूम जाइए,
0: बिल्कुल आएंगे, सीतापुर आएंगे, घूम जाएंगे, आप इतनी मोहब्बत से बुला रही हैं, हमें तो वैसे भी घूम

0: का शौक है।
1: हाँ बिल्कुल चाहिए हमारे घर।
0: आप क्या करती हैं समाजी?
1: आपसे मोहब्बत और आपसे प्यार।
0: अरे वाह। अब देखिए, आपने ये बात बोली, अगर यही बात कोई अगर आदमी हमसे कह देता तो हम गुस्सा हो जाते फिर। सही बात है कि नहीं? मतलब देखिए, आप हमसे बोल रही हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं, अपनापन है, प्यार है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी, कोई मर्द आकर ये सब कह दे तो फिर समझिए उसको कितना गलत समझ लिया जाएगा, है नहीं?
1: वो बात सही है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, और कोई बात आपको कहनी हो?
1: गाना देती बहुत समझ जाता हूँ।
0: और गाना आपने जो इतना खूबसूरत, मतलब मेरी पसंद का, मतलब ऐसे गाने एंजॉय करने में मजा आता है, तो मैं जानना भी चाह रही हूँ कि किसको डेडिकेट कर रही हैं आप ऐसा गाना।
1: सबसे पहले आपको, फिर
0: चलिए ठीक हो गया
1: छोटी बहन है सरन्नुम अंसारी, फिर
0: जी।
1: वकील अहमद भाई, मोहम्मद सैयद भाई, गुलाबा अप्पी, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, पिंकी पिंकी, महद अंसारी, हरदे पूनम, और अकबर अंसारी, बाबू अंसारी, मोहम्मद सद्दाम भाई, सत्य कुमार भाई, और जावेद अख्तर भी, मोहम्मद अमीन, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी सुनने वालों को, सिराजुद्दीन भाई को भी, मोहम्मद सैयद भाई को भी।
0: क्या बात है, इतने सारे नाम आपने याद करके रखे हैं।
1: याद करके ये जितने हमने मैम नाम लिया है, हमारे भाई बहन सब लोग तो हमारा नाम लेते हैं, और प्रीति भी हमारा नाम लेती है, मोहम्मद नाजिद भाई भी।
0: बताइए, हमारी मतलब इतने सालों में हमारी आपसे बात आज पहली बार हो पा रही है।
1: पहली बात हो रही
0: बाकी सारे आरजे से आपकी बात हो चुकी है।
1: है। हाँ हमारी, और मोना मैम से भी बात करने की बहुत ही तमन्ना है, कभी बात नहीं हुई
0: मोना मैम से
1: है जी।
0: चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात बता दें मोना मैम को।
1: हाँ मोना मैम को भी बुलाई
0: लेकिन लेकिन हम नहीं,
1: थी।
0: हाँ ये भी बात हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूर कह देंगे कि आप याद कर रही थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप आएं और आपसे ही बात हो पाए। वो तो इत्तेफाक होगा, किसी दिन हो जाएगा इसी तरह।
1: मोना मैम का भी इंतजार कर रही हूँ, देखो कब आती
0: बिल्कुल बिल्कुल, मिल जाएंगी वो भी आपको।
1: जी।
0: चलिए ठीक है, आपने नाम भी शामिल कर लिया, आपका गाना भी निकल गया है एकदम
1: ओके
0: तैयार।
1: बाय।
0: ठीक है समाजी, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। और समाजी की पसंद का तो ये गाना हमने ऑन एयर करने के लिए बिल्कुल रेडी करके रखा है, और हमने आपको नंबर्स भी बता ही दिए थे कि जो भी आप हमें कॉल करना चाहें, नए श्रोता हैं अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो गाना है समाजी की पसंद का, आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के उस पार, आप ट्यून इन करके रखिए, और इस कॉल के बाद, हो सकता है इस फरमाइश के बाद आपकी फरमाइश की बारी हो।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: हेलो, मैं हूँ अरुषि निशंक, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: आकाशवाणी की 90वीं सालगिरह पर हम कृतज्ञ हैं अपने श्रोताओं के, जिनका प्यार हमें एक सच्चे हमसफर की भांति अनवरत मिलता रहा।

0: समय बदला, दौर बदले, पर एक आवाज हमेशा साथ रही।
1: 90 वर्षों से सतत जनसेवा में तत्पर
2: आकाशवाणी।
3: अपने बधाई संदेश के साथ है पद्मश्री डॉक्टर के ठकराल।
4: मैं डॉक्टर के ठकराल आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
2: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है, और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों

0: पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। NTA ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
3: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन JEE एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
0: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में

की पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। वेलकम बैक आपके अपने प्रोग्राम हेलो FM में, और आपके अपने प्रोग्राम इसीलिए क्योंकि आपकी अपनी फरमाइशें हैं और आप फ़ोन करते हैं और ख़ुद अपने मुंह से अपनी ज़बान से हमें बताते हैं कि हमें ये गाना सुनना है। खैर, बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम हेलो FM में कि अगले श्रोता, अगले कॉलर कौन जुड़ गए हमारे साथ। हेलो
1: जी मैम। हेलो
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: बोल रहे हैं
0: जी,
1: नागेश कुमार बोल रहे हैं।
0: नागेश कुमार जी सीतापुर से?
1: जी मैम।
0: नागेश जी, आपने पहले भी कॉल मिलाया है क्या FM में?
1: नहीं नहीं मैम, पहली बार मिला है।
0: आज पहली बार आपसे बात हो रही है ना जी? आप कब से सुनते हैं नागेश जी FM?
1: मैम बचपन में छोटे थे तब
0: जी,
1: जब वो दादी और ही सुनती थी, वो कौ बड़को जो आते थे।
0: जी जी जी जी जी,
1: फिर से मैं शुरुआत कर दी FM को लगने लगा है।
0: आपकी आवाज थोड़ी कट सी रही है,
1: नेटवर्क नहीं मिल रहा है मैम।
0: हाँ, नेटवर्क समझ तो आ रहा है लेकिन बहुत अच्छे से कट रही है थोड़ी थोड़ी आवाज। तो आप कैसे सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं कि रेडियो पे?
1: मैम मोबाइल पे सुनते
0: हैं, ऐप के माध्यम से है ना?
1: जी मैम, रेडियो ऐप के माध्यम।
0: और आप करते क्या हैं?
1: मैम पढ़ाई करते हैं भी।
0: अच्छा, अभी आप कॉलेज में हैं?
1: जी मैम कॉलेज में।
0: अरे वाह, चलिए BSc कर रहे हैं आप?
1: जी मैम।
0: अच्छा, तो मतलब आपका ये जो FM है, मतलब तब आप कब कब इसको सुनते हैं? मतलब मेरे हिसाब से आपको जब टाइम मिलता होगा तो वो कब कब, जैसे आप किस चीज़ के लिए, जैसे खाली इंटरटेनमेंट के पर्पस से या न्यूज़ के लिए, या कैसे आपको क्या लगता है?
1: मैम इंटरटेन के लिए और इसके लिए के लिए, दोनों की चीज़ों के लिए।
0: अच्छा चलिए ठीक है, और आपकी पसंद का गाना तो हमने निकाल दिया है, लेकिन ये गाना आपने क्यों, मतलब मेहंदी लगा के रखना, मतलब कोई खास बात?
1: कॉलेज में जब लगा था अच्छा लगा था
0: जी,
1: इसीलिए मैं सुनना चाहती हूँ।
0: चलिए ठीक है नागेश जी, बहुत अच्छा लगा, और इतने शाई मत हुआ करिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से शाई हो रहे हैं बात करने में।
1: जी मैम पहली बार बात किया, हार्ट बीट बढ़ जाती है।
0: अरे कोई बात नहीं नागेश जी, हम स्टूडियो के इस पार बैठे हुए मनुष्य ही तो हैं, इंसान ही तो हैं आपकी तरह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बिल्कुल नर्वस मत होइए, और हमारी दुआ है कि आप पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, आपका मन लगा रहे, और आपकी पसंद का गाना आपके रेडियो सेट पर भेज देते हैं। बाकी कोई और बात आप कहना चाहें?

0: जी मैम।
1: कोई और बात तो नहीं कहनी है आपको?
0: जी मैम कुछ नहीं कहनी।
1: चलिए ठीक है, फिर होती है आपसे बात, आप मिलाया करिए कॉल, ठीक है? आपकी जो डर है वो दूर हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, ठीक है नागेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। नागेश जी की पसंद का ये जो गाना है ये आपके रेडियो सेट पर हम भेजते हैं, और इसके तुरंत बाद आते हैं आपकी आपकी फरमाइश लेकर।

0: 7:40 हो गए हैं और इस समय प्रोग्राम हेलो एफएम चल रहा है. आपके जो कॉल्स हैं उनका सिलसिला जारी है और अगली कॉल हमारे साथ, अगली कॉल पे कौन आए और कौन है वो श्रोता, उसके लिए हमें तुरंत देखना पड़ेगा कौन है. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
0: जी. सलाम, कौन बोल रहे हैं?
1: साहिबा अंसारी, महवागन किया लेकिन तो जेरी से बोल.
0: साहिबा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप ना बताइए आप कैसी.
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और क्या चल रहा है आपके यहाँ इस समय, कौन सी तैयारी कर रहे हैं?
1: मैम, इस समय तो आपका फ़ोन जो है, रेडियो सुन रहे थे और जो फ़ोन लगा रहे थे.
0: ओके. तो और मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: मैम, हमारे यहाँ बहुत अच्छा है.
0: आप कैसे सुनती हैं साहिबा, आप रेडियो से सुनती हैं कि मोबाइल ऐप से सुनती हैं?
1: मैम, हम रेडियो से सुनते हैं, मोबाइल से भी सुनते हैं.
0: अच्छा, मतलब रेडियो में सभी सुनते होंगे, सब लोग मिलके.
1: जी मैम, सब लोग मिलके सुनते हैं.
0: अच्छा, आप क्या करती हैं, आप कॉलेज वॉलेज जाती हैं?
1: नहीं मैम, कॉलेज नहीं जाते.
0: अच्छा, चलिए, आपकी पसंद का गाना तो हमने निकाल लिया है. और कोई बात जो आपको कहनी हो?
1: जी हम नाम लेना चाहते हैं कुछ लोगों से.
0: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए.
1: मैम, सबसे पहले आप
0: जी
1: भाई को,
0: जी
1: मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, वकील अहमद मंसूरी भाई, बाबू अंसारी भाई,
0: जी
1: अंसारी भाई हैं, जावेद अख्तर भाई हैं, सत्यम कुमार भाई हैं, राशिद अंसारी भाई हैं,
0: जी
1: सुलक्षा सिद्दीकी अच्छी हैं, शमा अच्छी हैं, महक अंसारी हैं, साजिया अंसारी हैं, रिंकी अच्छी हैं, रोशनी दीदी हैं, प्रीति.
0: चलिए ठीक है. और
1: मैम, हमारी छोटी बहन से बात कर लीजिए.
0: हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है.
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी सलाम, कौन बोल रही हैं, नाम बताइए.
2: जी, मेरा नाम माहम अंसारी है.
0: माहम,
2: जी
0: हेलो, आवाज़ आ रही है?
2: जी आ रही है.
0: आप स्कूल जाती हैं, कॉलेज?
2: जी बोल रहे हैं, आवाज़ आ रही है आपकी.
0: हाँ हाँ आ रही है, आ रही. बोलिए, आप स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं?
2: जी हम जाते हैं कॉलेज.
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: जी मतलब हमारा स्कूल कॉलेज एक ही में है.
0: अरे मतलब आप अपनी कक्षा बताइए, कौन सा, कौन किस क्लास में?
2: 11th में.
0: 7th में आप?
2: नहीं, 11th में.
0: अच्छा 11th में, तब आपका स्कूल ही हुआ, 12th तक तो स्कूल ही होता है.
2: नहीं मतलब एक तरफ कॉलेज है और एक तरफ स्कूल है.
0: बढ़िया है, फिर उसी में कॉलेज भी हो जाएगा.
2: जी है कॉलेज, जी वो जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा लगता है.
0: अच्छा
2: हम लोग उधर ही ज़्यादा रहते हैं.
0: अच्छा, मतलब आप बंक मार के ज़्यादातर कॉलेज की तरफ रहती हैं?
2: चल रही हैं
0: जी,
2: गर्मी भी ज्यादा हो रही है
0: जी,
2: स्कूल खुलते हैं तो हम लोग ज्यादातर उधर ही रहते हैं.
0: चलिए, आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप बहुत बहुत अभी छोटी हैं, मासूम हैं.
2: दीदी आप खाते क्या, आपकी आवाज बहुत मीठी है.
0: क्या
2: आप खाते क्या, आपकी आवाज बहुत मीठी है.
0: कुछ खाने से थोड़ी आवाज मीठी होती है यार?
2: ऐसा होता है?
0: नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. हम 2 समोसे खाए हैं दिन में
2: खाए.
0: और चटपटा है वो, तो उससे आवाज कैसे मीठी होगी?
2: आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए,
0: फिर उससे और मीठी होगी आवाज.
2: कड़वा खाने से शायद थोड़ा और सही हो जाए या मीठा. अभी हम जा रहे हैं रोड पे, ठीक है?
0: अच्छा,
2: मेरी मम्मी की एनिवर्सरी है.
0: अरे वाह, चलिए आपके माता पिता को हैप्पी एनिवर्सरी.
2: जी अभी हम लोग अभी जा रहे हैं, आप भी आ जाइए.
0: बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिलेगा तो जरूर होगा ऐसा कुछ.
2: हमें तो पता भी नहीं था और जब दीदी ने बताया तब हमको ध्यान आया.
0: अच्छा,
2: हम इन चीज़ों को नहीं मतलब ज़्यादा याद रखते हैं.
0: अच्छा,
2: बस केवल अपना बर्थडे याद रखते हैं बस.
0: बहुत सेल्फिश वाली बात हो गई है कि अपना बर्थडे याद रहता है लेकिन एनिवर्सरी में इन चीज़ों को याद नहीं रखते. मम्मी पापा की एनिवर्सरी तो याद ही होनी चाहिए.
2: हमें पता ही नहीं था कभी मतलब.
0: चलो अब याद हो गया, अब हर साल मनाती रहना. चलिए माहम, ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके हमें. और दुआ है हमारी कि आप खूब पढ़िए और आगे बढ़िए और फिर आपसे बात होगी. और आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी है. और माहम की पसंद का और इनकी बहन की पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर

0: 7:50 हो गए हैं और ये जो प्रोग्राम इस समय चल रहा है ये है हेलो एफएम, आपकी फरमाइशों का प्रोग्राम, आपकी पसंद का प्रोग्राम। और बिना देरी के हम देखते हैं कि कौन जुड़ गए हैं हमारे साथ, अगले कॉलर। हेलो
1: हेलो हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी सलाम, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं तरन्नुम अंसारी काजी कमालपुर से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा
1: मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पहली बार आपसे बात हो रही है। मेरा फोन जनवरी में लगा था आपके पास।
0: इससे पहले जनवरी में?
1: हाँ मेरी बात जनवरी में हुई थी।
0: किससे?
1: आपसे नहीं हुई थी, सर से हुई थी, पर मेरा जो एक कॉल जनवरी में लगा था।
0: अच्छा चलिए, आप कहाँ से हैं आप?
1: मैं काजी कमालपुर से बोल रही हूँ, बेलगावा गांव से।
0: अच्छा कमालपुर।
1: जी काजी कमालपुर।
0: अच्छा और कैसा है वहाँ का मौसम इस समय?
1: मेरे वहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है, क्या हवाएं हैं,
0: बहुत ठंडा है
1: मौसम ठंडा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ऐसे मौसम में।
0: अरे वाह, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने बताई। मतलब इतने दिनों से आपके यहाँ गर्मी के बाद राहत मिली है कि मतलब अच्छा ही था?
1: क्या बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत काफी गर्मी पड़ रही थी, फिर बारिश हुई, हवा ठंडी ठंडी चल रही, तो बहुत सुकून मिला है।
0: अच्छा और
1: मुझे गाना सुनना है, रूठे तो रूठे ये सारा जमाना, इस किचनरिया और के दिल में आना।
0: जी इश्क चुनरिया आपकी पसंद का गाना हमने निकाल लिया है। और आप ये बताइए
1: जी,
0: आप कैसे सुनती हैं एफएम? फोन
1: मैं
0: पे?
1: तो रेडियो है ना, उसी से सुनते हैं।
0: और क्या करती हैं तरन्नुम जी आप?
1: कुछ नहीं, अपने घर पे रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, बस यही काम है।
0: शादी हो गई आपकी?
1: मेरी शादी हो गई, 4 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे एक लड़का है।
0: जी तो कुछ नहीं आपने ऐसे बोला, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका एक लड़का है और आप पाल रही हैं।
1: 3 साल का हो गया है।
0: जी घर
1: मेरे हस्बैंड और मेरा एक लड़का।
0: जी तो घर संभाल रही हैं आप, आप होम मेकर हैं और इससे अच्छी और इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है?
1: हाँ, बस घर संभालते हैं, खाना बनाते हैं, काम करते हैं, यही सब।
0: नहीं तो घर संभालना तो बहुत बड़ा टास्क है।
1: यही बस है मेरे पास।
0: चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी पसंद का गाना भी हमने निकाल दिया है। और कोई बात आपको कहनी हो?
1: और मैम मेरी वो बड़ी बहन है जिला सीतापुर पचेनापुर समा परवीन मस्जिद के पास से, उनको गाना सुनाना चाहते हैं। और मेरे भाई हैं फैज अंसारी।
0: अच्छा
1: और फिर आपको, अभी सभी सुनने वाले को।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरन्नुम जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर कभी आपसे बात होगी। तरन्नुम जी की पसंद का ये गाना हमने आपके रेडियो सेट पर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार किया है, लेकिन इसी गाने के साथ हम आपसे ये कहेंगे कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। प्रोग्राम हेलो एफएम को यहीं वाइंड अप करते हैं, अगली आवाज़ आपसे जुड़ने के लिए कर रही है आपका इंतज़ार। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप अनुमति, फिर कभी किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में आपसे बात होगी, आपके रेडियो सेट पर हम पहुँचेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति सामर्थ्य और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री ने लोक भवन में आयोजित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है और आज देश का प्रत्येक नागरिक नए भारत का हिस्सा होने पर गर्व महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जीरा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट पर संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष देश और प्रदेश में सुशासन, किसान कल्याण और जनसेवा के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हुए हैं। श्री सिंह आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैनेडी हॉल में आयोजित मेरठ, अलीगढ़ एवं आगरा मंडल के किसानों के सम्मेलन एवं औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है। सुल्तानपुर में आज 27वीं अंतर जनपदीय लखनऊ जोन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लखनऊ जोन के 9 जनपदों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान लगभग 110 खिलाड़ी महिला एवं पुरुष वर्ग की वॉलीबॉल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

और इसी खुले हुए दरवाजे से झरोखे से गुलशन में खुशबुओं में आए हैं हम नहा के, एक फूल ने हमें भी देखा है मुस्कुरा के। शाम से हवाएं थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हो चली हैं, सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी खो चुका है और वो जो सुनहरापन बिखरा था फजाओं में अब धीरे धीरे थोड़ा सा सुरमई हो गया है। गलियों की भीड़ धीरे धीरे सिमट रही है आगोश में और जो थकन है वो भी सिमटेगी, वो भी खत्म होगी, उसका भी वक्त आएगा और हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। मुस्कुराते हुए वक्त की शफाक दामन में बहुत सारी खुशबुओं की सौगात लेकर

खूबसूरत लफ्जों की रवानी के इस सफर में मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ। आप शार्मी कबूल कीजिए हमारा आदाब।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: सुना है लोग उसे आग भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं तुम्हारे शहर में। मुसाफिर थक तो गया है, तो बस इस थकन को भी ऐसे ही दूर किया जा सकता है शायद। सुना है उसको भी शेरो शायरी से है शकफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है जब से हमाइल है उसकी गर्दन में, मिजाज और ही लालो गुहर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रहे खान तमन्ना भी डर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। कहानियां ही सही, सब मुगालबे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। और जब कोई इस तरह की चीज देख ली है आपने, तो क्या बचा है बाकी और देखने को।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

लेकिन उस रोशनी में धीरे धीरे बहुत सारे चेहरे धुंधला गए और फिर गम को गले लगाने की आदत सी हो गई। गम को गले लगाने की आदत सी हो गई, दिल को फरेब खाने की आदत सी हो गई। जब से हुए हैं चांद सितारे भी बदगुमा, दागों को टिमटिमाने की आदत सी हो गई। जहन में सुलगते अनगिनत ख्वाबों की तरह जिंदगी की राहों पर इंसानों का रेला तो है, लेकिन इस कयामत खेज भीड़ के बीच भी ये मन बिल्कुल अकेला हो जाता है। लेकिन अगर मन ईमानदार है तो यकीन जानिए, इस तन्हाई को चीर कर कोई आएगा और आंखों में लिखी हुई तहरीर पढ़कर सुलझा देगा उलझा हुआ हर धागा। और तब तुम उसे रोक लेना, जाने मत देना, गले से लगा लेना उसे। आठ बजकर 28 मिनट और 45 सेकेंड हो रहे हैं। सोचता हूं कि जमाने से किनारा कर लूं और अब इसके सिवा दूसरा चारा भी नहीं। क्या करूं जी के जमाने में कि अब तेरे बगैर एक नाकामी मोहब्बत का गुजारा भी नहीं। आप शार सुन रहे हैं, आप 100.7 FM रेनबो पर अनवारुल हसन के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

कोई आया नहीं है, लेकिन इंतजार जो है वो कभी खत्म नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीद है तो इंतजार है, उम्मीद है तो धड़कन भी है, उम्मीद है तो खुशियां भी हैं, उम्मीद है तो जिंदगी भी है, उम्मीद है तो ईमान भी है। तो बस इस उम्मीद को

भी जाया मत होने दीजिए, बने रहने दीजिए उस धड़कन की तरह जो आपके रग रग में धड़कता है। वो इंतजार और पूरा भी होगा आपका इंतजार। 8:40 और 47 सेकंड हो चुके हैं। थोड़ी देर में हम समाचार संध्या के लिए आपको दिल्ली ले चलेंगे, लेकिन 9 बजे लौट आएंगे पॉप टाइम के साथ। और जब 10 बजेगा तो फिर एक खूबसूरत एक महक आप तक पहुंचेगी रजनीगंधा की, यानी देर तक और दूर तलक चलेंगे आपके साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए आबशार से अनवारुल हसन को, लौटते हैं बहुत जल्दी। शब्बा खैर।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण

0: यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से

0: से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों

0: पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी 9 बज चुका है, 9:01 भी हो गया है और प्रोग्राम पॉप टाइम लेकर मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपसे मुखातिब हूँ। और इससे पहले कि कुछ चुलबुला सा कुछ पहुंचे आप तक, उससे पहले आपके जो मेल है उसका सिलसिला आपने पहले ही शुरू कर दिया है। आपको मौका मिलता है पूरा इस प्रोग्राम में शामिल होने का, हमारे साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का, और वो होती है आपके जो मेल हम तक पहुंचते हैं उसके ज़रिए। और वो लोग जो अभी तक कभी उन्होंने मेल नहीं किया और मन कर रहा है, मचल रहा है, तो सारी शर्म हयात छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है अरे लोग क्या कहेंगे, अरे तो वहाँ मेल, अरे देखिए कितने सारे लोग मेल करते हैं, तो fmakashwani@gmail.com पर आप भी मेल कर सकते हैं और आपका खूबसूरत सा जो भी पत्र हम तक पहुँचेगा वो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे योगेंद्र कुमार जी का मेल सबसे पहले प्रकट हुआ। गुड इवनिंग लिखते हुए उन्होंने कहा कि बेहतरीन गज़ल, मतलब वो गज़लें सुन रहे थे अभी से पहले, तो उन्होंने इसकी तारीफ़ कर दी है। मुजफ्फरनगर से आपने हमारी तारीफ़ की है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगे, आपको गज़लें भी पसंद आती हैं और आपको हर तरीके के प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। अगला मेल सुल्तान रज़ा साहब का है और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अनवारुल सर, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हमारी मम्मी ने हलवा और पूरी, देखिए प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं हो, खाने का टाइम हुआ नहीं हो, आपने हमारी जो है क्या कहते हैं, अब बताइए हम क्या करें, अगर खाने पीने की बातें होने लगेंगी तो फिर कैसे बातें आगे बढ़ेंगी, ललचवा रहे हैं आप मुझे। हलवा और पूरी बनी है, चलिए मैं पढ़ दूँ पहले। आपसे गुजारिश है क्या बरेली तो अभी अच्छा अच्छा आप कह रहे हैं कि क्या हलवा और पूरी की महक क्या आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। देखिए महक पहुंचे ना पहुंचे, आपने फ़ोटो जो भेजी है हमारे पास उसमें क्या लिखा है पहले हम वो पढ़ दें। और आपने लिखा है कि हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, उजाले मेरे दर पे शोर मचाया करते थे, उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को, जिस दिए को हम हवा से बचाया करते थे। भाई वाह क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात आपने लिखी है। फिलहाल आपका लेटर आगे तक का पढ़ देते हैं। खुशबू तो हमें लग तो नहीं रही है, अब कहे को झूठ बोले हम बेवजह में कि हाँ बड़ी खुशबू आ रही है। अब आपने खिड़की दरवाजे बंद करके रखे हैं कि कहीं बाहर खुशबू लग गई तो पड़ोसी आ जाएंगे, हैं तो दरवाज़ों को खोल दीजिए, खिड़कियाँ खोल दीजिए, खुशबू लेने दीजिए और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए, तो हम मान लेंगे कि हमने खा लिया, हम तक पहुंच गई। वैसे हमने भी सुबह जो है बताई नहीं जाती हैं ऐसी बातें, फिर भी हम बता ही दे रहे हैं क्योंकि अब तो हम खा चुके हैं। सुबह हम भी जलेबी लेके आए थे, जलेबी और दही हम खा चुके हैं, है ना, तो अब हमें कोई लालच वाली चीज़ जो है हमें ना आप दीजिएगा, वरना हमने एक चीज़ और खाई थी अभी बताई नहीं, फिर हम वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, तो वो नाम ले लेते हैं जो आपने साथ में लिखे हैं, सुल्तान इकबाल रज़ा, अफजल रज़ा, मोनिस रज़ा, सादिक रज़ा, ज़ीशान रज़ा, मम्मी पापा और पूरा रज़ा परिवार। अच्छा ये कह रहे हैं कि पूरा रज़ा परिवार आपसे एक बात और पूछना चाहता था, हलवा पूरी होता है, खीर पूरी होता है, पानी पूरी होता है, लेकिन नींद पूरी क्यों नहीं होती। मैं तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, आपको पता होता तो हम पढ़ते ना धीम धीम हूँ करके पढ़ लेते, अब तो हम पढ़ गए। चलिए देखिए कोई ना कोई बताएगा कि नींद पूरी क्यों नहीं होती, तो नींद भी पूरी हो जाएगी। सवाल अच्छा है भाई, वाह मज़ा आया पढ़ के, वैसे मुझे बढ़िया बात आपने लिखी। और ऐसी कोई बातें अगर हमारे दो और भी श्रोता है उनके पास तो ज़रूर हम तक पहुंचा दीजिए। गुड इवनिंग सर मैम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। ये सर मैम यानी एक लिख के इन्होंने रख लिया है, ये अपना वही चेप देते हैं बार बार, इनको मतलब थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया और तुरंत हमको भेज दिया। लेकिन फिर भी इस मेहनत का भी हम सम्मान करते हैं और हम ज़रूर पढ़ते हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं और आपने हमें ये जो है मेल किया है। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। विवेक कश्यप फ्रॉम सिसैया दरियाना पोस्ट खथोरा ज़िला सीतापुरम, उम्मीद है कि मैंने सही पढ़ा होगा, रोमन में लिखा होता है तो कभी वो गलती हो जाती है, गलती हो जाए तो माफ़ कर दिएगा, देखिए शिकायत ना करिएगा, गलती जानबूझ के हम नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम पॉप टाइम भैया अनवारुल हसन भाई जी के साथ, ये हेडिंग पड़ी हुई बड़ी मोटी मोटी, फिर लिखा है कि आदरणीय भैया जी सादा सलाम, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जो है बच्चों को अलग रखें, बच्चों को काम ना करना पड़े हमारे जो है हमारे देश में, और हम उनके लिए ऐसा

वातावरण बनाए। मजबूरी में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, भले ही हम कोई भी दिवस मना लें, अब मैं इस पर जाना नहीं चाहता। आबशार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और हम दोपहर को ही जान गए थे कि आप आ रहे हैं, तब से हमें बहुत बहुत इंतज़ार था, अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। सभी परिवार के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम भी बड़े अब बहुत ही इत्मीनान से बैठे हैं, पानी आनी पी के, है ना। प्रेषक हैं विजय पाल यादव, समस्त परिवार ग्राम वपोस ललहुआ जिला खीरी से। भाई वाह, अच्छा एक लेटर और पढ़ लें, एक मेल और पढ़ लें, क्योंकि मेल आना शुरू हो गए, बहुत सारे आ गए हैं। रेनबो कैफे पेश करने वाले, आज जो है आप पॉप टाइम सुन रहे हैं, आप ये कार्यक्रम मैं रोज़ सुनता हूँ, इस कार्यक्रम के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। और ये पूरा अंसारी परिवार है, शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान भी साथ में इनके, सुनते हैं तो बस बढ़िया सा एक गाना पहुँचा देते हैं। देखिए मुझे बहुत पसंद है भैया ये गाना, आपको भी अच्छा लगेगा, ना अच्छा लगे तो पैसे वापस।

जी नजर से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, चुनरिया ओढ़ लेते हैं कुछ लोग काला टीका लगा लेते हैं, और सिर्फ नज़र से नहीं बल्कि जो थोड़ा सा माहौल, अभी तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया लेकिन मौसम जो अपनी थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे लोग, तो उसमें भी लोग चुनरिया ओढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा हवा हवा गर्म जो है वो उससे बचाव हो जाता है। तो बस अपना बचाव ज़रूर करके रखिए और पानी वानी ठीक से पीते रहिए। कभी कभी ये मौसम थोड़ा सा ठीक होता है तो हम पानी भी नहीं पीते, कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और हम एकदम से गर्मी से आते हैं और पानी पी लेते हैं, वो भी हमें नुकसान कर जाता है। और आजकल जो डॉक्टर्स हैं ख़ासतौर से जो गली मोहल्लों में क्लिनिक होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा मरीज़ जो है वो इसी तरीके के, किसी का गला ऐसे ख़राब है, कोई खांस रहा है, तो बस इस सबसे बचाव का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम खुद का ख्याल रखें। और अगर आप एसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत एसी से निकल के धूप में मत जाइए, थोड़ा सा इस सब का भी ख्याल कीजिए। अगर गाड़ी में आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहाँ पर आपको रुकना है उसे थोड़ी देर पहले अगर एसी बंद कर देंगे आप, तो फिर थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो बाहर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों से भी बचाव हो जाएगा, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो बस आपके पत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी आपके जो मेल हम तक पहुँचे हैं, क्योंकि अब तो इस वक्त तो झड़ी लग चुकी है, बहुत ज़्यादा हम तक मेल आ चुके हैं। अगला मेल रामराज जी आपका है। श्री गणेशाय नमो, आपने लिखा है पॉप टाइम, ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीज, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। पहुँच भाई, ये अच्छी बड़ी बात है कि आपने आशीर्वाद भी दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। रामराज जी ने हमें ये मेल किया, हम स्टार करते चले जा रहे हैं आपके मेल ताकि गलती ना हो दोबारा या कोई मेल छूट ना जाए। मोहम्मद आसिफ साहब आपका भी मेल आ चुका है। मोहम्मद आसिफ की आईडी है लेकिन आपने नाम लिखा है मोहम्मद आतिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से आपने आप इस प्रोग्राम को सुना और आपने लिखा कि जमशेद भाई अस्सलाम वालेकुम। जमशेद भाई तो भैया यहाँ पर नहीं है, चलिए हम अगर सुन रहे होंगे तो वालेकुम सलाम कह देंगे, नहीं तो हम उनकी तरफ से आपको कह देते हैं। बहुत दिन बाद आप आए हैं, पॉप टाइम बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और पिछला प्रोग्राम जो आपने आबशार सुना है वो भी आपको अच्छा लगा है, और कुछ गज़लें ख़ास तौर से कह रहे हैं कि मैं रहने वाला राजा कटरा पोस्ट अहमदपुर ज़िला बाराबंकी का हूं और आपका प्रोग्राम सुनने के लिए मैं अभी भी शॉप पर सुन रहा हूं। तो ज़रा ध्यान से नहीं सुन रहे हैं आप, आपने हमारा नाम नहीं सुना है, क्योंकि जमशेद भाई देखिए आज नहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना। और आपने साथ में ये भी लिखा है कि कौन सी गज़ल आपने जो हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह गज़ल बजा दी, वो बहुत अच्छा लगा और आप बहुत लाजवाब करते हैं। तो चलिए जमशेद भाई तो लाजवाब करते हैं, इसका मतलब आज हम भी लाजवाब कर रहे हैं। चलिए देखिए मुझे खुश होने का एक मौका मिल गया, अब आप पता कीजिएगा मेरा नाम किसी से या प्रोग्राम सुनते रहिएगा तो हो सकता कि हम बताएंगे कि हमारा नाम अनवर हो, अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। ऋषभ यदुवंशी जी आपका भी मेल आ चुका है। आशु ऋषु, और आपने एक फरमाइश लिखी, भाई फरमाइश वाला प्रोग्राम नहीं है देखिए ये, हम वैसे अच्छा बजाते हैं, हाँ नहीं तो। जावेद अख्तर साहब आपका भी मेल हम तक पहुंच चुका है, 10 मिनट पहले आपने ये मेल किया है, दिखा रहा है हमको 9:05 पर। अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हसन भाई, आज का आबशार प्रोग्राम सुना बहुत ही अच्छा लगा, रूह को ताजगी, दिल को सुकून मिल गया है, क्या बात है। पॉप टाइम प्रोग्राम में आपका हंसमुख अंदाज इतना हसीन लगता है कि सुनकर दिन भर की थकान दूर हो जाती है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से ये मेल हम तक शमशुल कबर राही और बेगम रुखसार आप दोनों ने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, और यूँ ही खुश रहिए। बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि बस आप हमेशा गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। डियर आर जी अनवारुल हसन जी नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार आपको। कृष्णकांत सिंह जी ने कैसरगंज बहराइच से ये मेल किया है। आय हाय हाय, क्या बढ़िया से खूबसूरत से गिटार और सितार और पता नहीं क्या क्या बना के भेजे हैं, फूल भी हैं, गुलदस्ते भी हैं और गुला क्या कहते हैं गुब्बारे भी हैं ना। लिखते हैं कि पॉप टाइम प्रोग्राम जैसे ही शुरू होता है ऐसा लगता है जैसे सिंदूरी शाम के समय किसी म्यूजिकल पार्टी में बैठे हों। आए हैं क्या बात है, क्या स्क्रिप्ट लिख दी है आपने, तो कभी कभी लिख के भेज दिया करिए, हम मना करेंगे तो हम आप ही की स्क्रिप्ट पढ़ दिया करेंगे। आप जब अपने शेर व शायरी से प्रोग्राम में और ज़्यादा रोचकता लाते हैं तो बेहद पसंद आता है। एक घंटा कैसे निकल जाता है इस मस्ती भरे प्रोग्राम को सुनकर पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता

नहीं चलता, ये सही बात है, और हम लोगों को पता नहीं चलता, इतने काम होते हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ बोलने के साथ साथ ये लिखो तो वो लिखो, तो ये भरो तो वो भरो, है ना, वो पानी अलग पीते जाओ, हम पानी पता है आपको पीते रहते हैं बैठ बैठ के, है ना, तो उसमें भी मेरा टाइम बहुत जाता है। रजनीश पासवान जी आपका भी मेल आ चुका है और लिख रहे हैं कि रजनीगंधा का इंतज़ार है। आए हाय क्या बात है, देखिए अभी से इंतजार कर रहे हैं रजनीगंधा का, 10 बजे शुरू होगा भाई, 10 बजे शुरू हो नहीं होगा बल्कि 10:02-03 पे शुरू होगा, क्योंकि 10 बजे तो समाचार पढ़ेंगे, उसके बाद रजनीगंधा करेंगे हम, है ना। और लॉट्स ऑफ लव सर सादत, अरे भाई चरण स्पर्श नहीं भाई, खुश रहिए आप, बस गले से लग जाइए, आप पास होते तो गले से लगा लेते आपको, आपने मुझे शोमैन की उपाधि दे दी है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए भी। पवन कुमार जी आपका भी मेल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक कहते हैं गौनवी का क्या कहते हैं पता नहीं, गाना बजाते हैं। नमस्ते सर, मैं पवन कुमार ग्राम सिंहपुर सुदौली सीतापुर से, सर आप कैसे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक गाना कौन सा बजाना था, ये वाला, अरे अभी तक एक ही गाना बजा भैया, तो ये वाला गाना बजा रहे हम, डांस मेरी रानी वाला, देखिए आ गया।

भाई कितनी बुरी बात है ये, देखिए कि रानी भी बता रहे हैं उनको और डांस डांस डांस नाच ना, रानी से कौन कहता है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि डांस करो नाचो, है ना। हमें नहीं पसंद ऐसे गाने, नहीं तो 9:20 हो गए। चलिए आपके बहुत सारे मेल और भी

तक पहुंच चुके हैं। अरे बहुत ज़्यादा है भाई। ये कौन है? रजनीश पासवान जी, डिनर फॉर यू। आपने डिनर, अरे वाह, खाना भेज दिया है। बताओ कितनी अच्छी रोटी बनी है, भरता वरता भी है आलू का इतना अच्छा, और ये दाल, वाह वाह क्या दाल बनाई है, और चटनी उटनी रखी है क्या, और नींबू भी है। जगदीशपुर खुर्द से ये भाई खाना आपने मुझे भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो इसी में खुश हो गए, थोड़ी थोड़ी देर में इसको देख लिया करेंगे। इस मेल को हम अलग एक विंडो में खोल रहे ले रहे हैं, और जब रात 10 बजे वाला प्रोग्राम करेंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में इसको देख लेंगे, तो एनर्जी बनी रहेगी। ताली वंसारी ने हमको मेल किया राजा कटरा बाराबंकी से, वेलकम अनवारुल सर जी, लिसन नाउ और गर्दा वाला प्रोग्राम, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। सुधांशु जी का भी मेल आ चुका है, राधे राधे। सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप बहुत दिन बाद आए। हम बुलाते तो हम पहले आ जाते हैं, नहीं तो आज कभी गुड मॉर्निंग लखनऊ में भी आइए। सर मैं दिन भर रेडियो नहीं बजाया क्योंकि हमारे गाँव में एक लोगों को करंट लग गया था और कोई दुर्घटना भी हो गई, और बुरी खबर भी आपने लिखी है, चलिए भाई सो सॉरी, और इसीलिए आज आपने रेडियो बाजा दिन भर नहीं बजाया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे ही हूँ जैसा बस आप हमें छोड़ गए थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के लिए अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं आपने भेजी हैं, चलिए हमने पल दी हैं, आपने भेजी हैं तो, है ना। और अगला मेल पल देते हैं वैभव प्रकाश जी का। आपकी आवाज़ और अंदाज के भूखे हम सभी के प्यारे आरजे को और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आजकल हम FM को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में आपसे मिलकर सारी कभी पूरी हो जाती है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव प्रकाश सिंह जी ने नागपुर से, महाराष्ट्र से हमें मेल किया है, और आपको चीज़ें पसंद आती हैं, और ख़ासतौर से अगर मेरी बात आप कर रहे हैं तो हम इसके लिए शुक्रिया आपको कहते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। बाबू अंसारी साहब आपका भी मेल आया है, अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से, देवकाली भी है ना। अस्सलामुअलैकुम माय डियर अनवारुल हसन सर, कैसे हैं आप? प्रोग्राम बिल्कुल हनहनवा लग रहा है, और कुछ मेरे रेडियो दोस्त हैं उनका भी नाम ले लीजिएगा, भाई आपने लिखे हैं बिल्कुल ले लेंगे। कुलदीप गुप्ता, फैज़ अंसारी, महेंद्र दीपन जी, आई लव आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये प्यार मोहब्बत जो आकाशवाणी से है, जो रेडियो से है, जो रेनबो से, इसको ऐसे ही बना कर रखिए प्लीज़। और अगला मेल है विनीत कुमार जी का, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले अनवारुल हसन जी को स्वीट स्वीट गुड इवनिंग। आपकी बोली बड़ी मीठी है, बोलते हैं तो फूल जलते हैं, हमें तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ रजनीगंधा में तो रजनीगंधा के फूल लाएंगे हम। आज सुपरहिट आप सुपरहिट प्रोग्राम करते हैं सर, दो लाइन ही मेरी तरफ से आपके लिए, हंसते रहें आप हज़ारों के बीच में जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में, और हमारे भाई बहन ईमेल भेजते रहें FM आकाशवाणी लखनऊ के बीच में। और आज़ाद सिमरी में ओमकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, क्षमा परवीन अंसारी सीतापुर से, संतोष मौर्य हरदोई, ममता हरदोई से, संजय अतरौली संडीला, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, इन लोगों के भी नाम आपने लिख दिए हैं। गुलफशा सिद्दीकी आपका भी मेल पढ़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वारुल भाई, मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीला से, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई इसके लिए। हमें कोई अवार्ड वार्ड नहीं मिलना चाहिए इसके लिए, इतनी तारीफ़ें आ रही, बताइए सब बेकार जा रही हैं आपकी तारीफ। बहुत अच्छा, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। पहले ये बताइए कि आप इतने दिन से गायब कहाँ थे, प्लीज़ जल्दी जल्दी आया करें। हम तो कई चक्कर लगाए यहाँ, ये स्टूडियो ही नहीं खाली था, यहाँ कोई और दो बैठा उसको थोड़े हटा देंगे हम, नहीं तो करिए आया करिए। साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, क्षमा परवीन, रोशनी रावत, बबीता राव, हम सब सुन रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सब सुन रहे हैं। महेंद्र दीपन जी आपको भी पढ़ देते हैं, आपका भी मेल आ चुका है, सादर प्रणाम, आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं महेंद्र दीपन गांव रूड़ जिला नागौर राजस्थान से हूँ, और आज भी हमारा पसंदीदा प्रोग्राम रेनबो कैफ़े पूरी शिद्दत से सुन रहे हैं। वैसे आज पॉप टाइम आप तक पहुंच रहा है, आपकी प्रस्तुति हमेशा की तरह आज भी लाजवाब है। सर आज मेरे घर पर एक छोटा सा खुशनुमा प्रोग्राम रखा है, घर में मेहमान आए हुए हैं, और हम सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट, अब कुछ खाने पीने की बात होगी, देखिए।

पनीर की सब्जी, स्पेशल दाल बाटी बनाई गई है। मेहमानों की खातिरदारी में थोड़ा व्यस्त ज़रूर हूँ, लेकिन आपके इस शानदार प्रोग्राम को मिस करना मुझे मंजूर नहीं था। सर जी, दावत का आनंद तो तभी दोगुना होगा जब आप भी हमारे साथ इस मेहमान नवाजी में शामिल हों। हालांकि आप दूर हैं, लेकिन आपकी आवाज़ हमारे घर के सेलिब्रेशन में चार चांद लगा रही है। और आपने जो ये फ़ोटो भेजी है, आय हाय हाय, पनीर की सब्ज़ी है, पनीर की सब्ज़ी है, पता नहीं क्या क्या पड़ा, क्या कलर आया है भाई, वाह, कौन बना रहा है इतना अच्छा खाना आपके यहाँ। बहन जी, बहुत खूबसूरत खाना है, यानी स्वादिष्ट तो होगा ही होगा, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। एक मेल और पढ़ देते हैं भाई। और ये मेल हमारे पास लालपुर सीतापुर से अयोध्या प्रसाद जी ने हमको भेजा है, और साथ में जगमोहन जी भी हैं, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और इन्होंने बहुत धीमा से, जैसे कोई धीमी आवाज़ में कहता है, ऐसा लग रहा है मुझे, इस तरीके से लिखा है, कह रहे हैं कि हमारी पत्नी का भी नाम ले लीजिएगा, हमारा नाम तो बार बार जाता है, वो फिर हमसे नाराज़ हो रही हैं कि ये तो आप ही का नाम लिया जाता है, हमारा नहीं लिया जाता, तो आप क्यों नहीं लिखते थे अभी तक मेल, अब आपने मेल में नाम लिखा है तो हम बिल्कुल लेंगे। कुसुमा देवी जो हैं आपकी पत्नी हैं, और उन्होंने कहा है कि आप इनका नाम ज़रूर ले लीजिएगा, तो हमने देखिए नाम ले लिया है कुसुमा जी का भी। और एक बात और ये कह रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी, कह रहे हैं कि कुसुमा जी से कह दीजिएगा कि पानी ज्यादा पिया करें। लीजिए भाई, कुसुमा जी पानी पिया करें, देखिए हम भी पानी पीते हैं, ये गाना बजाएंगे और हम पानी पहले एक घूंट पिए, गला तर कर लेंगे अपना, है? तो ये वाला गाना सुनिए, ये वाला बढ़िया सा गाना बजा रहे हैं। 9:27:36 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम इस वक्त पॉप टाइम अनवारुल हसन के साथ।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खबर।

0: गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: जी 9:33 हो चुके हैं और मैं सोच तो यही रहा था कि इस प्रोमो के बाद एक गाना आप तक सीधे पहुंचा दिया जाए, लेकिन आपकी जो भागीदारी है वो इतनी बढ़ती चली जा रही है कि मुझे लगा कि अगर मैंने एक गाना यूं ही बजा दिया तो फिर आपके ये जो मेल इतने खूबसूरत से हम तक पहुंच रहे हैं इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या में इस वक्त वाकई बहुत ज़्यादा हैं। इंद्रपाल जी आपको पढ़ देते हैं। अनवारुल भैया को प्यार भरा नमस्कार, आपकी मीठी बोली के कारण कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है। प्रस्तुत करने का ढंग बहुत ही निराला गज़ब का है और ये ग्राम अमृता मोहली सीतापुर से आपने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मेल के लिए और इस तारीफ़ के लिए भी। और आपका एक मेल और भी आ गया, चलिए एक मेल हमने पढ़ दिया तो आगे हम बढ़ जाते हैं। वकील अहमद साहब, हम आपका मेल पढ़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लगता है, गाने अच्छे बज रहे हैं। हमारे बारिश होने से, अच्छा आपके यहाँ बारिश हो गई यानी मौसम अच्छा हो गया है, और गज़ल हम तेरे, अरे ये तो 8 बजे बजाई थी हमने, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, आपको अच्छी लगी तो आपने अभी तारीफ़ कर दी। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, ज़िला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी और गुलफशा सिद्दीकी और एवन नवाब, ये नाम आपने साथ में लिखे हैं। शैलेश कुमार जी, आपका मेल नीलू शर्मा का मेल है ये। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, अनवारुल सर को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। यासिर भैया, संदीप भैया, स्नेहा, सोनी, सारा, पीहू, रोशनी, बबीता, आरती, मनु, वंदना, कौसर, पूर्णिमा, गुलफशा सिद्दीकी, जीजी को मेरा नमस्कार बोल दीजिएगा। आए है क्या बात है भाई, नमस्कार जिनको आपने बोला है उनको सबको नमस्कार आपकी तरफ से बोल दिया है। कुछ और भी बताइए ना, कुछ और नहीं बताया है। अच्छा एक चीज़ और इससे मुझे याद आ गई, अभी एक मेल में मुझसे जो रह गई थी इससे ठीक पहले, जो मैंने जो आखिरी मेल पढ़ा था लालपुर सीतापुर से अयोध्या प्रसाद जी का, उन्होंने बताया था कि वो जो नींद वाली बात थी ना, कि नींद जो है पूरी नहीं होती है वाली बात जो थी, तो उन्होंने उसका जवाब मुझे दिया था उस मेल में और वो मैं भूल भी गया था। वो कह रहे हैं कि अगर मोबाइल को थोड़ा सा माइनस कर दें, थोड़ा सा हटा दें, दूर अपने से रख दें, ख़ासतौर से रात को, तो नींद भी पूरी हो जाएगी। तो जो

पानी पूरी और सारी पूरी और हलवा पूरी और ऐसे है ना, हलवा पूरी और ये ऐसे नींद भी पूरी हो जाएगी। तो बस ये बात मुझे अच्छी भी लगी, इसीलिए मैंने छूट भी गई थी ये बात, मैंने फिर से दोहरा दिए। ईमेल द्वारा फरमाइशी गाने, भाई फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, आपने एक इसमें हेडिंग डाल रखी हुई है, गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का ये मेल हम तक पहुंचा है और इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाने एक साथ फरमाइश कर दी है। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, आगे टिक कर देते हैं इस मेल को कि हमने इस पढ़ लिया है, नाम तो आपका ले ही लिया मैंने। अजय कुमार सिंह जी ने हमको ये मेल किया है और ये सीतापुर से आपने मेल किया है, लिखते हैं कि गुड इवनिंग प्रिय आरजे, कैसे हैं आप? सर प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना सुकून मिल रहा है आपकी आवाज़ सुनने से और मौसम भी सुहाना। अरे वाह, हमारी आवाज़ से मौसम भी सुहाना हो गया, हमारे घर में नहीं होता है मौसम सुहाना हमारी आवाज़ से, बल्कि हम बोल दें ना तो मौसम और थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बाद हमें जाना भी है, ना जाना होता तो पता नहीं क्या क्या बता दें आपको हम, ठीक है? अब इस पे बात ना करिएगा, अब आप ये सोचिए कि बिल्कुल आपने कुछ नहीं सुना, ठीक, और हमने कुछ नहीं कहा ऊपर से। तो अजय जी आपका मेल पढ़ देता हूँ, आगे लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम और भी सुहाना बना देता है और गाने बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, 12 बजे तक रजनीगंधा सुनने के लिए हम लोग बेताब हैं। तो चलिए भाई हमारे साथ रहिएगा, बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ रहेंगे, इससे हमें डर नहीं लगता है, लगता है कोई तो है जो बैठा है हमारे साथ सुन रहा है। मोहम्मद अफजल साहब का मेल है, अफजल शायद आपका नाम है, और फर्रुखपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर ज़िला सीतापुर से आप लिख रहे हैं और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, लिख रहे हैं कि भोजपुरी गाना हो जाता तो और मज़ा आ जाता। तो भैया आज क्योंकि पॉप टाइम है ना, तो सैटरडे या अगर ट्यूसडे यानी मंगलवार या शनिवार का दिन होगा तो उसमें आपको भोजपुरी गाना भी ज़रूर सुनने को मिलेगा, है ना? जितेंद्र नामदेव जी आपका भी मेल आया हम तक, साथ में बबलू नामदेव जी हैं, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, सौम्या नामदेव जी हैं और आप ने लिखा है कि सर का प्रोग्राम का आगाज़ बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और सभी गाने बेमिसाल हैं। ग्राम वापोस खंडौदी ज़िला शहडोल मध्य प्रदेश से आपने लिखा है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वहाँ से भी हमें सुन रहे हैं। आप हमें न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से काफ़ी दूर तक, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर इंटरनेट मौजूद है तो आप हमें सुन सकते हैं और उसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, तो फिर आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से हमें ज़रूर सुनिए। गाना हम ये वाला बजाएंगे क्योंकि मौसम अच्छे वाली बात अभी कही है इन्होंने, तो देखिए आ गया, हवा की आवाज़ आ रही है, ता दिन दिंदा हवा चल रही है, चटनी अटनी पिस रही है लगता है आम की, देखिए

चलिए ऐसे खुश रहिए, मगन रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 9:43 और 23 सेकंड भी हो चुके हैं पॉप टाइम में। जो अगला मेल मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो रोशनी रावत जी आपका मेल है। बड़े खूबसूरत से कलर आपने इस्तेमाल किए हैं, उसमें ब्लैक तो है ही, साथ में रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और चाय की प्याली भी है, चाय का कप भी है ना। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड अनवारुल हसन सर जी, आप कैसे हैं? आप शायद प्रोग्राम बहुत लाजवाब लगा, पॉप टाइम में गर्दा उड़ा दिया है। मुझे कल रात 12 बजे से आपका इंतजार था। जैसे ही सर जी सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट देखी और पता चल जाए कि हमारे फेवरेट सर जी आने वाले हैं, फिर तो बेसब्री से इंतजार हो जाता है। जी हाँ, मैंने कल रात में 12 बजे अपडेट कर दिया था। जैसे ही आप शायद यहाँ ख़त्म हुआ और मैंने वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया कि कल का। ठीक सर जी, अपने परिवार के साथ कभी चंडीगढ़ आइए। एक बार आए थे हम, चंडीगढ़ से होकर ही वहाँ से मनाली गए थे, तो चंडीगढ़ भी आना हुआ था। यहाँ घूम जाइए, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो चलिए, कभी अब दोबारा कभी आना होगा तो आपको धीमे से बता देंगे। घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, और कह रहे हैं कि हम आपको ले चलेंगे और आपके बहाने हमें भी बहाना मिल जाएगा घूमने का। ये तो बिल्कुल सही है, बहाने से बहाना मिल जाता है। मेरा नाम रोशनी रावत है, गांव बहमना, तहसील सफीपुर, ज़िला उन्नाव, चंडीगढ़ में रहते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बबीता राव, नीलू शर्मा दीदी, गुलफशा दीदी, साजिया जी, साहिबा जी को मेरा सलाम बोल दिएगा। भाई उन्होंने सुन लिया है, क्योंकि वो सारे लोग ज़रूर सुन रहे हैं, क्योंकि उनके जिनके आपने नाम लिए मेल हम तक पहुँचे हैं। गांव के बाहर बैठे दोस्तों के साथ पॉप टाइम का भरपूर आनंद ले रहा हूं, और जैसे हम सब लोग किसी पार्टी में बैठे हों ऐसा लग रहा है। नमस्ते मेरे फेवरेट हंसमुख अनवारुल सर जी, ब्रजेश सिंह दीपू टहुआ कैसरगंज बहराइच से लिख रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है। चलिए ऐसे आनंद लेते रहिए सबके साथ, बहुत अच्छी बात है। एक और मेल आया है और इसमें कुछ ये देखिए खाना भेज रहे हैं, हम बता भी नहीं सकते क्या भेज दिया है। मोहम्मद आसिफ साहब आपने हैदराबाद से हमको, प्याज के छल्ले दिख रहे हैं, नीचे चावल दिख रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। मोहम्मद शादाब खान साहब आपका भी मेल आ चुका है। चलिए शुक्रिया इस खाने पीने की चीज़ों के लिए। हम रजनीगंधा के टाइम इन्हें देखते रहेंगे बीच बीच में, ताकि एनर्जी बनी रहे, फिर जाके घर में खाएंगे। मोहम्मद शादाब विलेज बेलई संडीला।

डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आपने मेल किया, अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। ऐसे ही इस भागीदारी को, इस मोहब्बत को बनाए रखिएगा। जल्दी से एवन नवाब, आपका भी मेल पढ़ देता हूँ। पुरखलूस आदाब सर, कैसे हैं आप? आबशार बहुत बेहतरीन था, जिसमें एक गज़ल मेरी सबसे पसंदीदा गज़ल थी, कल चौदहवीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। आपको बहुत अच्छी लगी और पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। रजनीगंधा में भी मैं आपके साथ बनी रहूँगी। सर एक खुशखबरी आपको देनी है, मेरा नया रेडियो आया है आज। अरे वाह क्या बात है, मिठाई खिलाई है तब तो। अब आप तो संडीला में वैसे भी मिठाई खिला सकती हैं, वहाँ पे लड्डू बड़े फेमस हैं, हमारी तरफ से खा लिए गए, हम चाहेंगे सोचेंगे हमने खा लिया। नीचे फोटो में कॉफ़ी बग में नींबू का शरबत है, आप हंस सकते हैं। मतलब हम हंसते हैं क्यों? अच्छा देखिए, रेडियो इन्होंने नया रेडियो के फ़ोटो भेजी है। वही वही वाह क्या बात है, बेहतरीन रेडियो है, लाल रंग की, उसमें बत्ती भी जल रही है, आह क्या बात है। और एक कप है कॉफ़ी का, जिसमें आप नींबू का शरबत पी रही हैं, शिकंजी पी रही हैं लगता बना के। चलिए फ़ायदेमंद भी है, ऐसे ही बनी रही है। एम के राज जी, आपका मेल भी पढ़ देते हैं। मनीष कुमार राज, भानपुर हरैया ज़िला लखीमपुर सीतापुर से आपने लिखा है, और रेनबो पॉप टाइम आप सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं। सर हम आपको एक जोक सुनाते हैं, वो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, देखिए हूँ करके कि इसमें आपने लिखा क्या है। हम पढ़ देते हैं, कहीं अगर कुछ आपत्तिजनक होगा तो वहीं छोड़ देंगे। देखिए हमारा एक दोस्त है, वो एक दिन हमसे बोला कि मित्र मेरे घर आने वाले हैं, हमारी अर्जियाँ लगवाइए, मगर ये सुधर नहीं रहा है। तो दोस्त ने जवाब दिया कि मम्मी जी चाहे जितनी लगवाओ अर्जी, मगर हम करेंगे अपनी ही मर्जी। भाई वाह क्या बात है, मर्जी यानी उसने नुक्ता नहीं लगा था तो हमने मर्जी बोल दिया उसको। आपका पक्का श्रोता, भाई वाह ये अच्छी बात है, पक्का और कच्चा भी। आपने ये नया एक देखिए एक उपमा दे दी है मनीष कुमार राज ने, और साथ में कुमार राज भी हैं, और ये पक्के वाले हैं, है ना, माने पक्के श्रोता हैं, ये भी इन्होंने बता दिया है। ज़ीशान खान साहब, आप कभी मेल पढ़ दें जल्दी से, फिर हम गाना बजाएंगे, क्योंकि मेल बहुत ज़्यादा आपके आ रहे हैं तो भाई पढ़ना भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम अनवारुल भाई, आई एम ज़ीशान खान संडीला से, इस वक्त बाहर सऊदीया में है। मुझे ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम करने का अंदाज़ क्या कहने, मज़ा आ जाता है जब आप बीच बीच में मस्ती करते हैं। हम मस्ती कहाँ कर रहे हैं, चटनी पीस रही थी वहाँ तो हमने बता दिया आपको, करते हैं तो सुनने में जो है सुकून मिलता है। और बता नहीं सकते कि आपको मैं और मेरी वाइफ जो है, अब समझ में आया कौन है आप, देखा इनकी वाइफ है गुलफिशा सिद्दीकी साहिबा अंसारी, जो वहाँ से जो मेल आता है, गुलफिशा सिद्दीकी आपकी वाइफ है और वो भी आपका प्रोग्राम सुनती है। अरे ज़ीशान साहब वो मेल भी करती रहती है हमको। और देखिए बस अब गाना आ गया, अपने आप बज गया है। लीजिए खाने पीने की बात आ गई, रोटी पानी खाइए और गाना सुनिए।

जी यहनी सिंह जी अपना भी नाम बोल देते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि आप सुन रहे हैं इस वक्त पॉप टाइम अनवारुल हसन के साथ, ऐसे ही वो भी अपने गाने के बाद साथ साथ अपना नाम बोलते रहते हैं। तो बस आपके जो बहुत सारे मेल आए हैं जल्दी से उनको भी हम कोशिश करते हैं कि पढ़ दें, ताकि आपकी भागीदारी भी जो है वो सुनिश्चित हो जाए, आपने मेहनत की है तो उसको भी हम पढ़ देते हैं। अगला मेल

जी यानी सिंह जी अपना भी नाम बोल देते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि आप सुन रहे हैं इस वक्त पॉप टाइम अनवारुल हसन के साथ, ऐसे ही वो भी अपने गाने के बाद साथ साथ अपना नाम बोलते रहते हैं। तो बस आपके जो बहुत सारे मेल आए हैं जल्दी से उनको भी हम कोशिश करते हैं कि पढ़ दें ताकि आपकी भागीदारी भी जो है वो सुनिश्चित हो जाए, आपने मेहनत की है तो उसको भी हम पढ़ देते हैं। अगला मेल है हमारे पास हर्ष शुक्ला जी का। नमस्ते सर, मैं अनुराधा शुक्ला विलेज गंगापुर गुलहरिया बहराइच से आपने हमें मेल किया और आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। साथ में इनकी जो है ननद जी भी सुन रही हैं, मंदाकिनी भी सुन रही हैं, गाने अच्छे लग रहे हैं और आपने एक फरमाइश की है तो फरमाइशी प्रोग्राम क्योंकि ये नहीं है इसलिए भाई हम आगे बढ़ जाते हैं। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं कि तुम्हारे दिल की गहराई में डूबा था तभी याद आया कि तैरना तो आता ही नहीं है। गाने मस्त, बातें सर चटपटी चटनी की तरह करते हैं आप, मौसम आज कोई ठंडा है। और ईमेल मोदीपुरम मेरठ से आपने भेजा है राजेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मेल किया है। चलिए हमारी तरफ से आप भी एक चटपटी चटनी के साथ आज खाना ज़रूर खाइएगा। और एक मेल और है गुलाब कश्यप जी आपका। हेलो डियर सर, मैं गुलाब कश्यप फ्रॉम ग्राम रामपुर पोस्ट हैदराबाद ब्लॉक औरा ज़िला उन्नाव से आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम मस्त लग रहा है और खाना सुन के अच्छा लगता है, खाना सुनकर तो हमें अच्छा लगता है। आप लोगों ने जो इतनी सारी खाने वाली तस्वीरें भेज के जो ललचा दिया है हमें, तो बस उनको जब रजनीगंधा का प्रोग्राम चलेगा ना तो उसमें बीच बीच में वो खाना देखते रहेंगे। और कुछ लोगों की याद आपको आ रही है, आपने उनके नाम लिखे हैं, एक गाना जल्दी से पहुँचा देते हैं और उसके बाद जो बचे हुए मेल हैं हम उनको भी शामिल करते हैं।

कंगा फतेहपुर, अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, गलती अगर है तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़ सर। मेरे कुछ दोस्तों को आप, अच्छा, आप अपनी आईडी कह रहे हैं। देखिए ये हम इसको बता नहीं सकते इस तरीके से, है ना, ये आपकी व्यक्तिगत आईडी है, हम अपनी भी आईडी नहीं बता सकते। मुझसे भी कई लोग पूछ रहे हैं मेल में कि आपकी आईडी क्या है, तो मैं कहता हूँ आप जाके सोशल मीडिया पे ढूंढ लीजिएगा तो हम आपको मिल जाएंगे। रणवीर गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमको मेल किया है। नवारुल हसन सर जी आदाब, शुभ संध्या, गज़लों का प्रोग्राम और पॉप टाइम सब कुछ आपको पसंद आया। ओखला संगम बिहार दिल्ली से आपने मेल किया है। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता भी साथ में शामिल हैं। वसंत कुमार सिन्हा जी का भी मेल हम तक पहुंच चुका है और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। कोमल तिवारी जी ने भी मेल किया है। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब मेल मत लिखिएगा प्लीज़, क्योंकि अब वक्त बचा नहीं है। योगेंद्र कुमार जी, आखिरी मेल आपका है जो आपने हमें चंडीगढ़ से ये मेल किया है। और मेरी सिस्टर रोशनी रावत हैं, अभी आपका प्रोग्राम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका ईमेल पढ़ने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस सब के लिए। और बस एक गाने के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं और बस उसके बाद समाचार होंगे और फिर एक खूबसूरत सी खुशबू आप तक पहुंचेगी रजनीकंधा की। इजाजत दीजिए अपने दोस्त अनवारुल हसन को, लौटते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार। विचार दो, विचार दो, विचार दो।

जी नोबल के छप्पन मिनट हो गए और इतनी तेज डांस मत कीजिएगा, आंतें उलझ जाएंगी। शिवप्रकाश जी आपका मेल पढ़ दें जल्दी से, क्योंकि तीन चार मेल और भी हैं। नमस्ते सर, मैं शिवप्रकाश तनोज टाई नोज

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। नमस्कार, रात के 10 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग PWD की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और अभियंताओं को सड़क निर्माण कार्यों में युद्धस्तर पर तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सर्किट हाउस सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वाराणसी मंडल में संचालित और PWD परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने विशेष रूप से बरसात से पूर्व पूर्ण होने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चंदौली में महिला कल्याण विभाग द्वारा मुख्यालय स्थित MCH विंग के विभिन्न वार्ड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत भव्य कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल में जन्मी 20 नवजात बच्चियों की माताओं और परिजनों में बेबी किट वितरित कर खुशियां मनाई गईं। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं और उनके परिजनों को महिला व बाल विकास से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिला कल्याण

के अधिकारियों ने नवजात बालिकाओं के अभिभावकों को सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जोरदार बारिश होने से जनजीवन प्रभावित है। वहीं आज प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। हालांकि सुबह तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि हुई, लेकिन दोपहर बाद मौसम अचानक बदल गया और आसमान में बादल छा गए। शनिवार को भी बारिश और आंधी पानी का अलर्ट है। मानसून के केरल में दस्तक देने के बाद आज शुक्रवार को साउथ वेस्ट मानसून पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में पहुंच गया है। पड़ोसी राज्य बिहार पहुंचने के बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाला है। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 गंभीर घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई है। हादसे का कारण कार की तेज रफ्तार बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही आसीवन पुलिस थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

राह आसान हो गई होगी, जान पहचान हो गई होगी, तेरी जुल्फों को छेड़ती थी सबा, खुद परेशान हो गई होगी। खिड़कियों के दरमियान से चुपके से फरिश्तों की तरह टपकती हुई ठंडी हवा पर्दों की हथेली पर सना हुआ महीन सा साया बिखेर देती है। शहर की सांसें अब धीमे धीमे कमजोर पड़ती जा रही हैं। नींद की आगोश में समाने के लिए अपने आरामगाह की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। किसी मसरूफ गली में दीवाने खामोशी के नगमे गुनगुनाते हैं। चांद की नाजुक रोशनी खिड़की के कांच पर जम जाती है और कमरे की दीवारों पर सुलगते हुए अरमानों के नक्श छोड़ जाती है। मोहब्बत और वादे निभाने के खातिर हम फिर लौट आए हैं। 10:05:23 हो चुके हैं। रजनीगंधा आज आप सुनने वाले हैं, बस शुरुआत कर रहे हैं अनवारुल हसन के साथ। स्वागत है सफर में। नमस्कार।

बस कोई तो बहाना चाहिए जिंदगी में खुश रहने के लिए। कभी तुम आ जाओ ख्यालों में और मैं मुस्कुरा दूं, और तुम नहीं होती हो तो ये मुस्कान भी बेरंग हो जाती है। कभी तेरे दिल में ठहर जाऊं, कभी रुक जाऊं, बस तुम एक बार इजाजत दो तो। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में ठहर जाऊं, हाँ मुझे इश्क है तुमसे। बताओ मेरे दिल की ये कहानी कितनी आसानी से पहुंच जाएगी तुम तक। कभी कभी मुश्किल भी लगता है और कभी कभी आसान भी। ये फिजा, ये चमन, ये तन्हाई, हाय किस वक्त उनकी याद आई। इश्क जब हर्फ शौक पर आया, हुस्न कहने लगा कि नींद आई।

कोई समा जाता है दिल में, कोई तस्वीर उभर आती है, और कभी खामोशी छा जाती है, कभी आरज़ू की लहरें तूफान बनकर टकराती हैं। एक मासूम सी मुस्कान पर लोग जान लुटा देते हैं, और कोई ऐसी अदा जो बिल्कुल दिल को चुरा ले। हर सांस में कोई तकरार है, कभी हल्की सी रवानी है, कभी गहरी गहरी सी तड़प है। यादों के वो फसाने हैं जो रूह में समा जाते हैं, कभी दवा बन जाते हैं और कभी जहर भी। इश्क में वफा का वजन कम पड़ जाता है, और बेवफा जो है वो कभी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। कभी शाम की रौनक में हाथ थामे वो वादे दोहराए जाते हैं जो बेपरवाह होते हैं, बेखुद होते हैं, और कभी कभी चुप्पियों में बारूद सी आग लग जाती है, सांसें सब कुछ कह देती हैं। कभी प्यार एक अजीम सफर की तरह रास्तों को गुलजार कर देता है, और कभी कांटों से भरपूर। और इसीलिए कहते हैं कि जो प्यार है दीवाना होता है।

100.7 FM रेनबो पर ये मोहब्बत के तराने छेड़ रहा है आपका दोस्त अनवारुल हसन। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा। और ये जो प्यार है ना, इसमें एक अजीब सा दीवानापन होता है। एक नजर में

और फिर एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया है, सिवा उस धीमी धीमी धड़कन के जो खामोशी से दिल के इस तार छू जाती है, ताल से ताल मिलाती है। खिड़कियों से कमरे में दाखिल हो चुकी है एक और रात, अपने साथ एक सन्नाटा भी लेकर आती है। जो अब फिर से बोलने को मजबूर होते हैं वो लफ्ज जो दिन में कहीं छुपा दिए गए थे, अब रोशनी के साथ उमड़ पड़ते हैं, चांद के साथ साथ चलने लगते हैं। ये रात बेखौफ और मगरूर होकर अपने पीछे अपने साथ पीले नीले पर्दों के पीछे से हौले से मुस्कुराकर कहती है, रुको सुनो, हर खामोशी में एक राज है, एक किस्सा छुपा हुआ है, और हर खिड़की से गिरती हुई रोशनी में एक नया अंदाज है। और इसीलिए ये रात खिड़की से दाखिल होती है उस रोशनी की तरह आसमान में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चांद की तरह। महसूस कीजिए उस चांदी रात को, देखिए ना एक बार बाहर जाकर चांद कैसा लगता है।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: ना हो जाए।
1: तुम्हारी तस्वीर ही हमारे मन में भा गई थी, तस्वीर नहीं थी वो, जीती जागती तस्वीर थी, यानी परछाई थी तुम्हारी। और सच तो यह है कि उस परछाई से, उस तस्वीर से तुम कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारी मोहब्बत का वो शजर ऐसा लग गया मन में जिसका हमारे आंगन में आज भी साया है। बिल्कुल दिलासा जो तुमने दिया, जो भरोसा दिया मुझे, आज तक उस पर नाज है। और मेरी तुमसे इल्तिजा है कि हमेशा मेरे पास रहना, गुजारिश है कभी इंतजार न कराना। तेरे दिलकश चेहरे की फलक में सितारे जगमगाते हैं, आसमान में चमकते सितारे भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे कहीं ठहरते नहीं है। और खूबसूरती के साथ तुम दिल को जोड़ देती हो। तुम्हारी मोहब्बत का बगीचा इतना प्यारा है जैसे बहुत सारी फूलों की क्यारी है उसमें। तस्वीर में सिर्फ अक्स दिखता है, लेकिन तुम तो असल में एक अजीब सी कश्मकश और कैफियत के साथ दिल के जज्बात के हर तार छेड़ देती हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें मेरी जिंदगी हो, तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। और ये भरोसा या ये जो सोच है मोहब्बत के साथ ही बनती है, वक्त के साथ बनती है और हमेशा बनी रहे। दुआ कीजिए।

मैं तो बस तेरी निगाहों का तमन्नाई हूं, तेरी जुल्फों की घनी शाम का शदाई हूं, मेरी आंखों में तेरे हुस्न की रानाई है, मेरे दिल में तेरी तस्वीर उभर आई है।

रात के 10:54 और 19 सेकंड हो चुके हैं। फिर कुछ चेहरे बदनाम और बेनकाब होने की गरज में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे दौड़ रहे हो। फरेब का जाल कभी इतना मजबूत नहीं होता जो किसी रिश्ते की रूह को देर तलक छिपा सके, और अगर होता भी है तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होता है समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। और जैसा कि पहले कहा कि 10:54 हो चुके हैं, तो अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। हम लौटेंगे समाचारों के बाद भी और रजनीगंधा का यह सफर जारी रहेगा। आज मैं आपके साथ आपका दोस्त अनवारुल हसन।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान और महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 21 जून 2026 तक एक सप्ताह का योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह शिविर गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होगा, जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान और योग दर्शन के विभिन्न आयामों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। शिविर का उद्घाटन 15 जून को सुबह 10:30 बजे होगा। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह उपस्थित रहेंगे। शिविर के मुख्य संरक्षक प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ व्यापक स्तर पर आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक, नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोजन स्थलों के चयन में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों को प्राथमिकता दी जाए तथा योग को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए प्रत्येक आयु वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। शाहजहांपुर जनपद के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर संचालित कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागों की रैंकिंग, विकास परियोजनाओं की प्रगति तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी रेबीज वैक्सीन तथा एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन उपलब्ध है। कुत्ता, बंदर, सांप अथवा अन्य विषैले जीव जंतुओं के काटने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तत्काल उपचार और आवश्यक वैक्सीनेशन प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया। जनपद बलरामपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक, डाकघर एवं वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा की दृष्टि आकस्मिक चेक के करते हुए बैंक के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग की गई। बैंक में उपस्थित लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी देते हुए उससे बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया एवं कहा गया कि बैंक कार्य के लिए बैंक कर्मी से ही संपर्क करें, अन्य किसी व्यक्ति की सहायता न लें, सावधान रहें एवं सुरक्षित रहें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी, खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया जब, वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। वक्त के साथ बदलती जाती हैं चीजें, वक्त भी बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, चेहरे भी बदल जाते हैं, और हम सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है सितारों, तुम तो सो जाओ, या तुम्हें भी नींद नहीं आती है। 11:05 हो चुके हैं रात के, यही वो वक्त तो नहीं जब यादें जवां उठती हैं। और अगर एक बार उन यादों ने सर उठा लिया जिन्हें आपने अभी अभी सुलाया था, चुप किया था, तो फिर वो जल्दी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती, और ये खामोशी डसने लगती है एक अजाब की तरह। रात के 11:05:52 रजनीगंधा के इस हिस्से में ऐसी ही सर उठाती हुई यादों को दबाने की कोशिश करेंगे, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे, कुछ तलाशने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में आपके साथ रहेगा आपका दर्दमंद दोस्त, जी हां, मैं अनवारुल हसन।

0: से
1: याद करते करते भुलाने लगते हैं लोग चीजों को, और वो बहुत याद आता है कभी कभी जिसे भुलाने में जमाने लग जाते हैं। याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए, उसकी गलियों से जब लौटे अपना ही घर भूल गए, खूब गए परदेश के अपने दीवारों दर भूल गए, शीश महल ने ऐसा घेरा मिट्टी के घर भूल गए, हम भी अपने ख्वाब तेरी आंखों में रखकर भूल गए। और चीजें इतनी भुलाई कि अक्सर हम अपने आप को भूल गए, भूल जाते हैं अपने आप को, नहीं याद रहता कि हम भी हैं। शायद जिम्मेदारियों का बोझ, या शायद कुछ भुलाने की ऐसी जिद जिसके चलते ऐसा होता है अक्सर।

ऐसी ही खामोशी जब लफ्ज नहीं मिलते, क्योंकि वक्त नहीं मिलता अपने लिए। इसलिए कभी कभी ऐसे ही हालात से दो चार होना पड़ता है और फिर कहीं नहीं लगता ये दिल।

तुम्हारी याद में, तुम्हारी याद में पलकों से अभी भी कुछ नमकीन सी चीज टपक जाती है कभी कभी। तुम्हारे बिना कैसे रहा जा सकते हैं, कैसे रहा जाएगा, ये सवाल अक्सर दिल में आता है। और जब कोई बहुत अपना, बहुत करीबी हमसे दूर चला जाता है तो ऐसे में दिल भी भारी होता है और हर चीज अधूरी सी लगती है। तुम्हारे बिना कैसे रहूं, हर सांस में तो तुम्हारा नाम है, तुम्हारी यादों का सहारा है, तो अब इस दिल को संभाले कैसे। तुम्हारे बिना सूनी हो जाती हैं राहें, तुम्हारे बिना अधूरी रह जाती हैं बाहें, और तुम्हारी हंसी से ही रोशनी थी तो अब अंधेरों में कहां जाए। अब नहीं हो तुम, जहां भी देखूं बस तुम्हारी यादें हैं, हर पल हर सांस तुम्हारी कमी बहुत करती है। और तुम्हारे बिना ये दुनिया अब हम अधूरी सी लगती है, और इसीलिए लगता है कि इस अधूरेपन में, इस दुनिया में कुछ रह नहीं गया।

सारे सहारे। जैसे तूफान में चीजें गायब हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, चली जाती हैं, ऐसे ये सहारे भी वक्त के साथ न जाने कहां चले गए। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में, ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में, शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती, ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफे सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। और तुमने भी तो जाते वक्त बस एक बार मुड़ के देखा था मुझे, तुम्हारी वो धुंधली सी तस्वीर और पांव के निशान अब भी दिल की दहलीज पर वैसे ही महफूज करके रखे हैं मैंने। मेरे इसी दिल को रौंद कर ही आगे बढ़ाए थे तुमने कदम। हां, ये दिल अब पहले से भी ज्यादा धड़कता है, क्योंकि इस धड़कन के साथ तुम्हारी बातें भी हैं, तुम्हारी यादें भी हैं जो शामिल हो चुकी हैं।

अक्सर तन्हाई में ये दिल याद करता है तुम्हें। 11:37 और 21 सेकेंड। यादों का कारवां जानी पहचानी डगर पर चल रहा है। अनवारुल हसन के साथ।

समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

वैसी ही एक रात है आज, जब फिर तुम्हारी यादें जवां उठेगी। बस एक बात कह सकता हूं कि अगर तुम होते तो हमेशा तुम्हें अपने पास, अपने करीब रखता, वैसे ही जैसे आज तुम्हारी यादों को रखा है। तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है और ये महफिल बिना रोशनी के। अब महफिलों में वो कहकहे नहीं सुनाई पड़ते, वो हंसी मजाक की आवाजें नहीं आती, कुछ खालीपन और उसी का एहसास, और इसीलिए वो सुकून।

नहीं मिल पाता जो हर कदम पर होना चाहिए था तुम्हारे होते हुए था तुम्हारे बाद नहीं रहा। जब तुम पास हो तो दुनिया की तमाम फिक्रें मायूसी बन जाती थी, और इसीलिए यह वादा भी तो किया था कि हमेशा रहेंगे तुम्हारे साथ हम सफर की तरह। तो उन यादों को उन बातों को मुकम्मल क्यों नहीं कर लेते जब आपस में कोई रिश्ता ही ना रहा हो। तो बेहतर तो यही भी है कि जहन में यादों की अलमारी में रखा हुआ हर सामान हटा दिया जाए। ऐसा करने से भी तो मन का बोझ कम होता है, हल्का होता है। जख्म दिल हाजिर करूंगा फिर उसी अंदाज से, फिर अगर लाया है तो खंजर चुभोने के लिए, ले गए थे आप ही रूहे तमन्ना जाने दिल, अब नहीं है कुछ मेरे भी पास खोने के लिए।

11:56 हो चुके हैं और इजाज़त लेने से पहले बस इतना और कहेंगे कि आपको जाते न देखा जाएगा, शम्मा को पहले बुझाते जाइए। इजाज़त दीजिए अनवारुल हसन को, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में उन्होंने सर्किट हाउस में लोक निर्माण विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल पहुंचे, जहां केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुए। जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सघन पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ 28 जून 2026 को किया जाएगा। अभियान के प्रथम दिन जनपद के समस्त पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जाएगी। इसके उपरांत 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक पोलियो टीमों द्वारा घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन गोमती नदी सेतु के गुदरा घाट स्थित स्पान संख्या P3-P4 की अपस्टीम बीम में प्री स्टेसिंग के दौरान क्रैक आने के मामले में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:12 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। 100.7 MHz पर आकाशवाणी FM रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 12:02 हो रहे हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। प्रातः 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।